0: श्री श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण कर रहे थी। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस 3 की पंजाबी सेवा चो असीं तुहाडी नजर कर रहे हैं सूफियाना कलाम।
1: पेशे खिदमत सूफियाना कलाम सुनते हां ज्योति नूरा ते सुल्ताना नूरा नूं।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी 9870 किलोहर्ट्ज़ से तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डीडी फ्रेडिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुको आहे। डिटेल्स कुझु हिन तरह आहिनि। थोरी देर में तव्हां हमेश या भगत कंवरराम साहब जन जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदा, पोइ प्रोग्राम पेश कराईंदो सॼण तोखे ख़बर कहिड़ी। ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कयूं वेंदियूं। या त प्रोग्राम जी विचूड़ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर अचो त भगत कंवरराम साहब जन जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

ਬਾਦਲ ਗਮ ਜਾ ਵਿਆਜੇ ਵਿਟੜੀ ਬਾਦਲ ਗਮ ਜਾ ਵਿਆਜੇ ਵਿਟੜੀ ਬਾਦਲ ਗਮ ਜਾ

मुद्रा प्रोग्राम से दुखी खबर कड़ी आकाशवाणी जी सिंधी सरसाई क्वेश्चन खास खास खबरों यूक्रेन जे ओडेसा बंदरगाह ते वेसल एम बी गोल्डन लियो ते निकलण महिल हमले जी भारत सख्त लफ्ज़न में निंदा कई आहे। भारतीय सदर श्रीमती मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया में पहुती आहे जिते पंहिंजे मैसेडोनियन सानी गोर्दोना सिलिजनास्का दाकोवो सां हो मित्रफियूं ॻाल्हियूं कंदी। अफ़गानिस्तान में आयल ओचते ॿोड़ सबब घटि में घटि 20 माण्हू मारिजी विया आहिनि ऐं 80 ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। इन खां अलावा 100 खां बि वधीक माण्हू गैप थी विया आहिनि। ऐं हॉकी में इंडियन सब जूनियर मेन्स एंड वुमेन्स टीम ओवन में हलंदड़ एफआईएच यूथ हॉकी एशियनशिप चैंपियनशिप 2026 में पंहिंजे प्रचार जी शुरूआत करे चुका आहिनि।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधी रहा हिंदी असों के प्रोग्राम जो वक्त पूरा थी रहा है वे असा मुलाकात थी सुबह सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 बजे तेसी तीन दींदा इजाजत सदाई गढ़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देश आपसी साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से कल मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। जब उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में विशेष जांच दल की जांच के बारे में जानकारी देगी तो सर्वोच्च न्यायालय इस महीने की 27 तारीख को याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा तेज बारिश का रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। औषधि महानियंत्रक ने टेकोडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन की अनुमति दी है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे संगीतिका में अर्चना आचार्य की भजन। और इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:30 और 24 सेकंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

0: तो दोस्तों, सुबह की इस नई ताजा और मुस्कुराती हुई बेला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश सारस्वत और मेरे साथ हैं
1: मनीषा। तो आप सभी को हमारा
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। और देखिए, सुबह की तरोताजगी की बात अभी मेरी साथी ने की, कोयल ने की, और स्फूर्ति से भरपूर आज का दिन जहां हम हाजिर हैं आपके लिए कुछ ऐसी बातों के साथ, कुछ ऐसे गीतों के साथ जिससे होगी आपके दिन की खूबसूरत शुरुआत।
0: दोस्तों, उम्मीद है कि आज की सुबह के आपके लिए नई उम्मीदें, नई ऊर्जा और ढेर सारी खुशियां लेकर आई होगी। अगर आप अपने दिन की शुरुआत चाय की पहली चुस्की के साथ कर रहे हैं, सफर पर निकल चुके हैं, घर के कामों में व्यस्त हैं, तो फिर जल्दी से अपना रेडियो ऑन कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: 21 जुलाई 2026 मंगलवार का दिन और ये खूबसूरत सुबह आपके नाम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। तो साथियों, ओस की बूंदे फूलों को भिगो रही हैं, आज ठंडी हवाएं ताजगी के साथ जगा रही हैं आपको, तो शामिल हो जाइए इस खुशनुमा मौसम में, एक प्यारी सी सुबह जगा रही है आपको।
1: दोस्तों, अगर आप अपनी योजना बना रहे हैं आगे के कामों के लिए, तो अगले कुछ पल हमारे साथ बिताइए। हम लेकर आए हैं ऐसे सुरीले गीत जो सुबह की ताजगी को और भी खूबसूरत बना देंगे, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए इस प्यारे से गीत के साथ।

0: और चलिए अब बात करते हैं उन तीन छोटी आदतों की जो आपकी सुबह को बनाती है बेहतर, क्योंकि उतने ही साथ आपको एक ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। और कोयल, कम से कम खुली धूप जो होती है उसमें जो हल्की गुनगुनी धूप है, खुली हवा है, उसमें सुबह सुबह सैर करना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और व्यायाम करने की बात है, उसको तो हम सभी जानते हैं कि ये हम सभी के शरीर के लिए, हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है, है ना?
1: जी जी।
0: तो
1: जी।
0: ऐसा लगता है कि आशा भरी नई सुबह के लिए ये एक अलार्म होता है जो हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र को, हमारे शरीर को जगा देता है। तो इन बातों के साथ आप अपनी सुबह की करें शुरुआत, हम यही आपसे कहते हैं।
1: और इसके साथ साथ अपना रेडियो भी ऑन रखें, क्योंकि हमारे गीत आपके दिल और दिमाग में जो जोश लेके आते हैं उसकी तो बात ही क्या है।

0: और दुर्गेश देखो, ये जो हमारी गीतों भरी गुड मॉर्निंग है, इसमें इस बात का जिक्र करना तो बहुत जरूरी होता है क्योंकि आज रिमझिम फुहारों का दिन है। आज की सुबह इतनी ताजी, इतनी खूबसूरत लग रही थी जब मैं ऑफिस पहुंच रही थी, उस दौरान काले काले बादलों का इस तरह बरसना और हमारी सुबह को
1: छोटी छोटी बूंदों का जो गिरना है, जो मौसम में ठंडक जैसे आ गई है।
0: बिल्कुल, देखो ना हम कितना इंतजार कर रहे थे, स्पेशली जो हम दिल्ली वाले हैं वो तो उमस से बहुत परेशान थे, और बारिश की नन्ही बूंदों का जो स्वागत आज हमारी सुबह में हुआ है उसने हमारी सुबह को बड़ा खूबसूरत बना दिया है।
1: तो क्यों ना आज हम अपने गीत में भी इसी बारिश का इंतजार जो हमारा खत्म हुआ है उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं,
0: सेलिब्रेट करते हैं और उनको और निमंत्रण देते हैं। हाँ, कैसा रहेगा?
1: मतलब थोड़ा सा और बरसाओ भगवान,

0: दोस्तों उम्मीद है कि ये गीत आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अगर सुबह की शुरुआत ऐसे मीठे से गीतों से हो जाए तो अपने आप मन खिल उठता है ना दी।
1: बिल्कुल, और मैं तो यही कहना चाहूंगी अपने साथियों से कि देखिए सूरज की किरणें कहती हैं, उठो अंधेरों से अब न डरना कभी, जो तू ठान ले अपनी जिद पर अगर झुकेगी ये दुनिया भी तेरे आगे अभी यहीं।
0: जी हाँ दोस्तों, हर नई सुबह हमें एक नया मौका देती है और कल की अधूरी बातें पीछे छोड़ जाती हैं। आज का दिन हमारे सामने खाली पन्ने की तरह होता है और उस पे क्या लिखना है ये फैसला हमारा होता है।

0: दिनी का नाम भी सुबह है, तो हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर हो सकता है ना दुर्गेश?
1: जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा दिया आपने। सुबह का समय जो होता है ना दोस्तों, अपने आप से मिलने का भी समय होता है। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इसीलिए सुबह के जो कुछ पल होते हैं ना, अपने लिए जरूर निकालने चाहिए। खुली हवा में टहलना, पौधों को देखना और एक गहरी मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करना,
0: बिल्कुल
1: इतनी सी बातें भी पूरे दिन का रंग बदल देती है ना दी।
0: बिल्कुल, और एक और खास बात कि जो आपको प्यारी सुबह मिली है उसके लिए आप शुक्रिया कहना ना भूलें।

0: आशा की इस मधुर गीत भरी इस सरगम में, इस सरगम के साथ आप गीतों भरी गुड मॉर्निंग का ये आखिरी गीत सुन रहे हैं और इस सफर में हम यहीं तक हैं आपके साथ। तो मनीषा और
1: दुर्गेश को दीजिए अनुमति,
0: नमस्ते,
1: फिर मुलाकात होगी, तब तक
0: के लिए नमस्कार।
1: जी हाँ।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमरीका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: 3 राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मॉनसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में एनएचपीसी जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में एनएचपीसी प्रोजेक्ट पर घटी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। व्हाट्सएप दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएसपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडी

0: डनहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में दो अमरीकी सैनिकों और इराक में एक सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमरीकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के तीन दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में एफआईएच यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति न हो, एसआईटी के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई एसआईटी करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और सीजेपी प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। एलपीजी के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल, भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with her North Macedonian counterpart in Skopje today. फोनियंस

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया के अपनी हमनसब से बातचीत करेंगे। यूक्रेन में ओदेसी बंदरगाह के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगजू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है, जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग से खिताब करेंगे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। एनडीए इत्तेहाद में शामिल पार्टियां इस मीटिंग के दौरान सबसे तवील अरसे तक अपने ओहदे पर फाइज रहने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बनने पर जनाब मोदी की इज्जत अफजाई के लिए मुबारकबाद से मुतालिक एक तहरीक मंजूर करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया की अपनी हमनसब गोर्डाना, सिलजानो, वस्का, दाउकोवा के साथ बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू वजीर आजम क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर अफरीम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। वो शिमाली मकदूनिया की पार्लियामेंट और भारत शिमाली मकदूनिया कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया तीन मुल्कों मोलदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे के तहत कल रात दो रोजा सरकारी दौरे पर शिमाली मकदूनिया पहुंची। ये किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है। उनका यह दौरा मस्कूरा तीनों मुल्कों के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मशरकी यूरोप के वसी खित्ते के साथ भारत के रिश्तों को फरोग देने की अहमियत को उजागर करता है। दोनों मुल्कों ने ज़राअत, दवासाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी से वाबस्ता खिदमात जैसे तरजीही शोबों में इक्तसादी ताउन को मजीद वसअत देने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। शिमाली मकदूनिया जनूब मशरकी यूरोप का चारों तरफ से खुश्की से घिरा मुल्क है। यहां भारतीय बिरादरी की तादाद बहुत कम है और ज्यादातर भारतीय अफराद आईटी के शोबों, यूनिवर्सिटियों में तदरीस या कसीर मुल्की कंपनियों में आला ओहदों पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। भारत ने यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह से रवाना होते वक्त बहरी जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने कहा है कि इस वाकये में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स को नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वजारत के मुताबिक जब यह वाकया पेश आया तो उस वक्त इस बहरी जहाज में 5 भारतीय शहरियों समेत अमले के 17 अहलकार सवार थे। वजारत खारजा ने यह बात दोहराई है कि कमर्शियल बहरी जहाजों को निशाना बनाना और बेकसूर सिविलियन अफराद पर मुश्तमिल अमले के अहलकारों की जान खतरे में डालना निज बहरी जहाजों की आजादाना नकलो हरकत और तजारत में रुकावट डालना काबिल मजम्मत है और इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। वजारत ने कहा है कि यूक्रेन में भारतीय मिशन सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और मुतासिर अफराद को हर मुमकिन इमदाद पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। भारत सरकार ने मरने वाले भारतीय शहरियों के कुंबों से ताजियत का इजहार किया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के अपने हमनसब हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉ जयशंकर ने पनामा के साथ भारत के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि पनामा लातिनी अमरीका और कैरिबियाई खित्ते तक रसाई का एक अहम दरवाजा है। दोनों रहनुमाओं ने तजारत, कारोबार, तरक्की, बहरी उमूर, सेहत, ज़राअत, तालीम और डिजिटल ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तफसीली तबादले ख्याल किया। उन्होंने कसीर रुखी बैन अल-अक़वामी फोरम्स पर बाहमी ताउन के सिलसिले में भी गुफ्तगू की।
इससे कबल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस एतमाद का इजहार किया कि पनामा के वजीर खारजा का ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। पनामा के वजीर खारजा के साथ मीटिंग के आगाज में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये दौरा हालिया अरसे में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले आला सतही रवाबित और तबादलों को मजीद तकवीत देगा, जिससे दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंचेंगे।

0: आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहैम को बरतानिया के वजीर आजम का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और बरतानिया मुश्तरका जमहूरी अखदार से मुंसलिक हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और अवाम से अवाम के राबतों समेत मुख्तलिफ शोबों में वसी तर इश्तराक हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत बरतानिया जामे क्लीदी साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर जनाब बर्नहैम के साथ मिलकर काम करने के मुतमन्नी हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने रियासत के बुजुर्गों, बेवाओं और माजूर अफराद की माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अगले महीने से पेंशन की रकम 1,000 रूपये से बढ़ाकर 1,500 रूपये माहाना कर दी गई है। कल जारी किए गए एक सरकारी हुक्मनामे में हुकूमत ने कहा कि पेंशन की इजाफा शुदा रकम फवायद की बराह रास्त मुंतकली DBT निजाम के जरिए तमाम मुस्तफिदीन के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर BJP के IT महकमे के इंचार्ज अमित मालविया ने कहा कि मगरबी बंगाल की ये महरूम बिरादरियां कई बरसों से इंतजामी बेतवज्जुही का शिकार रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मगरबी बंगाल में BJP हुकूमत बामाना और सबको साथ लेकर चलने वाली तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है और समाजी बहबूद की पेंशन में 50% के इजाफे का फैसला हुकूमत के इसी विजन का मजहर है। इंतखाबी कमीशन आज कोलकाता में एक बैन अलाक्वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है, जिसका मकसद डाक के जरिए वोट डालने के अमल को मजीद जामे, महफूज और आसान बनाना है। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जमहूरियत और इंतखाबी बंदोबस्त से मुतालिक बैन अलाक्वामी इदारे IIIDEM और बैन अलाक्वामी IDEA मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस कॉन्फ्रेंस में मगरबी बंगाल के तमाम 24 इंतखाबी जिलों के चुनाव अफसरान शिरकत करेंगे। इसके अलावा भारत और कई दिगर मुल्कों से इंतखाबी मुंतजमीन, पॉलिसी साज, माहिरीन तालीम और इंतखाबी उमूर के माहिरीन भी शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में डाक के जरिए वोट डालने के अमल और खसूसी पोलिंग के निजाम को मजीद जामे, आसान और महफूज बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मगरबी बंगाल की आला चुनाव ऑफिसर नीलम मीना इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। कॉन्फ्रेंस में डाक के जरिए वोट डालने का अमल, इंतखाबी अमल की शफाफियत और दयानतदारी को बरकरार रखने, चुनाव में धोखाधड़ी की रोकथाम, ऑडिट के निजाम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर मबनी खसूसी पोलिंग के निजाम और दूर दराज इलाकों से वोट डालने के निजाम के मुस्तकबिल पर खसूसी इजलास मुनक़िद होंगे। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: सिक्किम में नामची जिले में समरदुंग के मुकाम पर NHPC के छठे मरहले के तीस्ता पनबिजली प्रोजेक्ट की जेर तामीर सुरंग के अंदर फंसे हुए अफराद को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव कार्रवाई जारी है। नामची जिले के SSP ने बताया है कि इमदादी टीमों ने अब तक 8 लाशें बाहर निकाली हैं। ऐसा शुभा है कि सुरंग के अंदर कम से कम 25 अफराद फंसे हुए हैं। ऐसा ख्याल है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से ये सुरंग ढह गई थी। मुख्तलिफ एजेंसियां बचाव और इमदादी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: जनूबी सिक्किम में समरदुंग में कल NHPC प्रोजेक्ट के मकाम पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। NDRF, SDRF और दीगर एजेंसियों को फौरी तौर पर बचाव मिशन पर लगाया गया। गैस के रिसाव की वजह से शुरू में इमदादी टीमें वहां नहीं पहुंच सकी। अलबत्ता इमदादी टीमों ने तालमेल के साथ कोशिश करते हुए 8 लाशें बाहर निकाल ली हैं। इमदादी टीमें वहां फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। इनमें कारकुन, NHPC के अहलकार और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के मुलाजमीन शामिल है। गंगटोक से मानस प्रतिम शर्मा के रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में मॉनसून सरगर्म है और कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने आज रियासत के 5 जिलों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश लगातार होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वजह से कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि कुछ इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई में रुकावट पड़ गई है। बहाली का काम जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर

0: और कुल्लू जिले में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। एहतियाती इकदाम के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर में सभी सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहेंगे। इंतजामिया ने लोगों और सयाहों पर जोर दिया है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के बाज़ हिस्सों में बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, शिमाली मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मशरकी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। नई दिल्ली इलाके में कल एक एहतजाज के पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करने के बाद 118 से ज्यादा पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ओहदों पर फायज सीनियर अफसरान भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन बेकाबू हो गए और उन्होंने जारहाना और पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार कर लिया। कई बार की तंबीह और कानूनी हिदायत के बावजूद उन्होंने मुंतशिर होने से इनकार किया और इलाके में आयद इम्तनाई अहकाम की खिलाफवर्जी की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मुजाहिरीन ने पुलिस अहलकारों पर हमला किया, पुलिस और दीगर सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, जिससे अमनो अमान को संगीन खतरा लाहिक हुआ। दिल्ली पुलिस ने मजीद बताया कि जख्मी पुलिस अहलकारों का तिब्बी और कानूनी जांच जारी है। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान के खिलाफ फिर हमले किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि ये हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमजोर करने के मकसद से किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल वो आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमले करने के लिए करता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए ईरान को जबरदस्त इंतकामी कार्रवाई की वार्निंग दी है कि ईरान को कई गुना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीन अमरीकी फौजियों की हालिया हलाकत के तनाजुर में सदर ट्रंप ने यह तंबीह की है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दस्ते की क्यादत करेंगी। खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों के पहले राउंड में आज पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
2: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने कल मौसूल इजलास के पहले दिन कार्रवाई शुरू होने से कबल मीडिया से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को अहमियत के साथ शाये किया है, जिसमें वजीर आजम ने कहा कि बहस मुबाहसे में दलील और सच्चाई होनी चाहिए। साथ ही वजीर आजम ने पार्लियामेंट में मुल्क के मफाद के लिए काम करने की अपील की। अखबार की एक अहम सुर्खी है, नई दिल्ली में मुजाहिरीन के साथ मरकजी वजीर जेपी नड्डा की बातचीत से मुतालिक है। मुजाहिरीन की जानिब से सरकार को अपनी मांगों के लिए मेमोरेंडम पेश किया गया। रोजनामा इनकलाब ने ईरान के मौजूदा हालात वाकयात के तनाजुर में भारतीय शहरियों के लिए जारी नई एडवाइजरी से मुतालिक खबर को नुमाया किया है।
1: खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया के अकिये अपनी हमनसब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओडेसा बंदरगाह के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में चार भारतीय शहरियों की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगजू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म।
3: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शर्बरी बनर्जी का गाया राग अहिर भैरव, कार्यक्रम है स्वर गंगा। आपके साथ तबले पर हैं सुकंतो वाजपेयी, सारंगी पर हैं सईद उर रहमान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में डॉ. शर्वरी बनर्जी का गाया राग अहीर भैरव। आपके साथ तबले पर संगत दे रहे थे सुकांतो वाजपेयी, सारंगी पर थे सईद उर रहमान। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 9:14:57 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है।
1: नमस्कार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इन पत्रिका कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह नई नई विषयों पर नई नई जानकारियां नए नए विशेषज्ञों के द्वारा उन तक पहुंचाते रहते हैं। हम सब लोगों ने प्रायः अपने स्वास्थ्य समस्या के दौरान या अपने घर में या अपने समाज में ये देखा होगा कि कई बार आजकल बच्चों का जन्म पूर्व निर्धारित समय से पहले हो रहा है। कई बार उनके जो वेट होते हैं, जो वजन होना चाहिए एक नवजात शिशु का, वो एक वैज्ञानिक मापदंड के जो स्वास्थ्य मानक है उससे काफी कम रहते हैं। फिर ऐसे बच्चों का भविष्य कैसा हो सकता है, उनके स्वास्थ्य के लिए आगे किस किस तरह की समस्याएं हो सकती है, और इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान या एक बात कहें कि स्वास्थ्य अनुसंधान किस तरह के हैं, इन सब बातों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता। डॉक्टर ज्योति गुप्ता एक एडवांस सेंटर फॉर फिटल मेडिसिन एंड जेनेटिक्स के निदेशक हैं और ये कई बड़े हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट भी रही हैं। डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: अगर हम बच्चे के जन्म के समय की बात करें, क्योंकि मानव का अस्तित्व जो होता है एक मानव के विकास की एक गाथा है कि किस तरह से वो जंगलों से होता हुआ आया और एक उन्नत सभ्यता के रूप में उसने अपने आप को स्थापित किया, इस सब के दौरान बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं भी रही, पर्यावरण की समस्या भी रही, चुनौतियां भी रही। तो जब एक बच्चे के जन्म की हम बात करते हैं और उसके इलाज की बात करते हैं जबकि वो गर्भ में रहता है, तो एक जो फेटल मेडिसिन जेनेटिक्स की जो बात करते हैं, ये जेनेटिक्स क्या है और इससे जुड़ी हुई मेडिसिन किस तरह का है?
2: बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और लोगों को इसकी जानकारी होनी भी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जो फीटस आप बोल रहे हो कि प्रीटर्म जो डिलीवरीज होती है या फिर प्रीटर्म डिलीवरीज नहीं होते हुए भी टर्म डिलीवरीज में भी जिन बच्चों का वजन कम होता है, जैसे किसी बच्चे का वजन एक पर्टिकुलर 8वें महीने में 2 किलो होना चाहिए तो उस बच्चे का वजन 1.5 किलो है। तो ये जो है डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इसकी कहानी यहाँ पे स्टार्ट नहीं होती है। इसकी कहानी स्टार्ट होती है जब आपकी गर्भ ठहरती है और इसके पहले भी वो कहानी रहती है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन है जो इस फैक्टर्स को डिसाइड करते हैं कि बच्चे का पूरी प्रेगनेंसी कैसे रहेगी और बच्चे का वजन कितना रहेगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है, कोई भी मदर जब डिसाइड करती है कि वो प्रेगनेंसी चाहती है तो प्लान प्रेगनेंसी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जब आप प्लान प्रेगनेंसी करते हो तो बहुत सारी चीजें क्या होती है, आप प्रेगनेंसी से पहले जान जाते हो कि मदर में ऐसी कोई चीजें तो नहीं है जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना है। और ये हम कैसे जानते हैं, हर मदर्स को ये हम बोलते हैं जब आपको प्लानिंग करनी है प्रेगनेंसी आप डॉक्टर से मिलिए, और डॉक्टर से मिलके सर्टेन बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि हम जो भी लेडी चाहती है तो उनका हम टेस्ट का इवैल्यूएशन करते हैं। उस टेस्ट में बेसिक हम देखते हैं कि मदर का हीमोग्लोबिन कितना है, मदर के लीवर फंक्शन टेस्ट कितने हैं, किडनी फंक्शन कैसा है, मदर में कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, यूरिया क्रिएटिनिन कैसा है, और मदर में कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, मदर में कोई डायबिटीज तो नहीं है, बहुत सारी चीजों का इवैल्यूएशन करते हैं। जब वहां से हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि नहीं, इस मदर में एस सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम बोलते हैं मदर को कि जब भी आप प्लान करते हो 1 महीने पहले आप एक दवाई होती है फॉलिक एसिड की, वो आपको स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर किसी मदर में हमें पाया जाता है कि उनमें खून
1: फॉलिक एसिड क्या विटामिन बी है,
2: विटामिन बी है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है, तो हर मदर को दिया जाता है प्रीकंसेप्शनली। अब इसका रोल ये है कि ये बच्चे में हार्ट की प्रॉब्लम, स्पाइन की प्रॉब्लम और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इन सब चीजों को ये प्रिवेंट करता है। जैसे स्पाइन में आपने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चों का स्पाइन बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, इसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। या फिर कुछ बच्चों का आपने देखा होगा हार्ट में मल्टीपल मालफॉर्मेशन होते हैं, तो ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। या ब्रेन में आप देखते हो कि ब्रेन जो होता है पीछे की तरफ निकल गया है, किसी के ब्रेन में जो पानी होती है वो बहुत भर जाता है, तो ये सारे फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। तो वन ऑफ द कॉज है ये फॉलिक एसिड। कोई भी मदर हमारे पास आती है तो हम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट होती है। प्रीवियस हिस्ट्री में जैसे पहले की जो प्रेगनेंसी अगर किसी की रही है तो कैसी रही है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थे, जिससे हमें कुछ हिंट इस प्रेगनेंसी के लिए भी मिलेगा। तो अभी हम करंट अगर प्रेगनेंसी कोई फर्स्ट टाइम प्लान कर रहा है और हमने देखा कि उस मदर में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो सर्टेन मेडिसिन है जो कि हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रीकंसेप्शनली, या फिर कंसेप्शन जैसे ही पता चलता है कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है तो हम स्टार्ट करते हैं। इकोस्प्रिन नाम की एक टैबलेट है, वो भी हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम मॉनिटर करते हैं बच्चे को
1: इकोस्प्रिन क्या ये जो
2: ब्लड थिनर है, इसका रीजन ये होता है कि जैसे जब प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे को खाना मदर से मिलता है, सारी न्यूट्रिशन मदर से मिलती है, तो मदर से जो मिलने का जरिया होता है वो होता है प्लेसेंटा अवल जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सारे खून की नली बनी हुई रहती है और जो कनेक्ट करता है मदर को बेबी से। तो जब ये दोनों कनेक्शन होते हैं तो जैसे आप कोई भी पाइप को लोगे तो पाइप में वाटर को फ्लो करने के लिए स्मूथ होनी चाहिए वो अंदर, वहां पे अगर रस्टिंग होगी तो आपका स्मूथ फ्लो नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से मदर्स और बेबी के बीच में भी आप मानो कि एक चैनल है और वो चैनल स्मूथ होनी चाहिए, और वो चैनल स्मूथ होती है जैसे जिनके अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स है तो उनकी वो चैनल स्मूथ नहीं होती है और बच्चे को मदर से जो ब्लड फ्लो है वो ठीक से मिल नहीं पाता, तो वो चैनल को स्मूथ करने के लिए हमारे पास एक मेडिसिन है, उसको हम इकोस्प्रिन बोलते हैं। और ये इकोस्प्रिन की जो टैबलेट है 16 हफ्ते से पहले ही स्टार्ट करनी पड़ेगी।
1: अच्छा,
2: क्योंकि तब तक वो स्टैब्लिश हो चुकी होती है 16 हफ्ते के बाद, इसलिए प्रीकंसेप्शन का यहाँ पे ही रोल है कि आपने देख लिया कोई हाई रिस्क फैक्टर तो नहीं है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जहां आपको लगता है कि नहीं इस मदर में ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, या फिर उनके ब्लड गाढ़े होने की, या पहले कोई बच्चे की हार्ट बीट स्टॉप हो गई हो उनके केस में, तो इन सबका रोल है क्योंकि ये वो नली या चैनल को स्मूथ रखती है और

0: बच्चे को फ्लो ठीक से मिलता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम गलती कर जाते हैं तो इस टाइप की प्रेगनेंसी में आगे जाके फिर हम ऐसी बच्चे को डील करते हैं जिनका वजन कम हो सकता है। और इकोस्प्रिन अगर हम स्टार्ट करते हैं 90% के प्रिवेंट करता है बच्चे के लो बर्थ वेट को, मदर में ब्लड प्रेशर होने की समस्या को या फिर डायबिटीज रिलेटेड कुछ नली में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं उन सब चीजों को 90% प्रिवेंट करता है। तो ये मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सपोज दो तरीके की प्रेगनेंसी होती है, एक तो बच्चे का वजन ठीक बढ़ रहा है लेकिन मदर को 7वें महीने में लेबर पेन आ गया और बच्चे की डिलीवरी हो गई,
1: प्रीमेच्योर
0: डिलीवरी, प्रीटर्म डिलीवरी होती है जो कि नेचुरल मेथड से होती है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनको लेबर पेन्स आ गए, कोई लीकिंग हो गई जिसको आप रोक नहीं सकते, वो नेचर ने डिसाइड किया कि इस बेबी की डिलीवरी होगी। उस बच्चे का पॉजिटिव फैक्टर ये होता है कि बच्चे का वजन नॉर्मल होता है बट उनकी डिलीवरी समय से पहले हो गई है, तो उनका आउटकम बेटर होता है कम्पेयर टू दी बेबीज जिनका सपोज की 8वें महीने में 2 किलो वजन होना चाहिए लेकिन क्योंकि बच्चे को खून की कमी के कारण या फिर बच्चे को ठीक से चैनल के थ्रू ब्लड नहीं मिला हो, तो वैसे बच्चों का जो आउटकम होता है कम्पेयर टू दी नॉर्मल प्रीटर्म डिलीवरी थोड़ी सी सब ऑप्टिमल होती है।
1: ऐसा कहा जाता है, कई बार अखबारों में भी आता है कि जो बच्चे प्राय 7 महीने में जन्म लेते हैं तो 8 महीना शायद कम्प्लीट भी नहीं होता है और अंडर वेट होते हैं, कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि 1 किलो 300 ग्राम 1 किलो 250 ग्राम ऐसा होते हैं, फिर उसे एक स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है जो इनक्यूबेटर सिस्टम में उसको रखा जाता है। तो ऐसे बच्चों का जो अंडर वेट का तो आपने कारण बता दिया, मेच्योर का आपने बताया, इंक्यूबेटर में जो एक प्रोसीजर होता है उसको केयर का वो क्या होता है, उसमें किस तरह से देखभाल करते हैं?
0: एक होती है प्लान डिलीवरी, तो प्लान डिलीवरी में हम क्या करते हैं कि जैसे कि किसी मदर का कोई मेडिकल इश्यू है, बच्चे का वजन कम है और जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बच्चे का जो ब्लड फ्लो है वो बच्चे को ठीक से नहीं मिल पा रहा है और उसकी वजह से अगर हम ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे तो फिर हम प्रेगनेंसी में हम बच्चे को खो भी सकते हैं, तो हम इसमें प्लान करते हैं और बच्चे को हम स्टेरॉइड देते हैं और बच्चे को हम कुछ और मेडिसिन देते हैं जिससे बच्चे का ब्रेन मैच्योर हो जाता है, लंग मैच्योर हो जाता है, फिर हम डिलीवरी करते हैं प्लान्ड वे में और उसके बाद हम इंक्यूबेटर में रखते हैं, तो उस बच्चे का जो आउटकम होता है वो काफी अच्छा रहता है कंपेयर टू कि आप अनप्लान डिलीवरी करते हो किसी का, किसी को आपने स्टेरॉइड नहीं दिया या ब्रेन मैच्योरिटी के लिए कोई मेडिसिन नहीं दी और अचानक से आपको इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ी फिर आप इंक्यूबेटर में रखते हो। तो इन दोनों बच्चों में फर्क ये होता है कि सपोज जिसको आपने प्लान्ड वे में किया है तो उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है इंक्यूबेटर में, एक तो नंबर ऑफ डेज उनके कम होते हैं, फिर हम जब डिलीवरी हो जाती है फिर हम बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, बच्चे का हार्ट बीट चेक करते हैं, बच्चे का ब्रेन का एक अल्ट्रासाउंड होता है, हार्ट का इको होता है जस्ट टू सी कि मतलब बेबी के ऑर्गन्स तो ठीक से फंक्शन कर रहे का नहीं कर रहे। तो अगर किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और उनको स्टेरॉइड नहीं मिला है तो सर्फेक्टेंट नाम की एक मेडिसिन है जो कि दिया जाता है बच्चे को इंक्यूबेटर में, या फिर देखते हैं कि उनकी जो धड़कन है बहुत फास्ट चल रही है या जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट चल रही है तो उनको कभी ऑक्सीजन का सपोर्ट देना पड़ता है, कभी उनको कंटिन्यूस प्रेशर देना पड़ता है, उसको हम सीपैप बोलते हैं, अगर बच्चा उस पे मेंटेन कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं कर पा रहा तो कभी कभी हमें वेंटिलेशन पे भी जाना पड़ सकता है
1: ऑक्सीजन की कमी के कारण।
0: बच्चे को ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बच्चा ले नहीं पा रहा है, तो ले नहीं पा रहा है क्योंकि उनके लंग्स में पानी भर जाते हैं, उनके हार्ट में इतना आउटपुट नहीं रहता है कि वो बच्चे को पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन पहुंचा सके, तो कमी नहीं है लेकिन वो बच्चा ले नहीं पा रहा है। अब ले नहीं पा रहा तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लंग कैसा है, उनका एक्सरे होता है बच्चे का, इंक्यूबेटर में रखने के बाद, इंक्यूबेटर का मतलब यह है कि बच्चे को एक वार्म एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है जो कि उसके अकॉर्डिंग जो होना चाहिए बच्चे,
1: तो मतलब बच्चे को एक गर्भ में जिस तरह का वातावरण चाहिए उसी तरह का,
0: नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते बच्चे को, इंक्यूबेटर में रखने का मतलब है कि उसको एक टेम्परेचर दिया जा रहा है जिसमें वो बच्चा कम्फर्टेबल है। अब उसके बाद जो चीजें होती है फिर हम देखते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट कितनी तेज चल रही है, बच्चा ओरल फीड ले पा रहा है क्या नहीं ले पा रहा है, और बच्चे का जो होता है रेस्पिरेटरी रेट जो हम सांस लेते हैं वो कितना चल रहा है, और अगर वो ठीक चल रहा है तो बच्चे को ऑक्सीजन मिल जाएगा लेकिन वो कभी इतनी फास्ट चलती है कि आपके लंग्स तक वो पहुंच नहीं पाती है, तो ऐसे में बच्चे को सपोर्ट देना होता है। तो पहला स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, अगर लगता है कि बच्चा थोड़ा स्टेबल है तो सबसे पहले ऑक्सीजन सपोर्ट देकर देखते हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट में अगर हम 3-4 घंटे ऑब्जर्व करते हैं फिर देखते हैं कि बच्चे ने ठीक से ऑक्सीजन जो उनका सैचुरेशन है वो ठीक से मेंटेन हो पा रहा है, तो वो 90% 100% मेंटेन हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पाता तो फिर हम सीपैप पे चले जाते हैं।
1: ये सारी चीजें जैसे आप मॉनिटर करते हैं तो इसमें क्या मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट किस तरह के यूज करते हैं बच्चे का, जब पता लगता है जब मान लीजिए प्रीमेच्योर है तब जैसे कि ये प्रॉब्लम है जांच की, फिटल्स न्यूरोसोनोग्राम किया, ये उसी बच्चे के नवजात शिशु के ही प्रॉब्लम के लिए?
0: शिशु का नहीं होता, ये होता है जब बेबी गर्भ में रहता है तब। फिटल इको और फिटल न्यूरोसोनोग्राम जो होती है वो होती है गर्भ के दौरान, तो न्यूनेटल इको होती है और न्यूनेटल ब्रेन सोनोग्राम होता है वो डिलीवरी के बाद होती है। तो जो फिटल इको का जो रोल है वो ये देखना है कि बच्चे में कोई कंजेनाइटल हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं है, जिसकी वजह से अब

0: इसमें भी दो तीन तरीके के होते हैं, कुछ माइल्ड होते हैं, कुछ थोड़े सिवियर होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं। तो माइल्ड ये होता है कि मतलब बच्चे को इमीडिएट अटेंशन की जरूरत नहीं है। बच्चे को आप डिलीवरी के बाद में थोड़े दिन के बाद आप रिपीट इको करके देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि बच्चे को कितनी सपोर्ट की जरूरत है। कुछ सिवियर होते हैं उसमें भी हमारा एक साइनोटिक होता है और एसाइनोटिक होता है। साइनोटिक का मतलब ये होता है कि बच्चा ब्लू हो जाता है डिलीवरी होते ही, तो इसका मतलब है ब्लू होने का मतलब कि बच्चे के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है हार्ट में की, क्योंकि अंदर जब होता है तो बच्चे की जो सर्कुलेशन होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है और वो मदर से कनेक्टेड होती है। जब बच्चा बाहर आ जाता है तो बच्चे का सर्कुलेशन सिर्फ बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, तो इसमें काफी सारे चेंजेस होते हैं। तो जब ये साइनोटिक वाला जो होता है, तो जब बच्चा बाहर निकलता है, मदर से सपोर्ट है नहीं, तो बच्चे अपने पूरे बॉडी में ऑक्सीजन प्रोबेबली ठीक से सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो वैसे केसेस में क्या होता है, आपको इमीडिएट बच्चे को अटेंशन देना होता है, और अटेंशन देने के बाद में फिर जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो आके फिर पीडियाट्रिक इको करते हैं। इको करने के बाद में फिर वो देखते हैं कि इस बच्चे को अर्जेंट इंटरवेंशन की जरूरत है या नहीं है। अर्जेंट इंटरवेंशन सर्जरी भी हो सकती है, और ये सारी काउंसलिंग फीटल इको का रोल यहीं पे आती है। जब हम फीटल इको करते हैं तो हम देख लेते हैं कि इस बच्चे को किस तरीके की जरूरत पड़ेगी इमीडिएटली डिलीवरी के बाद में, और फिर मदर को बताया जाता है देखो आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, इस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है डिलीवरी के बाद में, तो आपकी जो डिलीवरी है आपको टर्सरी सेंटर में करवानी चाहिए जहां पे कि मल्टी स्पेशलिटी हो और इमीडिएट बच्चे को अटेंशन मिल सके और अर्जेंट इंटरवेंशन के लिए लोग वहां पे मौजूद हो। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे केस होते हैं हार्ट में कि जहाँ पे इमीडिएटली जैसे टेटोलॉजी ऑफ एलो है, टीजीए है, बहुत सारी चीजें हैं, कंडीशंस है हार्ट की, जिसमें कि बच्चे को होने के बाद ही फिर इमीडिएटली पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं और 4 घंटे के अंदर अंदर सर्जरी करनी पड़ती है।
1: जिस तरह की समस्या होती है उस तरह से उसका इलाज
0: किया जाता है,
1: इसीलिए उसको एक अच्छे हॉस्पिटल के लिए
0: टर्सरी सेंटर से, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर पे इतनी स्पेशलाइजेशन होती नहीं है।
1: निश्चित रूप से जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे हैं, नई नई विशेषज्ञता बन रही है हर चीज के लिए, तो आने वाले समय में निश्चित ही जो जन्म के समय की समस्या, अब बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो जेनेटिक्स भी होती है या जो एक एनवायरनमेंट कंसर्न के कारण हो जाती है या डिफिशियंसी विटामिन या न्यूट्रिशन के कारण होती है, उस सबको पहचान करके उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई, आपने न्यू नेटल जेनेटिक्स और उससे जुड़ी जो जन्म नवजात शिशुओं की जो कम वेट पे जन्म होते हैं, समय से पहले हो जाते हैं, उस सब के कारणों के बारे में और सावधानियों के बारे में बताया कि किस तरह से प्लांड डिलीवरी की जाती है अगर इस तरह के केसेस को पूर्वानुमान होता है तो। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड इट्स बीन अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू।
2: इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक सम्पन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: स्वग्रही प्रोग्राम के तहत अभी आपने विद्या सथाया के गाए हुए भजन सुने। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 21 जुलाई है और आज ही के दिन 1969 में अमरीकी अंतरिक्षयात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। 2004 की बात करें तो आज एक दिन संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने भारी बहुमत से पश्चिमी किनारे के फिलिस्तीन क्षेत्रों में इसराइल को बाढ़ हटाने का प्रस्ताव पारित किया था। और अब आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है उन महान व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल सखाराम पागे को। वो एक क्रांतिकारी व्यक्ति होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में भी जाने पहचाने जाते हैं। विट्ठल सखाराम पागे का जन्म जुलाई 1910 में जिला सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री मुंबई से ली थी। वो एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 11 जुलाई 1960 से 24 अप्रैल 1978 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के 5वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। और अब हम याद कर रहे हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जय रामदास दौलतराम को। आज उनकी पुण्यतिथि है। वो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे और स्वतंत्रता के बाद जय रामदास दौलतराम बिहार के पहले राज्यपाल और भारत के दूसरे कृषि मंत्री नियुक्त किए गए थे। वो असम के राज्यपाल भी रहे। 1979 में उनका निधन हुआ। उनकी स्मृति में भारत सरकार ने 1985 में डाक टिकट जारी किया था।
0: सो लिसनर्स, टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग अ म्यूजिशियन, वी आर द सिंगर ऑफ खयाल जॉनर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम कर्नाटका। We know her for her deep and powerful voice, Gangubai Hangal. So she belonged to the Kirana Gharana, Mukesh. And I was telling you about her deep and powerful voice, which we can listen to in this particular song.

और गंगूबाई हंगल ने जाति बाधाओं को पार कर संगीत के क्षेत्र में आधे से अधिक सदी तक अपना योगदान दिया। उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ जिले से हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में देश को कई नामी गिरामी नाम दिए हैं। इनमें भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, पंचाक्षरी गवई, पंडित पुत्तूराज गवई, पंडित सवई गंधर्व तथा पंडित कुमार गंधर्व शामिल हैं।

0: Well, this is such a beautiful composition, Gangubai Hangal.
1: और भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार सज्जाद हुसैन की आज पुण्यतिथि है। अरब शैली के संगीत के टुकड़ों से अपनी धुनें सजाने में माहिर सज्जाद हुसैन ने ऐसे ढेरों प्रयोग मौलिक तरह से ईजाद किए, ठीक उसी समय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के व्याकरण से चुनकर राग रागनियों के स्वरों का इस्तेमाल भी उन्होंने किया है। तो उनका सजाया हुआ एक गाना सुनते हैं।
0: sure.

वे इस मामले में लीक से हटे हुए संगीतकार रहे जिन्होंने अपने समकालीनों की तरह दूरी बरतते हुए कुछ तिरछा रास्ता पकड़ा। हिंदी में जिस तरह शमशेर बहादुर सिंह और शास्त्रीय संगीत में उस्ताद अमीर खान साहब का मार्ग रहा, सन 1937 में सज्जाद हुसैन ने फिल्म संगीतकार के रूप में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और अपने बड़े भाई निसार हुसैन के साथ बम्बई आ गए। उनका पहला काम सुहराब मोदी की मिनरवा मूवी टोन में 30 महीने पर था। बाद में वो वाडिया मूवी टोन में चले गए जो कि 60 रुपए महीने पर था। तो क्यों ना उनका एक और गाना सुना जाए।

और श्रोताओं, सिनेमा जगत के प्रख्यात गीतकार आनंद बख्शी की आज जयंती है। वो एक लोकप्रिय भारतीय कवि भी थे। वर्ष 1967 में प्रदर्शित सुनील दत्त और नूतन की फिल्म मिलन के गाने सावन का महीना पवन करे शोर, युग युग तक गीत मिलन के गाते रहेंगे, राम करे ऐसा हो जाए, कितने अच्छे गाने उन्होंने उनको संगीत उन्होंने लिखे थे और इन गानों से उन्हें नई ऊंचाइयां मिली। चार दशक तक फिल्मी गीतों के बेताज बादशाह रहे आनंद बख्शी ने 550 से अधिक फिल्मों में लगभग 4000 गीत लिखे। तो क्यों ना मिलन फिल्म का ये गाना सुन लिया जाए।

0: Well, such a beautiful song. So, Anand Bakshi, we are remembering the man who set a legacy. He was nominated for the Filmfare Award for Best Lyricist a total of 37 times.
1: Ji.
0: The most number of nominations, and this resulted in 4 wins.
1: और अपने श्रोताओं को बताने कि आनंद बख्शी के परिजनों ने उनका नाम आनंद प्रकाश रखा था, लेकिन फिल्मी दुनिया में आने के बाद आनंद बख्शी के नाम से उन्हें पहचान मिली। और मूंद की गुड़िया सन 1972 की फिल्म थी जिसमें उन्होंने संगीत दिया और गीत लिखे थे, और मोहन कुमार की फिल्म थी जिसमें मुख्य कलाकार थे रतन चोपड़ा और तनुजा। ये कम बजट की फिल्म थी जिसमें संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और यही वो फिल्म थी जिसमें पहली बार आनंद बख्शी को गीत गाने का मौका मिला था।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मुनम्मार से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में शिमाली मकदूनिया की अपने हम मनसब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओडेसा बंदरगाह के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में चार भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मरम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में नवम्बर शहरियों बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगजू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगी। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग से खिताब करेंगे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल की हुआ

करती है, जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। एनडीए इत्तेहाद में शामिल पार्टियां इस मीटिंग के दौरान सबसे तवील अरसे तक अपने ओहदे पर फायद रहने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने पर जनाब मोदी की इज्जत अफजाई के लिए मुबारकबाद से मुतालिक एक तहरीक मंजूर करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिया में शिमाली मकदूनिया के अपने हम मनसब के साथ बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू वजीर आजम और असम्बली के स्पीकर से भी मुलाकात करेंगी। वो शिमाली मकदूनिया की पार्लियामेंट और भारत शिमाली मकदूनिया कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया तीन मुल्कों मालदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे के तहत कल रात दो रोजा सरकारी दौरे पर शिमाली मकदूनिया पहुंची। ये किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है। उनका यह दौरा मस्कूरा तीनों मुल्कों के साथ दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मशरकी यूरोप के वसी खित्ते के साथ भारत के रिश्तों को फरोग देने की अहमियत को उजागर करता है। दोनों मुल्कों ने ज़राअत, दवासाजी, साइंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी से वाबस्ता खिदमान जैसे तरजीही शोबों में इक्तिसादी ताउन को मजीद वसअत देने पर गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। शिमाली मकदूनिया जनूब मशरकी यूरोप का चारों तरफ से खुश्की से घिरा मुल्क है। यहां भारतीय बिरादरी की तादाद बहुत कम है और ज्यादातर भारतीय अफराद आईटी के शोबों, यूनिवर्सिटियों में तदरीस या कसीर मुल्की कंपनियों में आला ओहदों पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। भारत ने यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह से रवाना होते वक्त बहरी जहाज एमवी गोल्डन एईओ पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने कहा है कि इस वाकये में चार भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शख्स को नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वजारत के मुताबिक जब यह वाकया पेश आया तो उस वक्त इस बहरी जहाज में पांच भारतीय शहरियों समेत अमले के 17 अहलकार सवार थे। वजारत खारजा ने यह बात दोहराई है कि कमर्शियल बहरी जहाजों को निशाना बनाना और बेकसूर सिविलियन अफराद पर मुश्तमिल अमले के अहलकारों की जान खतरे में डालना नीज बहरी जहाजों की आजादाना नकल व हरकत और तजारत में रुकावट डालना काबिले मजम्मत है और इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। वजारत ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय मिशन सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और मुतासर अफराद को हर मुमकिन इमदाद पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। भारत सरकार ने मरने वाले भारतीय शहरियों के कुंभों से ताजियत का इजहार किया है। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के अपने हम मनसब से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉ जयशंकर ने पनामा के साथ भारत के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया क्योंकि पनामा लातिनी अमरीका और कैरेबियाई खित्ते तक रसाई का एक अहम दरवाजा है। दोनों रहनुमाओं ने तजारत, कारोबार, तरक्की, बहरी उमूर, सेहत, ज़राअत, तालीम और डिजिटल ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने कसी रुखी बैन अवी फोरम्स पर बाहमी ताउन के सिलसिले में भी गुफ्तगू की। इससे कबल वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने इस एतमाद का इजहार किया कि पनामा के वजीर खारजा का यह दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहम को बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और बरतानिया मुश्तरका जमहूरी अखदार से मुंसलिक हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और आवाम से आवाम के राब्तों समेत मुख्तलिफ शोबों में वसी तर इश्तराक हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वह भारत बरतानिया जामे कलीदी साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर जनाब बर्नहम के साथ मिलकर काम करने के मुतमन्नी हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल को इस साल के बावकार लोकमान्य तिलक कौमी अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। ये अवार्ड उन्हें 1 अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक की 106वीं बरसी के मौके पर मुनदा तकरीब में पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और सुमित्रा पवार इस तकरीब में शिरकत करेंगी। इस अवार्ड में एक यादगारी निशान, तौसीफी सनद और 1 लाख रूपये का नकद इनाम शामिल है। जनाब अजीत डोभाल को भारत की कौमी सलामती को मजबूत बनाने, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाईयों, खुफिया मिशन और सरहदी सलामती के शोबों में उनकी
غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں اسے اعزاز کے لیے

0: श्रीलता विर्क की आवाज में आपने सुना सबा अफगानी और अश्क अम्बालवी का कलाम। इसके साथ ही आज का हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूँ कमल कुमार प्रजापति। चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको ले चलते हैं त्रिपुरा। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना ने देश भर की महिलाओं को सशक्त किया है और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदियां अपना आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर रही हैं, दूसरों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। त्रिपुरा में भी हमें ऐसी ही कई पहल देखने को मिली है जहाँ महिलाओं ने अपने स्वयं सहायता समूहों के जरिए लोगों को आजीविका देने का मौका दिया है। तो आज हम आपको पश्चिम त्रिपुरा जिले के दो महिलाओं की प्रेरक कहानियां सुनवाने जा रहे हैं। हमें ये रिपोर्ट भेजी है हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य जी ने। आइए सुनते हैं।
3: दीदी का मतलब केवल सालाना 1 लाख रुपए की आय अर्जित करना नहीं है। यह आत्मविश्वास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण सुविधा, कौशल विकास और बाजार से जुड़ने के अवसर मिल रहे हैं जिससे वे स्थायी आजीविका स्थापित कर रही है। त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन यानी TRLM के माध्यम से इस पहल के प्रभावी क्रियान्वयन में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य भर में महिलाएं खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, सिलाई, पशुपालन, कृषि तथा अन्य आजीविका गतिविधियों के जरिए सफलतापूर्वक अपने उद्यम चला रही हैं। इन प्रेरणादायक महिलाओं में पश्चिम त्रिपुरा जिले के चनखला हायर सेकेंडरी स्कूल के निकट सीकरकोट की रंजनी सिंह और विजयनगर मॉडल पंचायत की संदीपा कर्मकार प्रमुख हैं। स्वयं सहायता समूहों के सहयोग, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर इन्होंने अपने जीवन में उल्लेखनीय बदलाव लाए हैं। आज ये दोनों न केवल सफल लखपति दीदी हैं, बल्कि अपने अपने क्षेत्रों में अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बनी हुई हैं। रंजनी सिंह एक विलेज क्लस्टर की अध्यक्ष हैं और कई स्वयं सहायता समूहों का मार्गदर्शन करते हुए महिलाओं को आय सृजन के लिए प्रेरित कर रही हैं।
4: I work in our Manipuri handloom spices, gottari, mushroom, etc. units. Here, I did not have a regular source of income. Now, we make several products which has helped us earn a good income. The Lakpati Didi initiative and our SSG gave me training under the guidance of Tripura Rural Livelihood Mission to gain confidence and the opportunity to move forward. Today, I am financially independent and I encourage other women to start their own work and become self-reliant. My dream is to take our product to more people and help our group grow even further.
3: रंजनी की सफलता ग्रामीण त्रिपुरा में हो रहे व्यापक बदलाव की तस्वीर पेश करती है। जो महिलाएं कभी पूरी तरह परिवार पर आर्थिक रूप से निर्भर थी, वे आज अपनी आय अर्जित कर रही हैं, बचत कर रही हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इतना ही नहीं, कई महिलाएं अपने गाँवों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही हैं। इसी तरह संदीपा कर्मकार भी आज अनेक महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। अपने उद्यम के माध्यम से उन्होंने न केवल अपने जीवन और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि अपने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है। संदीपा का कहना है कि अपनी मेहनत के बल पर लखपति दीदी बनना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।
4: मैं 2015 में एसएचजी ग्रुप में शामिल हुई हूँ। एसएचजी ग्रुप में शामिल होने के बाद मुझे बहुत सारा ट्रेनिंग वगैरह मिला, जैसे कि मेंबरशिप ट्रेनिंग, कैसे बिजनेस करना है वो ट्रेनिंग, वो सब ट्रेनिंग ब्लॉक से मेटेरियल जो सर मैम है उस सर मैम लोगों ने हम लोगों को वो ट्रेनिंग वगैरह दिया। फिर ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है घर पे, तो फिर मैंने घर पे जाके मेरे हस्बैंड के साथ बात की। मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है चलो लोन लेकर हम लोग घर पे एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने एसएचजी ग्रुप से लोन लेकर मैंने मेरे घर पे पोल्ट्री का बिजनेस शुरू किया। पोल्ट्री बिजनेस शुरू करने के बाद मेरा बिजनेस जब एक दो महीने चल रहा था मुझे प्रॉफिट बहुत अच्छा ही मिला। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था हमारे जो बिजनेस वो है उसको बड़ा करना है। फिर मैंने फिर से एसएचजी ग्रुप से लोन लेके मैंने मेरे घर पे दो पोल्ट्री का बिजनेस फार्म किया। वो फार्म करने के बाद हम लोगों का जो इनकम वगैरह है वो अच्छा ही चल रहा है अभी तक। मतलब रबर का प्लांटेशन करने का बहुत इच्छा था। फिर हम लोगों ने मेरे जो पोल्ट्री का बिजनेस का जो इनकम वगैरह था वहां से हम लोगों ने रबर का प्लांटेशन शुरू किया। फिर मुझे और बिजनेस को आगे बढ़ाना था। फिर मैंने फिर से एसएचजी ग्रुप से सीफोन लेने के बाद मेरे जो कुकुर है वहां पे मैंने मस्ती चर्च अभी भी चल रहा है वो वगैरह। फिर मेरे बिजनेस और बढ़ने लगा, मेरा घर का जो प्रॉब्लम वगैरह था वो भी सॉल्व हो गया। उन लिया सीएलएफ से लेकर मैंने मेरे हस्बैंड को एक बास खरीद के लिया, वो बास का बिजनेस भी बड़ा अच्छा ही चल रहा है। कुछ बिजनेस वगैरह मिलकर मुझे मेरे घर पे बहुत अच्छा ही प्रॉफिट होता है और मैं प्राउड फील करती हूँ कि आज के दिन पे मैं एक लखपति दीदी हूँ।
3: हाल ही में त्रिपुरा के दौरे पर आई केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस पहल के तहत हुई

0: प्रगति की सराहना की। उन्होंने बताया कि देश भर में लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इनमें से करीब 1,30,000 महिलाएं त्रिपुरा की हैं, जबकि राज्य में लगभग 5,40,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण और बाजार से जुड़ने का कार्य लगातार कर रहा है। इन प्रयासों से महिलाएं सफल उद्यमी बन रही हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान दे रही हैं।
1: Our livelihood coordinators and cluster coordinators play a crucial role in strengthening the livelihoods of SHG members. We regularly identify potential lakhpati didis, prepare household livelihood plans, provide continuous hand-holding support, and motivate members to take up multiple income-generating activities.
0: रंजनी सिंह और संदीपा कर्मकार की कहानी यह साबित करती है कि जब महिलाओं को अवसर, कौशल और संस्थागत सहयोग मिलता है तो वे केवल अपना जीवन ही नहीं बदलती बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। लखपति दीदी पहल के माध्यम से जैसे जैसे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, वैसे वैसे त्रिपुरा महिला नेतृत्व वाले विकास, समावेशी प्रगति और आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहा है। यह पहल विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए नेहा गोस्वामी।
2: त्रिपुरा से अब हम चलते हैं मेघालय। मेघालय का पाइनएप्पल फेस्टिवल इस बार भी कृषकों के लिए आए और लोगों के लिए स्वाद का एक बहुत बड़ा परिचायक बना। तो हम आपको ले चलते हैं मेघालय और सुनाते हैं पाइनएप्पल फेस्टिवल पर हमारे सहयोगी उत्पल और निशा की ये खास रिपोर्ट।
3: आयोजित 3 दिन के मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल में इस बार 30 मैट्रिक टन ताजा अनानास की रिकॉर्ड बिक्री हुई। वह पिछले साल की तुलना में लगभग दुगनी और वर्ष 2023 में हुए पहले फेस्टिवल से करीब 4 गुना ज्यादा है। सरकार का कहना है कि बढ़ती बिक्री से साफ है कि लोग मेघालय के कृषि उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता को पहचान रहे हैं। सफलता के बाद राज्य सरकार अब बड़े रिटेल स्टोर, फूड प्रोसेसिंग कंपनियों, निर्यातों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम करेगी। इसका उद्देश्य सिर्फ अनानास ही नहीं बल्कि लोका डोंग, हल्दी, अदरक, शहद और दूसरे प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए भी बेहतर बाजार तैयार करना है। इस वर्ष के फेस्टिवल की एक बड़ी उपलब्धि फ्लिपकार्ट और नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के साथ समझौता हो रहा है। इससे किसानों को ऑनलाइन बाजारों के जरिए देश भर के ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। सरकार अब केवल खेत से फसल बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहती। इसके लिए संग्रह, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसी पूरी व्यवस्था विकसित की जाएगी ताकि किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर दाम मिल सके। और किसान कल्याण विभाग की ओर से आयोजित ये फेस्टिवल अब सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं बल्कि एक व्यापारिक मंच बन गया है। इसके जरिए किसानों को रिटेल चेन, होटल, निर्यातों और बड़े खरीदारों से सीधे जुड़ने का अवसर मिल रहा है। फेस्टिवल में आने वाले लोगों ने ताजा अनानास के साथ मेघालय के पारंपरिक व्यंजनों और अन्य उत्पादों का भी आनंद लिया। मेघालय फाइनेंस्ड ब्रांड के उत्पादों को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इस दौरान कई किसानों ने पहली बार नई दिल्ली का दौरा किया और संभावित खरीदारों से मुलाकात कर भविष्य के व्यापार पर चर्चा की। आने वाले समय में सरकार व्यापारिक बैठकों, निर्यात, फूड प्रोसेसिंग और ब्रांड विकास पर और ज्यादा ध्यान देगी ताकि मेघालय का बागवानी क्षेत्र और मजबूत हो सके। फेस्टिवल में मुख्यमंत्री के मेघालय ग्रास रोड म्यूजिक प्रोग्राम के तहत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गयी। इसके जरिए राज्य के कृषि, पर्यटन और संस्कृति को एक साथ जोड़कर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने का संदेश दिया। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू, आकाशवाणी समाचार।
2: श्रोताओं, अब हम आपको फिर से मेघालय लिए चल रहे हैं। मेघालय शिलोंग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में एक खास सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रशासन में बुनियादी सुधार और तकनीकी के प्रयोग को लेकर नेक्स्ट जेन ई गवर्नेंस प्रशासनिक सुधार सम्मेलन में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता शामिल हुए और किस तरह से नीतियों को, प्रशासन को कुशल बनाया जाए, नागरिक केंद्रित बनाया जाए और पारदर्शी बनाया जाए इन सभी विषयों पर।

0: 결정을 또한의 가세보다 구성하게
1: शिलोंग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नेक्स्ट जेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स में विशेष जोर दिया गया। इस सम्मेलन में देश भर से वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और प्रशासनिक विशेषज्ञ शामिल हुए। उन्होंने तकनीक और नवाचार के बेहतर उपयोग से शासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन केंद्रित बनाने पर विचार विमर्श किया। नई पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक उपयोग और राज्यों के सफल अनुभवों को साझा करने पर विस्तार से चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि नई तकनीकों को प्रशासन से जोड़ते समय आम लोगों की जरूरतों और सुविधाओं को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इस दौरान केंद्र सरकार की कई डिजिटल पहलों का भी उल्लेख किया गया। इनमें जनधन योजना, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI, केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CP Grams, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिकायत निवारण व्यवस्था प्रमुख है। बताया गया कि इन प्रयासों से सरकारी सेवाएं अधिक सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनी है। सम्मेलन में जानकारी दी गई कि पिछले कुछ वर्षों में करीब 2000 पुराने और अप्रासंगिक सरकारी नियम समाप्त किए गए हैं ताकि कामकाज आसान हो और अनावश्यक प्रक्रियाओं से मुक्ति मिल सके। साथ ही ये भी कहा गया कि समय समय पर नियमों की समीक्षा जरूरी है क्योंकि पुराने प्रावधान अक्सर बेहतर प्रशासन में बाधा बन जाते हैं। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के बढ़ते महत्व पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि पिछले एक दशक में सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल संपर्क के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विभिन्न राज्यों में ऐसे राष्ट्रीय आयोजनों से प्रशासनिक नवाचारों और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिल रहा है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्य से नई प्रशासनिक व्यवस्था अपनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तकनीक शासन को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम है, लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब कार्यशैली और सोच में भी बदलाव आएगा। उन्होंने पिछले सम्मेलन में अपनाई गई शिलांग घोषणा का उल्लेख करते हुए उम्मीद जताई कि इस बार शिलांग घोषणा 2.0 के माध्यम से प्रशासनिक सुधारों को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विशेष प्राथमिकता के कारण पिछले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, संपर्क व्यवस्था और प्रशासनिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिकायत निवारण जैसी पहले बेहतर परिणाम दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बदलाव को स्वीकार करने की मानसिकता विकसित करना है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि प्रशासनिक बदलाव की राह में सबसे बड़ी चुनौती पुरानी कार्यप्रणाली को छोड़ने में हिचकिचाहट है। उन्होंने अधिकारियों से अपने अपने विभागों में छोटे लेकिन व्यावहारिक सुधार शुरू करने का आग्रह किया। उनका कहना था कि ऐसी पहले आगे चलकर व्यापक परिवर्तन का आधार बन सकती है। मुख्यमंत्री ने मेघालय सरकार के CM कनेक्ट कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस पहल से सरकार और आम लोगों के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ है। इससे शिकायतों के समाधान में तेजी आई है, कमियों की पहचान आसान हुई है और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी सुझाव भी मिले हैं। डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सरकारी कामकाज अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, लेकिन स्थायी प्रशासनिक सुधार तभी संभव है जब व्यवस्था आम नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता दे, बदलाव को खुले मन से अपनाए और बेहतर जनसेवा को अपना मुख्य उद्देश्य बनाए। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्रियंका अरोड़ा।
0: बीते दिनों डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था और केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन को संबोधित भी किया था। उन्होंने त्रिपुरा में निवेशकों के प्रोत्साहन पर जोर दिया। तो हम आपको एक खास रिपोर्ट सुनाने जा रहे हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संबोधन की महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की जाएगी और कैसे पूर्वोत्तर भारत में निवेश और व्यापार का एक सुगम माहौल बन रहा है, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। आगे सुनते हैं खास रिपोर्ट।
2: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित किया। उन्होंने उद्योग जगत से त्रिपुरा में उपलब्ध निवेश की संभावनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत देश के विकास का एक मजबूत केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि एक्ट ईस्ट नीति ने इस क्षेत्र की पहचान बदल दी है। अब केवल सीमावर्ती इलाका नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया तक भारत की पहुंच का प्रमुख द्वार बन चुका है। इससे व्यापार, निवेश और संपर्क के नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा तेजी से निवेश के लिए एक आकर्षक राज्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उनके अनुसार अगरतला की रणनीतिक स्थिति इसे आसियान देशों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह क्षेत्र 76 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं वाले बड़े बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि त्रिपुरा प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है। यहाँ प्राकृतिक गैस, बांस, अगरबुद, रबर, चाय, मसाले और बागवानी उत्पादों की भरपूर उपलब्धता है। इसके साथ ही प्रशिक्षित मानव संसाधन, उद्योग, हितैषी नीतियाँ, बेहतर भूति आधारभूत सुविधाएं और देश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे राज्य की बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि बांस उत्पादन में त्रिपुरा देश में पहले और प्राकृतिक रबर उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ऐसे में विनिर्माण, खाद प्रसंस्करण, निर्यात, लॉजिस्टिक्स और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों के लिए यहाँ व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। श्री सिंधिया ने कहा कि मजबूत आधारभूत ढांचा निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर में सड़क, परिवहन और अन्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। भारत म्यांमार थाईलैंड द्विपक्षीय राजमार्ग, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना, सबरूम विशेष आर्थिक क्षेत्र, मैत्री सेतु और एकीकृत जांच चौकी जैसी योजनाएं त्रिपुरा को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने में मदद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री मानिक साहा के नेतृत्व की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य लगातार बेहतर संपर्क, आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उद्योग जगत से निवेश का आह्वान करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि त्रिपुरा केवल स्थल से घिरा प्रदेश नहीं रहा बल्कि बंगाल की खाड़ी तक पहुँच का महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार भी बन चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अष्टलक्ष्मी राज्य विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उत्तम कुमार की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं श्रेया पाठक। रिपीट। यह क्षेत्र 67 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं वाले बड़े बाजार तक पहुँच उपलब्ध कराता है।
0: हम बात करने जा रहे हैं नागालैंड विश्वविद्यालय के खास पहल के बारे में। नागालैंड में बैकयार्ड पोल्ट्री परियोजना के जरिए लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने में मदद की है, जिसमें पोल्ट्री के व्यापार को बढ़ाते मिल रही है और इसमें जो आंकड़ा हमारे सामने आया है उसके मुताबिक 30 लाख रुपए से भी ज्यादा की आय अर्जित करने में लोगों को मदद की जा रही है। तो ये खास रिपोर्ट सुनते हैं जिसमें कैसे नागालैंड में पोल्ट्री का व्यापार नागालैंड विश्वविद्यालय की मदद से हल हो रहा है, इस पर बात की गई है।
3: योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के सहयोग से संचालित की गई। इसे नागालैंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र जुहे बोटो ने लागू किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ वैज्ञानिक तरीके से मुर्गी पालन और कम लागत वाले अंडा इंक्यूबेटर के उपयोग के जरिए परिवारों के पोषण स्तर में सुधार लाना था। इस कार्यक्रम में अकुलतो ब्लॉक के सुनिसेत्सु, जाफोमी, लोमामी, अलाफोमी और शिचिमी गांव की महिलाओं को शामिल किया गया। प्रतिभागियों को वैज्ञानिक मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा रेनबो रूस्टर नस्ल के एक दिन के चूजे, शुरुआती देश दिनों के लिए चारा, टीकाकरण, दवाइयां, आवश्यक उपकरण और कम लागत वाले अंडा इंक्यूबेटर भी उपलब्ध कराए गए। नागालैंड विश्वविद्यालय के अनुसार परियोजना के दौरान लाभार्थी परिवारों ने अपने उपयोग के लिए 1300 से अधिक मुर्गियों का इस्तेमाल किया जबकि 2000 से ज्यादा पक्षियों की भी बिक्री की गई। औसतन प्रत्येक परिवार को लगभग 66 किलोग्राम अतिरिक्त चिकन मांस प्राप्त हुआ। इस

0: 380 रुपए की आय हुई। प्रत्येक महिला को औसतन लगभग 32,000 रुपए का शुद्ध लाभ मिला। योजना के दौरान 22,000 से अधिक अंडों का उत्पादन हुआ। इनका उपयोग परिवारों की जरूरत पूरी करने के साथ साथ स्थानीय बाजारों में बिक्री के लिए भी किया गया। इससे पोषण स्तर बेहतर हुआ और अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी मिला। इस परियोजना का नेतृत्व डॉक्टर राकेश कुमार चौरसिया ने किया। उनके साथ कृषि विज्ञान केंद्र जुले बेटो की टीम ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं को संतुलित आहार प्रबंधन, कम लागत वाले पोल्ट्री शेड का निर्माण, टीकाकरण, रोग नियंत्रण और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से चारा तैयार करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। नागालैंड विश्वविद्यालय का मानना है कि यह मॉडल दूर दराज के उन इलाकों में भी सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है जहां किसानों को अच्छी नस्ल के चूजे, आवश्यक संसाधन और तकनीकी मार्गदर्शन आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं विशेष शुक्ला।
1: के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि त्रिपुरा हमारे देश का किस तरह से एक अभिन्न राज्य है और यहाँ की संस्कृति, परंपरा, कला, खान पान और यहाँ की जीवन शैली किस तरह की है। तो आइए सुनते हैं त्रिपुरा के बारे में ये खास विवरण।
2: त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा सबसे छोटा राज्य, अपनी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य विविधता और परंपराओं का एक ऐसा मेल है जो हर किसी को आकर्षित करता है। त्रिपुरा का नाम संस्कृत के त्रिपुर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है तीन शहरों का राज्य। ये राज्य कभी त्रिपुरी राजवंश का हिस्सा था जिन्होंने लगभग 500 वर्षों तक यहाँ शासन किया। सन 1949 में त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना और तब से ये अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं।

पहचान यहाँ की आदिवासी जनजातियों से भी जुड़ी है। यहाँ कुल 19 आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें चिपली, रियांग, जामतिया और चकमा प्रमुख हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा, पोशाक और जीवन शैली है, जो राज्य को एक सांस्कृतिक रंगमंच बनाती है। इन जनजातियों के त्योहार, नृत्य और संगीत त्रिपुरा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। त्रिपुरा की कला और हस्तशिल्प भारत भर में अपनी अनूठी शैली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। बांस और बेंत से बने उत्पाद जैसे टोकरियाँ, फर्नीचर और सजावट का सामान त्रिपुरा की शिल्प कला के अनमोल धरोहर है। यहाँ के कारीगर अपनी कला में माहिर हैं और हर वस्तु को हाथ से बनाते हैं, जो इसे खास बनाता है। त्रिपुरा का हथकरघा उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की रेशमी और सूती साड़ियाँ, खासकर रिसा और रिगनाई, न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय हैं। त्रिपुरा के लोक संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है। यहाँ का होजागिरी नृत्य रियांग जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे मिट्टी के बर्तन और दिए लेकर अद्भुत संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। ये नृत्य फसल कटाई के बाद खुशी और उत्सव के अवसर पर किया जाता है। गौरिया नृत्य भी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इन नृत्यों में दिखने वाली ऊर्जा और जीवंतता त्रिपुरा की संस्कृति का प्रतिबिंब है। त्रिपुरा का ऐतिहासिक महत्व इसकी वास्तुकला और स्मारकों में भी झलकता है। जयंत महल, जो अगरतला में स्थित है, त्रिपुरा के राजाओं का शाही निवास था। इस महल की वास्तुकला, बगीचे और भव्यता इसे त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। नीर महल, जो रुद्रसागर झील के बीच में स्थित है, राज्य का एकमात्र महल है। ये महल त्रिपुरा के शाही वैभव और संस्कृति की झलक देता है। त्रिपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य इसे स्वर्ग के समान बना देता है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़ियाँ और झरने प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य और रोवा वन्य जीव अभयारण्य जैसे स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन अभयारण्यों में पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा ऊनाकोटी एक रहस्यमय स्थल है, जहां पहाड़ियों पर विशाल शिव मूर्तियां और शिलालेख हैं। इनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और ये स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए खास है। त्रिपुरा के खानपान में भी इसकी

आदिवासी जनजातियों के फसल कटाई से जुड़ा त्योहार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा पूजा, गंगा सप्तमी और कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन त्रिपुरा की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। त्रिपुरा आज के समय में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगरतला राज्य की राजधानी अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और परंपरा का अद्भुत मेल है। यह छोटा सा राज्य अपनी अनोखी पहचान और विविधता के लिए जाना जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो त्रिपुरा जरूर आए और इसकी खूबसूरती और संस्कृति को करीब से महसूस करें। ये राज्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है जो इसे जानने और देखने की चाहत रखता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची प्रिया।

0: आज के कार्यक्रम का अंक यही तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में। हमें अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी है। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

बख्शी की पैदाइश आज ही के दिन 21 जुलाई सन था 1930 रावलपिंडी में हुई थी, जो उस वक्त बरतानवी साम्राज्य का हिस्सा था और आज ये पाकिस्तान

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस एयर कर रही है प्रोग्राम मेरी पसंद। आज हम आपको आनंद बख्शी के लिखे हुए नगमे सुनवा रहे हैं। कहीं कहीं दिल चाहा तो उन्होंने नगमों को अपनी आवाज से भी सजाया। खासतौर पर मोम की गुड़िया फिल्म का यहां जरूर जिक्र करेंगे और चरस फिल्म का भी जिक्र करेंगे, जहां पर उन्होंने एक लिटिल बिट अपनी आवाज का दिया। उनके नगमे जो है सामीन आज भी बहुत ही क्लासिक अंदाज के नगमे माने जाते हैं। उनकी लिखी जो शायरी है उसमें मोहब्बत की नरमी भी दिखाई देती है, जुदाई का दर्द भी है, दोस्ती की मिठास भी है, जिंदगी की हकीकत भी है। और यही वजह है कि वक्त तो गुजरता रहा और हम 60s से लेकर फिर अब 2026 तक आ गए, लेकिन जो उनके लिखे हुए गीत हैं उनमें आज भी वही ताजगी बरकरार है। आज भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि आज के संदर्भ में ही जैसे कोई गीत लिख दिया गया हो। आनंद बख्शी साहब को उनके शानदार कलाम पर मुतअद्दिद एजाजात से भी नवाजा गया। कई फिल्में, तकरीबन 35-36 से ज्यादा उनकी फिल्में हैं जो फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुई। कई फिल्में हैं जहां पर उन्होंने फिल्म फेयर के अवार्ड्स जीते भी। और आखिर 30 मार्च 2002 को आनंद बख्शी साहब ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहा, लेकिन अपने गीतों में वो आज भी जिंदा है और उनके नगमे, या ये कहिए कि उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगे, पाइंदा रखेंगे। जब भी मोहब्बत की बात होगी, प्यार का जिक्र होगा, जुदाई का मामला होगा, खुशी के गीत होंगे या फिर कुछ सैड सॉन्ग्स होंगे, तो उनके जो लिखे हुए नगमे हैं, जज्बात को उन्होंने जिस तरह से उजागर किया, वो हमेशा उनकी याद हमें दिलाते रहेंगे।

राजेश खन्ना पर फिल्माया हुआ नगमा आराधना फिल्म से आपने सुना मेरा बहुत ही पसंदीदा गीत राजेश खन्ना साहब की फिल्म किशोरदा के खूबसूरत आवाज आनंद बख्शी के बोल थे। तो हम यहाँ पर बात को अपनी छोड़कर गए थे कि आनंद बख्शी के लिखे हुए नगमे क्यों मकबूल हैं, उनकी क्या इनफरादियत है, क्या वजह है कि लोग आज भी जब उन नगमों को गुनगुनाते हैं तो बहुत ही फ्रेश फील करते हैं। यहाँ हम आपको सुनवाएंगे उनकी आवाज का सुर, यानी जब वो गाते थे तो गाते भी बड़ा सुरीला थे और चंद जगह पर उन्होंने अपनी आवाज का बखूबी इस्तेमाल किया, उसमें से एक

आपने सुना आनंद बख्शी का ये लिटिल बिट जो कि चरस फिल्म से हमने आपको सुनवाया। अगर उनकी हम उन फिल्मों की बात करें जो बहुत ही म्यूजिकल हिट फिल्में रही तो हम बॉबी का जिक्र करेंगे, अमर प्रेम का जिक्र करेंगे, आराधना, जीने की राह, मेरा गांव मेरा देश, आए दिन बहार के, आया सावन झोंके, सीता गीता, शोले, धर्म वीर, नगीना, लम्हे, हम, मोहरा, उसके बाद और आगे आ जाइए तो आ गई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और फिर उसके बाद परदेश, हीर रांझा, दुश्मन, ताल, मोहब्बतें, गदर एक प्रेम कथा, या फिर यादें जो कि 2001 में रिलीज हुई थी। तो ये बेशुमार फिल्में ऐसी और उसमें बहुत सारे ऐसे नगमे जो रहती दुनिया तक उनकी याद हमेशा दिलवाते रहेंगे। एक सुपरहिट फिल्म का एक सुपरहिट गीत एक आपको सुनवाते हैं, आनंद बख्शी का ही लिखा हुआ।

तो देखा आपने मोहब्बत के जज्बात से लबरेज एक खूबसूरत नगमा, सादा से अल्फाज लेकिन उनको इस तरह से खूबसूरत अंदाज में शीरीनी से डुबो दिया गया कि उन्होंने एक नया रंग और एक नया आहंग इख्तियार कर लिया। सामिन, हम सिर्फ आखिर में यही कहेंगे कि आनंद बख्शी सिर्फ एक नगमा निगार नहीं थे बल्कि वो जज्बात के मुतरजिम थे। एक आम इंसान के जज्बात को इतने खूबसूरत अंदाज में, रंगीन पैराए में और जज्बात से भरपूर चाशनी से वो इस तरह से नगमे की शक्ल दे दिया करते थे कि वो बेसाख्ता लोगों के लबों पर मचल जाता है। यहीं पर खत्म करेंगे आज के प्रोग्राम का यह सिलसिला। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस ने खराज अकीदत पेश किया, खराज तहसीन पेश किया आनंद बख्शी साहब को। आज था उनका यौम पैदाइश और हमने आपको सुनवाए कुछ खूबसूरत नगमे उन्हीं के कलम से जो हम तक और आप तक पहुंचे। आखिरी पेशकश के साथ दीजिए इजाजत।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार।

0: आप सुन रहे थे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। जी अब सुनिए मुर्सखान सज्जाद हुसैन की यौम वफात पर एक खसूसी पेशकश फीचर, जिसका उन्वान है फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम, तहरीर डॉक्टर इरशाद परवेज की है।
1: हाँ बस शुरू कर रहे हैं। साहिबान म्यूजिक डायरेक्टर एसोसिएशन के आज के इस हंगामी इजलास में हम आप सबका खैर मकदम करते हैं। मौजूद अराकीन को ये बात मालूम ही है कि आज का ये हंगामी इजलास मौसीकार सज्जाद हुसैन साहब की शिकायत पर बुलाया गया है, जिन्होंने मौसीकार मदन मोहन साहब के खिलाफ उनके गाने की तर्ज चुराने की, बल्कि कहना चाहिए कि तर्ज उठाने की शिकायत।
2: एक मिनट देखिये, मैं तसी करना चाहूंगा कि मैंने चोरी या डाके की शिकायत यहाँ पे नहीं की है। मैंने मदन मोहन साहब के खिलाफ मेरे एक गाने की नकल की शिकायत की है, और मदन मोहन साहब जैसे भी हैं एक अच्छे मौसीकार हैं, और मुझे अफसोस है कि उन जैसे अच्छे मौसीकार के खिलाफ मुझे ये शिकायत करनी पड़ी है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी अच्छे मौसीकार को नकल जैसा छोटा काम जेब नहीं देता।
1: जी। आप सज्जाद हुसैन साहब, आप अपने दावे की सदाकत के लिए अगर कुछ सबूत पेश करना चाहते हैं तो पेश कर सकते हैं।
2: जी ठीक, जरूर लीजिए, सबूत हाजिर है।
1: जी
2: ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये मैं ग्रामोफोन लेकर आया हूँ।
1: जी
2: ये देखिए, इस कार्ड पर लिखा है फिल्म सन दिल, देख रहा है आप सबको।
1: जी
2: आज से 5 साल पहले तलत महमूद की शमा की लौ की तरह थरथराती हुई आवाज में मैंने ये गाना कंपोज किया था। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, है ना, गाना आप सबका सुना हुआ है, फिर भी सुना देता हूँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

0: और देखिए 5 साल से ये गाना एक मकबूल गाना है। आप एक बच्चे को भी अगर इसकी एक लाइन गाकर सुना दीजिए तो वो बाकी गाना गाकर उसे मुकम्मल कर देगा। और आप ये लीजिए, जरा ये पढ़कर बताइए, बताइए कि इस रिकॉर्ड पे जी क्या क्या लिखा है।
1: जी पढ़ो पढ़ो, इस पे लिखा है फिल्म आखिरी दाव।
0: जी जी जी बिल्कुल, और ये आखिरी दाव मेरे साथ ही शायद खेला गया है। ये देखिए इस रिकॉर्ड पर ये भी लिखा है कि गाने के बोल है तुझे क्या सुनाऊं है दिलरुबा, और आवाज मोहम्मद रफी की है। लीजिए आप सुन लीजिए, सभी लोग सुन लीजिए।
1: जी जी जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी।

0: कृष्ण जी, सुना आपने? सुन लिया आप सबने? इस रिकॉर्ड पर ये भी लिखा होना चाहिए कि ये सरासर नकल है मेरे गाने है कि नहीं है, बताइए। अरे चुप क्यों है आप लोग?
1: मदन मोहन साहब, बोलिए आप, क्या कहते हैं इस सिलसिले में?
0: मैं पूछना ये चाहता हूँ मदन मोहन साहब कि मेरी इजाजत के बगैर आपने मेरी धुन की नकल क्यों की, बताइए।
2: सच तो ये है कि ये हवा, ये रात, ये चांदनी इतनी अच्छी धुन है कि अपने गाने के लिए मुझे इससे बेहतरीन धुन नहीं मिल सकी। ये एक तरह से सज्जाद हुसैन साहब की बनाई धुन के लिए मेरा ट्रिब्यूट है। फनकार लोग अपने काम से दूसरे फनकारों को अपनी पसंदीदगी का खिराज देते हैं। जिस तरह से फिल्म संगदिल अंग्रेजी नावल जी नायरे को खिराज पेश करती है, इसी तरह मेरी धुन सज्जाद हुसैन साहब की धुन को खिराज पेश करती है। मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ, तुझे क्या सुनाऊं ए दिलरुबा, ये धुन दरअसल ए क्लास म्यूजिक डायरेक्टर सज्जाद हुसैन की धुन।
3: कहा जाता है कि इस जवाब पर सज्जाद हुसैन का गुस्सा काफूर हो गया। वो मुस्कुराए, हाजरीन पर एक तायराना नजर डाली और खामोशी से उठकर बाहर चले गए। ये अजीम मौसीकार सज्जाद हुसैन थे जिन्हें बजा तौर पर अपनी मौसीकी पर नाज था। उनकी बनाई गैर मामूली धुनें उनकी तख्लीकी सलाहियतों की जिंदा व जावेद मिसाल।

सिखा सज्जाद हुसैन 15 जून सन 1917 को सीतामऊ शहर में पैदा हुए। बचपन में ही अपने वालिद उस्ताद मोहम्मद मीर खां से उन्होंने सितार बजाना सीखा और इब्तदाई दौर से ही सज्जाद हुसैन ने वीणा, वायलिन, बांसुरी, पियानो, जलतरंग और क्लैरिनेट बजाने के साथ साथ मैंडोलिन बजाने में बतौर खास अच्छी महारत हासिल कर ली।

कोलकाता में एक ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें उस वक्त के सभी नामवर मौसीकार जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, पंडित विनायक राव पटवर्धन, सरोज नवाज, उस्ताद अली अकबर खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान, तबला नवाज उस्ताद अहमद जान थरकुआ जैसे माहिरीन फन शरीक हुए। कोलकाता की इस ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उस वक्त लोग चौंके जब सज्जाद हुसैन मैंडोलिन लेकर स्टेज पर पहुंचे। चूंकि मैंडोलिन को क्लासिकी मौसीकी का साज नहीं समझा जाता है, इसलिए वहां मौजूद लोगों में चिंगोइयां हुई। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां मौजूद हर शख्स सज्जाद हुसैन का गर्विदा हो चुका था।

सजाद हुसैन ने मैंडोलिन पर राग शिवरंजनी और हरिकौस इतनी खूबी से बजाया कि लोग ये बात भूल ही गए कि मैंडोलिन क्लासिक की साज नहीं है।

सिर्फ 15 साल की उम्र में सज्जाद हुसैन अपने भाई नासिर हुसैन के साथ म्यूजिक डायरेक्टर बनने के ख्वाब के साथ मुंबई पहुंचे। सोहराब मोदी ने जब मुख्तलिफ साजों पर इस लड़के की महारत देखी तो मिनर्वा टोन में सज्जाद हुसैन को 30 रुपए माहवार तनख्वाह पर रख लिया। जल्द ही वाडिया मूवी टोन ने दुगनी तनख्वाह पर सज्जाद हुसैन को अपने पास बुला लिया, यानी 60 रुपए माहवार। इसके कुछ सालों बाद सज्जाद हुसैन ने मौसीकार मीर साहब और रफीक गजवी के असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया। 1940 के आसपास सज्जाद हुसैन मीना कुमारी के वालिद अली बख्श जहूर के साथ भी कुछ अरसा मुआविन रहे और उनके लिए मैंडोलिन बजाते रहे।

0: कहा जाता है कि जब इस फिल्म के प्रोड्यूसर शौकत हुसैन रिजवी ने फिल्म दोस्त की कामयाबी का सेहरा अपनी नौ ब्याहता बीवी नूरजहां के सर बांधा तो मौसीकार सज्जाद हुसैन को ये तख्लीकी बेईमानी बुरी लगी और इसके बाद उन्होंने कभी भी शौकत हुसैन रिजवी के लिए काम नहीं किया और न ही कभी कोई गाना नूरजहां की आवाज में रिकॉर्ड किया।
1: सज्जाद हुसैन को मौसीकी के असरार और नमूस की बहुत गहरी समझ थी, लेकिन उनके इसी एतमाद और खुददारी ने कोताह कद दोनों की इस दुनिया में उन्हें अकेला कर दिया। सज्जाद हुसैन के लहों में तह दर तह परतें होती थी, जैसे किसी फूल में नाजुक पत्तियों के पीछे नर्म गोदाज कूपने छुपी होती हैं, जिनमें रंग भी होते हैं और खुशबू भी। ऐसे ही उनके नगमों में मौसीकी का हुस्न और रंगीनियां और खुशबुएं छुपी होती थी।
0: सज्जाद हुसैन एक खुददार इंसान थे और बजा तौर पर अपने फन पर नाज करते थे। वो न खुशामद पसंद करते थे न कर सकते थे। यही वजह है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में म्यूजिक दिया, लेकिन इसके बावजूद उनके काम को बासानी भुलाया नहीं जा सकता। सज्जाद हुसैन ने कम फिल्में की, लेकिन जितनी भी फिल्में की उन सभी फिल्मों में उन्होंने नहायत उम्दा और इंतहाई दिलकश धुनें तरतीब दी।
1: सज्जाद हुसैन ने अपने जमाने के मशहूर गुलूकारों जैसे कि सुरैया, आशा भोसले, लता मंगेशकर, गीता दत्त, मन्ना डे, तलत महमूद और मोहम्मद रफी जैसे गुलूकारों की आवाजों में यादगार गाने कंपोज किए। सज्जाद हुसैन की अहम फिल्मों में खेल, हलचल, सैया, संगदिल और रुस्तम और सोहराब जैसी फिल्में सरफहरिस्त हैं।
0: फिल्म खेल के गीत भूल जा ए दिल मोहब्बत का फसाना सच्चे मानों में एक अजीब और गरीब धुन है, जिसमें बांसुरी और क्लैरिनेट से सुरों में गहराई पैदा की गई है। ऐसा लगता है कि ये एक धीमे सुरों का गाना है, जबकि दरअसल ये तेज लय का गाना है। इसमें छोटे छोटे सुर हैं जिनको जल्दी जल्दी गाया गया है। अशार का इख्तिताम भी खासी कलाकारी से किया गया है।

असली पेचीदा लयकारी वाले गानों की वजह से लता मंगेशकर ने एक बार कहा था कि वो सज्जाद हुसैन के लहू को गाते हुए खायफ से रहती थी। एक बार जब वो रिहर्सल में तीन बार बेसुरी हो गई तो सज्जाद हुसैन ने कहा था, लता ये नौशाद मियां की धुन नहीं है जो आप आसानी से गा ले जाए, मेहनत करनी पड़ेगी।

फिल्म खेल में सागर निजामी का लिखा और लता मंगेशकर का गाया एक गाना था, जाते हो तो जाओ हम भी यहाँ यादों के सहारे जी लेंगे। अपनी मखसूस लय के लिए सज्जाद हुसैन का ये शाहकार नगमा हमेशा याद किया जाएगा।

फिल्म हलचल में कुमार बाराबंकी का तहरीर करदा आज मेरे नसीब ने मुझको रुला रुला दिया। लता मंगेशकर की आवाज में एक यादगार गीत है। इस गाने में भी तीन चौथाई लयकारी महसूस होती है, लेकिन इसमें दरअसल 6 बीट का साइकिल है। इसमें बहुत नायाब ऑर्केस्ट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। अंतरे में मुतबादल धुन का अक्स बहुत दिलचस्प है। आवाज के सुर के बाद बांसुरी के सुर ऊपर उठते हैं और उनकी आवाज गुम हो जाने के बाद पियानो से इख्तिताम होता है, जो किसी जादू की मानिंद दिल को मोह लेता है।

सज्जाद हुसैन की एक लाजवाब धुन ऐसी है कि अगर वो कोई और गाना न भी कंपोज करते तो उन्हें अमर बनाने के लिए ये गाना काफी था। वो रात दिन, वो शाम की गुजरी हुई कहानियां, इस गाने का सोज, इसकी गहराई और शिद्दत एहसास अपनी मिसाल आप है। इस नगमे की मौसीकी में एक किस्म की उरूहियत है जो इस नगमे को एक शाहकार का दर्जा बख्शती है, और हम इस बात पर नाज कर सकते हैं कि हम इस गाने को सुन सके और उस एहसास जमाल को जज्ब कर सके जो इस नगमे को सुरों का एक मध्यम आबशार बनाकर बहाता है और जो अपने साथ हर एहसास को बहा ले जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे मौसिकार सजाद हुसैन पर ये फीचर। फिर तुम्हारी याद आई ए सनम, पहली डॉक्टर इरशाद परवेज की थी और पेशकश थी अली मोहतशिम रजा की। सदाकार थे अली मोहतशिम रजा और दानिश अकबाल। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आपके लिए मेहनत से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में शिमाली मकदूनिया के अपने हमनसब से बातचीत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहैम को बरतानिया के वजीर आजम का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में चार भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाली कई अशिया और सामान पर 50% इजाफी महसूल नाफिज कर दिया है। और भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश के बाज हिस्सों जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश होने की पेशगोई की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में शिमाली मकदूनिया के अपने हमनसब गोर्दाना सिल्जोनोस्कोवा दाओकोवा के साथ बातचीत करेंगे। मोहतरमा मुर्मू वजीर आजम रिशितिजन मिकस्टी और असेंबली के स्पीकर एफिम गाश से भी मुलाकात करेंगे। वो शिमाली मकदूनिया के पार्लियामेंट और भारत शिमाली मकदूनिया कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया तीन मुल्कों मोल्दोवा शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे के तहत कल रात दो रोजा सरकारी दौरे पर शिमाली मकदूनिया पहुंची। ये किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है। उनका ये दौरा मस्कूरा तीनों मुल्कों के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मशरकी यूरोप के वसी खित्ते के साथ भारत के रिश्तों को फरोग देने की अहमियत को उजागर करता है। दोनों मुल्कों ने ज़राअत दवासाजी साइंस और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी से वाबस्ता खिदमात जैसे तरजीही शोबों में इक्तसादी ताउन को मजीद वसअत देने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। शिमाली मकदूनिया जनूब मशरकी यूरोप का चारों तरफ से खुश्की से घिरा मुल्क है। यहां भारतीय बिरादरी की तादाद बहुत कम है और ज्यादातर भारतीय अफराद आईटी के शोबों यूनिवर्सिटियों में तदरीस या कसीर मुल्की कंपनियों में आला ओहदों पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहैम को बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और बरतानिया मुश्तरका जमहूरी अकदार से मुंसलिक हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत सरमायाकारी टेक्नोलॉजी दिफा और आवाम से

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाली कई अशिया और सामान पर 50% इजाफी महसूल नाफिज कर दिया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि कनाडा की जानिब से अमेरिकी सामान के मामले में तफरीक बरतने के जवाब में ट्रंप इंतजामिया ने यह कदम उठाया है। बयान में कहा गया है कि मस्कूरा इकदाम का मकसद कारों, अल्कोहल और डेयरी समेत अहम अमरीकी बरामदात के लिए बराबर का मौका दस्तियाब कराना है। और कनाडा ने कहा है कि अमरीका के ये नए महसूल तीन मुल्कों कनाडा, अमरीका और मैक्सिको के माबेन आजाद तिजारत के समझौते की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने अमरीकी महसूलात के तनाजुर में एक बयान जारी करके कहा है कि कनाडा अंदरूनी मुल्क अपने कारकुनों, किसानों, कारोबारी अफराद और कुंबों की मदद के लिए जरूरी इकदाम करेगा। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान के खिलाफ फिर हमले किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि ये हमले ईरान के फौजी सलाहियत को मजीद कमजोर करने के मकसद से किए गए हैं। इससे कबल ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब ने कहा कि उसकी बहरी फोर्सेज ने ईरान के सूबों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी असासों और ठिकानों को शदीद नुकसान पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में मानसून सरगर्म है और कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज में आज रियासत के 5 जिलों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश लगातार होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से कई राबता सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि कुछ इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई में रुकावट पड़ गई है। बहाली का काम जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिले में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के बाज हिस्सों में बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मशरकी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दस्ते की क्यादत करेंगी। खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों के पहले राउंड में आज पीवी सिंधु का मुकाबला अपने हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा।

0: मेट्रो ऑफ इंडिया फिल्म का नगमा भी आपने सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है खान अब्दुल गफ्फार खान।
1: एक दुबले पतले जिस्म का तवील कामत पठान, गठन की सूरत में जैसे अपनी कुल कायनात सीने से लगाए, सादगी का पैकर, लबों पर एक नर्म और मोहिनी सी मुस्कुराहट लिए, अपने इस्तकबाल के लिए मौजूद आला हुकाम और आला सियासी रहनुमाओं के रुतबे से बेनियाज और बेपरवाह, यह है बड़े सगीर के एक अजीम रहनुमा, अदम तशद्दुद के कायद और महात्मा गांधी के सच्चे जानशीन खान अब्दुल गफ्फार खान की वो तस्वीर, जिसका नक्श अभी तक बड़े सगीर की मौजूदा नस्ल के जहनों में ताजा है, लेकिन वो नस्ल जिसने जिदोजहद आजादी का अपनी आंखों से मुशाहदा किया है, खान अब्दुल गफ्फार खान की एक अलहदा ही तस्वीर अपने जहनों में समोए हुए है। इस तस्वीर में जिदोजहद और मसाइब की एक तवील तारीख मौजूद है और हिंद की जिदोजहद आजादी की तारीख में खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम लाफानी हैसियत रखता है। पठानों ने अपने किरदार अमल से अपनी जो तस्वीर आम आदमी के जहन में सदियों से नक्श की हुई थी, वो जंगजू और तशद्दुद के हामी ऐसे नस्ली ग्रोह की है जो हर मसले का हल बंदूक की मदद से तलाश करता है। खान अब्दुल गफ्फार खान की शख्सियत वो पहली शख्सियत थी जिसने पठानों के इस तसव्वुर को यकसर बदल कर रख दिया। उन्होंने दिखा दिया कि एक पठान भी अदम तशद्दुद का हामी हो सकता है और दूसरों को भी फलसफाए अदम तशद्दुद की अमल पैराई पर आमादा कर सकता है। असलहे की शैदाई और तशद्दुद की मतवाली कौम को तशद्दुद की राह से हटाना खान अब्दुल गफ्फार खान का तारीख साज कारनामा करार दिया जा सकता है। उनके इसी कारनामे से अदम तशद्दुद के ऐसे शैदाइयों का जन्म हुआ जो बरहना सीनों पर गोलियों के बौछार के शौक में एक दूसरे से बाजी ले जाने के लिए बेताब रहते। बादशाह ने बाहमी इख्तलाफ के शिकार जमातों और मुंतशिर जर्गों को एक अजीम मकसद की खातिर यानी जुल्म के खिलाफ जिदोजहद के लिए एक परचम तले इकट्ठा कर दिया। हिंदुस्तान की जिदोजहद आजादी में पठान हरावल दस्ता बन गए। ये बादशाह की तालीम का असर था कि पेशावर के किस्सा खानी बाजार में जमा शुदा हजारों पठानों ने गढ़वाली पलटन के सामने अपने सीने बरहना कर दिए और तशद्दुद से काम नहीं लिया। गो के बादशाह में मजहबियत और खिदमत खल्क का जज्बा अपने वालिद से आया था, लेकिन उनकी शख्सियत की तामीर में उनकी वालिदा का बहुत ज्यादा हाथ रहा, जो कि एक खुदा तरस नेक खातून और गरीबों की हमदर्द थी। खुद बादशाह ने एतराफ किया कि मजहब का शऊर अपनी मां से और अदम तशद्दुद की जानिब मिलान अपने वालिद की जानिब से हासिल हुआ। बादशाह खान की अवामी जिंदगी का आगाज तालीम की तौसी व इशात से हुआ। आत्मान जई का कौमी तर्ज का मदरसा सन 1911 में शुरू हुआ और साल दो साल के अंदर ही इस मदरसे की शाखें कुर्ब जवार के देहातों में कायम हो गईं। अवामी बेदारी का ये इस इलाके में पहला दौर था। इन मदरसों की अहमियत इसलिए भी ज्यादा थी कि वो दर्स तदरीस से ज्यादा कौमी बेदारी के मरकज थे। इसी वजह से हुकूमत भी इन मदरसों को शक व शुबह की निगाह से देखती थी। सन 1914 और 1915 में अंग्रेजों ने कौमी दर्सगाहों के मदरसीन को यके बाद दीकरे गिरफ्तार कर लिया। सन 1921 के आगाज में बादशाह ने फिर अपने दर्सगाहों के दरवाजे खोल दिए, लेकिन इस दफा अपनी तवज्जो सिर्फ तालीम तक महदूद नहीं रखी, बल्कि मुआशरे की इस्लाह और तबलीग पर खास ध्यान दिया गया। सन 1917 और सन 1920 के दरमियानी मुद्दत में इन्हें इस्लाह माशरा के जाहिरी कामों और मुसल्ला बगावत की खुफिया तंजीम का खास तजुर्बा हासिल हो गया था। इन तजुर्बात की रोशनी में इन्होंने अपने कुछ उसूल मुरतब किए और उनकी बुनियाद पर मुस्तकबिल का मनसूबा तरतीब दिया। इनमें पहला और अहम तरीन उसूल यह था कि गैर मुल्की हुकूमत के खिलाफ जो भी तहरीक या मुहिम चलाई जाए वो खुफिया न हो बल्कि जाहिर और वाज़ेह हो, ताकि अवाम को बिना खौफ इसकी अहमियत का एहसास दिलाया जा सके। ये सब बातें बादशाह के दिल में गांधी जी की पैदा करदा अवामी बेदारी और खुद अपने तजुर्बात की बिना पर घर कर गई थी। पठानों के ख्यालात के धारे को सही समत में ले जाने के लिए

0: सुनोगे आकाशवाणी है प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पूर्वी यूरोप में भारत के राजनयिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशित कुमार।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 राष्ट्रों की यात्रा पर कल मोल्डोवा पहुंची और बाद में फिर वो नॉर्थ मैसिडोनिया और फिर बाद में रोमानिया पहुंचेंगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं प्रोफेसर अंशु जोशी। प्रोफेसर जोशी आपका बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद।
1: प्रोफेसर जोशी राष्ट्रपति सबसे पहले अपने पहले चरण में कल मोल्डोवा पहुंची हैं और ये गौरतलब है कि

0: सहयोग की ओर देखें, ऊर्जा सहयोग की ओर देखें, मोल्डोवा भारत का आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और हमारी राष्ट्रपति जब इस देश की यात्रा पर है तो दोनों द्विपक्षीय स्तर पर और बहुपक्षीय स्तर पर मुझे लगता है दोनों देशों के बीच में सहयोग और ज्यादा गाढ़ा होगा।
1: राष्ट्रपति के साथ दल में बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन भी और बिजनेस कम्युनिटी भी साथ में वहां पे गए हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मौजूदा जो हालात हैं, जो पॉलिटिकल जो टेंशन चल रही हैं, उसमें जो भारत का ये आउटरीच है, खास करके ऐसे देशों में, अगर हम यूरोप के, आपने यूरोपियन यूनियन की बात की, जो मदर ऑफ ऑल डील्स, जो ट्रेड डील हुआ था, तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कितना महत्वपूर्ण है भारत का ये आउटरीच टुवर्ड्स मोल्डोवा।
0: पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि वैश्विक राजनीति में लगातार एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है, जिसमें एक और रशिया यूक्रेन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा तो पश्चिम एशिया के संकट ने पूरे विश्व के सामने नई नई चुनौतियों को प्रस्तुत किया है, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर मानवीय सुरक्षा तक। ऐसे में भारत अपनी सकारात्मक कूटनीति के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता हुआ नजर आता है और लाइक माइंडेड देशों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में साझा सहयोग की और साझा विकास की बात करता है। तो हम याद करें कि अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे महत्वपूर्ण देशों की यात्रा संपन्न की। इसके पहले वो यूरोप के दौरे पर थे, इसके पहले उन्होंने पश्चिम एशिया के, अफ्रीका के देशों का दौरा किया, यूरोप के कुछ और देशों का दौरा किया। तो ये जो एक आउटरीच प्रोग्राम है, इसके जरिए भारत ने न सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को सफलतापूर्वक पूरा करने का काम किया है, भारत ने वैश्विक स्तर पर इस बात का संदेश दिया है कि युद्ध किसी भी बात का समाधान नहीं है। आज का जो विश्व है उसमें शक्ति की परिभाषा में तकनीकी सहयोग, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और जो पीपल टू पीपल कनेक्शन, वो बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं और इस दृष्टि से मोल्डोवा हमारा एक महत्वपूर्ण साझेदार नजर आता है। न सिर्फ बहुपक्षीय स्तर पर ईयू के मेंबर के रूप में जो हमने एक एफटीए कर रखा है, तो निवेश के, को मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग जो द्वार हैं संभावनाओं के, वो खुलते हुए नजर आते हैं। द्विपक्षीय स्तर पर भी जब जो कूटनीतिक लक्ष्य लेकर के भारत वैश्विक स्तर पर बात करता है, चाहे वो ग्लोबल साउथ का एजेंडा हो या फिर अलग अलग हम गवर्नेंस में रिफॉर्म्स की बात करते हो या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हो, तो वहां पर फिर हमको मोल्डोवा एक सहयोगी के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए मोल्डोवा का ये दौरा हर प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: प्रोफेसर जोशी और राष्ट्रपति अपने यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंचेंगे। प्रोफेसर जोशी, हम ये समझना चाहेंगे कि नॉर्थ मैसेडोनिया का कितना प्रभाव, किस प्रकार आप इसे देखते हैं?
0: देखिए, नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और भारत उन यूनाइटेड नेशंस के 40 देशों में से एक है जिसने यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन फॉर नॉर्थ मैसेडोनियाज एडमिशन टू यूनाइटेड नेशंस जो 1993 में हुआ था उसको को स्पॉन्सर किया था और नॉर्थ मैसेडोनिया की एक एम्बेसी नई दिल्ली में 2008 से है। दोनों ही देशों के, यदि हम सामरिक सहयोग की दृष्टि से बात करें, सांस्कृतिक सहयोग की बात करें या आर्थिक सहयोग की, तो दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध है और नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो यूरोपियन यूनियन के एक सदस्य देश के रूप में भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रदान करता है हमारे सारे प्रोडक्ट्स के लिए, तो हमारे लिए एक मार्केट के रूप में, फिर नॉर्थ मैसेडोनिया हमारे इन्वेस्टमेंट करता है तो उस दृष्टि से, और एक को मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग हब ये भारत को मानता है, तो इस दृष्टि से भारत के बिजनेसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि मैं आपको दूसरे यदि क्षेत्र बताऊं तो फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में दोनों देश लगातार अपने सहयोग को बढ़ा रहे हैं। और ये भी बता दूं कि यदि हम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो मदर टेरेसा नॉर्थ मैसेडोनिया से ही ताल्लुक रखती थी, तो फिर बाद में ये इंडियन सिटीजन बनी। तो यदि हम ऐतिहासिक सहयोग या ऐतिहासिक रिश्तों की बात करें तो दोनों देशों के बीच में बड़ा गाढ़ा रिश्ता है और इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के भी भारत नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो इसके राष्ट्रपति का ये दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: जी प्रोफेसर जोशी, यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी नॉर्थ मैसेडोनिया की, और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कि वहाँ के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर राष्ट्रपति जी वहाँ पहुंचेंगे 21 और 22 जुलाई को और वहाँ नॉर्थ मैसेडोनिया के असेंबली को भी एड्रेस करेंगे और साथ साथ इंडिया नॉर्थ मैसेडोनिया बिजनेस फोरम, अभी हम थोड़ी देर पहले बिजनेस की बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर जोशी, अगर हम देखें जैसे कि हमने पीछे भी जब बात कर रहे थे मोल्डोवा की, तो बिजनेस खास करके करंट परिप्रेक्ष्य में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितना ये आउटरीच इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जबकि हमें किसी भी एक ब्लॉक पर हम डिपेंड नहीं रह सकते आज के डेट में, ये आज का ये वास्तविक सच है। और दोनों ही पक्ष जो है, खास करके भारत की बात करें या नॉर्थ मैसेडोनिया की बात करें, दोनों ही काफी कीन है अपने इकोनॉमिक टाइज को और ज्यादा गहरा बनाने में, और प्रायोरिटी सेक्टर्स की आपने बात की, एग्रीकल्चर की बात की, फार्मा की बात की, साइंस टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन।

0: देखो, ये आज का ये वास्तविक सच है, और दोनों ही पक्ष जो है, खास करके भारत की बात करें या नॉर्थ मैसेडोनिया की बात करें, दोनों ही काफी कीन हैं अपने इकोनॉमिक टाइज को और ज्यादा गहरा बनाने में। और प्रायोरिटी सेक्टर्स की आपने बात की, एग्रीकल्चर की बात की, फार्मा की बात की, साइंस टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैसे आप देखते हैं इसे?
1: देखिए, हमने अलग अलग क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की बात की और मोल्डोवा के साथ भी भारत के इसी प्रकार के घनिष्ठ संबंध हैं। यदि हम व्यापार की दृष्टि से बात करें तो दोनों ही

0: में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आईटी सर्विसेज के क्षेत्र में सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर ईयू के मेंबर के रूप में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमको ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो हमारे जो बिजनेसेस है और हमारा जो विशेषकर लघु और मध्यम उद्योग है उसके लिए फिर ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संभावनाओं का क्षेत्र खुल जाता है इन यूरोपियन देशों के साथ यदि हमारा सहयोग बढ़ता है तो, क्योंकि भारत लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि ये जो अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज अभी तक की रही है इन पर भारत काम करे और इस प्रकार के देशों के साथ जो भारत की बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इको करते हैं, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे साझा सहयोग सबके विकास की बात हो, तो फिर ऐसे देशों के साथ आगे बढ़ा जाए।
1: प्रोफेसर जोशी, और राष्ट्रपति अपनी यात्रा के अंतिम चरण में जुलाई 23 से लेकर जुलाई 25 तक रोमानिया की यात्रा पर होंगी। गौरतलब है कि ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की तीन दशक के बाद ये पहली यात्रा होने वाली है। और फिर से हम बता दें कि ये यात्रा वहां की राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ये हो रहा है। तो रोमानिया का जो ये विजिट है प्रोफेसर जोशी, ये कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, रोमानिया की और भी देखें तो भारत और रोमानिया के बहुत अच्छे बायलेटरल रिलेशंस 1948 से ही हैं, और एक सामरिक सहयोग की दृष्टि से देखें तो दोनों ही देश लगातार अपने सहयोग को बढ़ा रहे हैं। ये फिर एक ऐतिहासिक यात्रा है जो हमारे राष्ट्रपति की पहली बार रोमानिया की यात्रा होने वाली है किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की, तो चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था का या आर्थिक सहयोग का क्षेत्र हो, तकनीकी सहयोग का क्षेत्र हो, सामरिक पार्टनरशिप की हम बात करें, तो फिर हर प्रकार से ये दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है। 1948 में दोनों देशों के बीच में संबंध विकसित हुए और फिर इसके बाद एम्बेसी लेवल के जो कूटनीतिक संबंध है वो 1957 में स्थापित हुए। 2023 में दोनों देशों ने अपने कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्षों को पूर्ण किया है, मनाया है। और रक्षा के सहयोग में यदि मैं बात करूं तो दोनों ही देशों ने एक ज्वाइंट कमेटी बनाई है डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर के, और कैसे को मैन्युफैक्चरिंग के, को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं इसको लेकर के दोनों देशों ने एक बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन प्लान बनाया, जिसमें कि जो कन्वेंशनल हमारे रक्षा सहयोग के क्षेत्र है उसके

0: भारत के साथ जिस तरह का सहयोग है, EU-US की जिस प्रकार की मेंबरशिप है, तो ये एक मार्केट एक्सेस भारत को देता है। और जो भारत की अलग अलग 500 कंपनियां हैं वो यहाँ रजिस्टर्ड है, तो भारत की कंपनियों के लिए यूरोप में ये महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। IT के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में फिर रोमानिया एक महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर दिखाई पड़ता है। और भारत के इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है, भारत के ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात को ये भी साझा करता है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत के लगातार सहयोगी के रूप में देखा जाता है। इस दृष्टि से भी हमारे राष्ट्रपति का ये दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: रोमानिया यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है और इससे हम दोनों के बीच में, भारत और रोमानिया के बीच में संबंध और भी गहरा, खास करके आर्थिक संबंधों की बात करें तो और भी गहरा होने की। गौरतलब है प्रोफेसर जोशी की तीनों राष्ट्र, मोल्डोवा हो, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया, इन तीनों राष्ट्रों ने पिछले वर्ष जब पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो उसमें बहुत ही स्ट्रांगली सॉलिडारिटी सपोर्ट और एक बहुत ही साथ दिया था भारत का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर जोशी कैसे देखते हैं इसे आप?
0: जी बिल्कुल, जैसे कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि मोल्डोवा, मैसेडोनिया और रोमानिया, ये तीनों देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करता है, तो इसमें ये देश भारत के बड़े सहयोगी के रूप में नजर आते हैं और ये बिल्कुल कहने से नहीं चूकते। भारत की जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसमें भारत लगातार साथ दे रहे हैं और इसीलिए इस दृष्टि से भी ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे राष्ट्रपति का, इन तीनों देशों का। और आपको ध्यान होगा कि जब हमारे ऊपर दुर्दांत पहलगाम अटैक हुआ था और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, तो ये तमाम देश जो है ये भारत के साथ बहुत ही स्ट्रांगली हमको खड़े हुए दिखाई पड़े।
1: प्रोफेसर जोशी, और जाते जाते अक्सर जो दौरे होते हैं, राष्ट्रपति जी के दौरे हों, प्रधानमंत्री जी के दौरे हों, वो अगर हम यूरोप की बात करें, क्योंकि

0: भारत में फिर भारत की जो सकारात्मक आउटरीच है उसको बढ़ाने में सहयोगी सिद्ध होते दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जिस तरह से ग्लोबल साउथ के देशों के नेतृत्व की बात कर रहा है या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, तो वहां ये एक वोटिंग नेशन के रूप में यूनाइटेड नेशंस में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये एक देश एक वोट के रूप में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये भारत की बातों को भारत के उद्देश्यों को लगातार इको करते हैं। तो इस दृष्टि से भी इन देशों का भारत के साथ सहयोग और हमारे राष्ट्रपति के साथ दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: जी प्रोफेसर जोशी, आप हमारे साथ जुड़ी बातें

0: अभिषेक कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। अभी आपने सुना प्रोग्राम सुर्खियों में। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। अब से चंद ही लम्हों के बाद आलमी खबरें नशर होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से आलमी खबरें सुनी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस में एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में शुमाली मकदूनिया की अपनी मनसब से बातचीत करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब एनडीए बर्नहम को बरतानिया के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। यूक्रेन में ओडेसा बंदरगाह के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई, जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाली कई अशिया और सामान पर 50% इजाफी महसूल नाफिज कर दिया है। और भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश के बाज़ हिस्सों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है, आज पार्लियामेंट हाउस में जेएमसी बाला योगी ऑडिटोरियम में मुनाकिद हुई। मीटिंग के दौरान एनडीए की इत्तेहादी पार्टियों ने वजीर आजम को सबसे तवील मुद्दत तक भारत के एक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमत अंजाम देने पर मुबारकबाद की तहरीक मंजूर की। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नवालीगारों से बात करते हुए कहा कि इस मीटिंग में वजीर आजम ने पूरे मुल्क में मुस्तकबिल में कराए जाने वाले इम्तिहानात के सवालनामे अफशा होने से रोकने के लिए सभी मुतालका फरीकों को की मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि जनाब मोदी ने सवालनामा अफशा होने में मुलविस लोगों के खिलाफ और मुल्क के नौजवानों के मुफादात के तहफ्फुज़ के लिए सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने की हुकूमत के अज़्म को दोहराया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो लोग हाल ही में नीट सवालनामे के केस में मुलविस है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें से 13 मुलजमीन को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। जनाब रिजिजू ने कहा कि वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि जो लोग इस वाकये के जिम्मेदार हैं, उन्हें सख्त से सख्त मुमकिन सजा का सामना करना होगा। जनाब रिजिजू ने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी ने आजाद तजारती समझौतों के बारे में भी इजहार ख्याल किया, जिस पर कई मुल्कों के साथ साथ भारत ने भी दस्तखत किए हैं। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि हर तजारती समझौते में भारतीय किसानों के मुफादात को आला तरीन तरजीह दी गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों की बहबूद और कौमी मुफादात को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के सभी मुआहदे मुकम्मल कर लिए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में शुमाली मकदूनिया की अपनी हम मनसब के साथ बातचीत करेंगी। मकदूनिया मुर्मू वजीर आजम रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर अफरीन गाशी से भी मुलाकात करेंगी। वो शुमाली मकदूनिया की पार्लियामेंट और भारत शुमाली मकदूनिया कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया तीन मुल्कों मालदोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे के तहत कल रात 2 रोजा सरकारी दौरे पर शुमाली मकदूनिया पहुंची। यह किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शुमाली मकदूनिया का पहला दौरा है। उनका यह दौरा मजकूरा तीनों मुल्कों के साथ दो तरफा तालुकात को मजीद मजबूत बनाने और मशरकी यूरोप के वसी खित्ते के साथ भारत के रिश्तों को फरोग देने की अहमियत को उजागर करता है। दोनों मुल्कों ने ज़राअत, दवासाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी से वाबस्ता खिदमत जैसे तरजीही शोबों में इकतसादी ताउन को मजीद वसत देने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। शुमाली मकदूनिया जनूब मशरकी यूरोप का चारों तरफ से खुश्की से घिरा मुल्क है। यहां भारतीय बिरादरी की तादाद बहुत कम है और ज्यादातर भारतीय अफराद आईटी के शोबों, यूनिवर्सिटियों में तदरीस या कसीर मुल्की कंपनियों में

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस में एनडीए की पार्लियामानी मीटिंग की सदारत की और भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश के बाद हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है।

जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम में आज हमारे साथ दिल अपना और प्रीत पर आई हिमालय फिल्म्स के बैनर तने बनी फिल्म किशोर साहू के द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक लव ट्रायंगल थी, लेकिन इसे बनाया बहुत ही संजीदगी के साथ था। यानी कि लव ट्रायंगल था लेकिन बहुत ही शांत और बहुत ही संजीदा फिल्म। एक तरफ इस फिल्म में थे दयालु और अपने फर्ज के पक्के डॉक्टर सुशील यानी कि हमारे डैशिंग राजकुमार साहब, और दूसरी तरफ थी एक सीधी साधी सी नर्स करुणा, जिसकी आंखों में भी करुणा थी, दर्द और मोहब्बत झलकता था, यानी कि हमारी खूबसूरत और टैलेंटेड मीना कुमारी जी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब डॉक्टर सुशील की शादी उनका परिवार एक अमीर और घमंडी लड़की रीता यानी कि नादिरा से करा देता है। अब एक तरफ दिल का रिश्ता और दूसरी तरफ फर्ज और समाज की बंदिशें। अब कहते हैं ना, जब दिल किसी और का हो और प्रीत किसी पराए से निभानी पड़े तो जिंदगी बड़ी ही मुश्किल हो जाती है, कश्मकश में फंस जाती है। तो लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म से एक और सदाबहार गीत, जो आज भी जब बजता है ना तो हर किसी के दिल के तार बज उठते हैं। तो लीजिए सुनते हैं लता जी की मखमली सी आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, वेलकम बैक। और क्या खूबसूरत गाना है, वाह वाह। वैसे अगर हम इस फिल्म के संगीत की बात करें तो शंकर जय किशन की जोड़ी ने जो जादू बिखेरा है ना, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। और पता है आपको, जानकर ये हैरानी होगी कि 1961 का जो फिल्म फेयर अवार्ड था, उस अवार्ड फंक्शन में इस फिल्म के म्यूजिक ने इतिहास को रचा। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतिहास कैसे रचा, तो आपको बता दें कि उसी साल के आसिफ की फिल्म मुगले आजम को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिलेगा, ये हर कोई मान रहा था। लेकिन जब लिफाफा खुला तो वो निकला शंकर जय किशन के नाम का, और हर कोई हैरान रह गया कि भाई मुगले आजम जैसी बड़ी फिल्म को पीछे छोड़कर शंकर जय किशन के दिल अपना और प्रीत पराई के शानदार गीत की वजह से उन्हें मिला बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। अब क्यों नहीं मिलता। इस फिल्म में लता जी का एक और खूबसूरत सा चुलबुला सा प्यारा सा गाना है, जो कि अभी हम आपको सुनवाने वाले हैं।

जी दोस्तों, फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई। जब इस फिल्म की कास्ट को फाइनलाइज किया जा रहा था, तो जो इस फिल्म के निर्देशक हैं किशोर साहू जी, वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे और संजीदा फिल्मकारों में से एक माने जाते थे। और वो चाहते थे कि जो उनके किरदार हैं, उन किरदारों में वो गहराई हो, और उन किरदार को निभाने वाले जो कलाकार हैं उनमें भी

एकदम परफेक्ट उतले। और यही वजह थी जब किशोर साहू जी ने संपर्क किया मीना कुमारी जी से, तो उस वक्त वो अपनी बहुत सी फिल्मों की वजह से काफ़ी अपनी गंभीर अभिनेत्री की जो छवि थी वो बना चुकी थी। और उनकी ये बात तो हर कोई मानता है कि जो उनकी आंखें हैं वो बिना बोले ही आंखों से दर्द साफ झलका देती हैं। और मीना कुमारी जी ने भी इस रोल को एकदम से हाँ किया, और वाकई में जब उन्होंने इस किरदार को निभाया तो करुणा के किरदार को उन्होंने अमर बना दिया। राजकुमार साहब को भी इसी तरह से उन्होंने साइन किया, और किस तरह से किया वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत आशा जी की आवाज़ में।

तो बताओ कोई समझाओ दिल इसको दूं या उसको दूं। इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किसको दूं।

कलाकारों से बिल्कुल अलग था, लेकिन जिस तरह के किरदार राजकुमार साहब निभाते थे उन किरदारों से ये किरदार डॉक्टर सुशील का जो किरदार था वो बिल्कुल ही अलग था। और इस किरदार के लिए उन्होंने चुना राजकुमार जी को, जो कि एक तरफ से दिखाया गया था एक ऐसा डॉक्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा सहनशील है, प्रेमी है एक, और अपनी प्रेमिका की याद में वो तड़प भी रहा है, और वो संजीदगी जो है वो उन्होंने पूरी तरह से निभाई, पर्दे पर उतारा, और उन्होंने बिल्कुल साबित कर दिया कि भारी भरकम डायलॉग्स ही नहीं बल्कि वो शांत और गंभीर अभिनय करने के भी उस्ताद हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो इस फिल्म के निर्देशक किशोर साहू जी थे वो और राजकुमार जी दोनों ही अपने अपने काम को

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार एक ही फिल्म के साथ और आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त प्रीति। हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं पंकज शर्मा जी और इनके साथ है संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ शशि और इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है मॉडल टाउन करनाल से। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा ने, श्री सुधाकर, राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित, प्रथमेश सर्वत, प्रणाली सानवी, कल्पना देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। चंडीगढ़ से सतीश अनिजा, विमल अनिजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगला संदेश हम तक पहुंचाया और पहुंचाने वाले हैं वीरगांव गुजरात से अजीत भावसार और इनके साथ हैं प्रमीला भावसार। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हैं गांव फरासी से। हीरामणि वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं दतरंगी भट्टापारा छत्तीसगढ़ से। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। और ये अगला संदेश दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुलडाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं सहदेव दामोदर, शशिकला कुमारी, साधना, सुमेत कुमार, वट सिंगी बुलडाना से जुड़े हैं अमोल मानकर, शोभा ताई और श्लोक दीपाली। कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फारान, फारिया ताहिरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदिरानगर भवरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं राधेश्याम देवांगन, चंपा, राजू, जगदीश देवांगन के साथ। नलेश्वर नगर नरवेल से महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला, विशाल नवानकर जुड़े हैं। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मुरहेकर हमारे साथ जुड़े हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता, सिमरन मुखी जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। और ये अगला संदेश हम तक पहुंचा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा ने। शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हमारे साथ जुड़े हैं और साउथ एक्सटेंशन से हमारे साथ जुड़े हैं गुरमीत सिंह मीता जी। संदीप मकर, ज्योति मन्नत, भारत और कमल साहनी पिंगावाला चौक गुरैया जालंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, कपिल छीपा, पूजा परिहर के साथ जुड़े हैं भोपालगढ़ राजस्थान से। अगला संदेश

सहगल जी हमारे साथ जुड़े हैं, और साउथ साउथ एक्सटेंशन से हमारे साथ जुड़े हैं गुरमीत सिंह मीता जी, संदीप मकर, ज्योति मन्नत भारत और कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरिया जालंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र जी कपिल छिपा पूजा परिहर के साथ जुड़े हैं भोपालगढ़ राजस्थान से। अगला संदेश हम तक पहुंचाने वाले हैं और ये अगला संदेश पहुंचा संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया ने बागपत उत्तर प्रदेश से। सुरेश राठौर मंजुला गांधीनगर गुजरात से हमारे

रामलाल चंद्रवंशी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े अपने संदेशों के जरिए। तो दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके जरिए सभी श्रोता हम तक जुड़े। वैसे फिल्म में एक और किरदार था, वो भी हम आपको बता दें, वो किरदार था नादिरा का, बोल्ट ग्लैमरस विलेन का अवतार। उस दौर में जहां नायिकाएं साड़ियां पहना करती थी, वहीं नादिरा ने इस फिल्म में वेस्टर्न ड्रेसेस और सिगरेट होल्डर और कटिंग एज हाई फैशन को दिखाया एकदम। और नादिरा जी ने उस वक्त में एक इंटरव्यू में बताया भी था कि उन्हें राजकुमार और मीना कुमारी जी के बीच में कबाब की हड्डी बनने में बड़ा मजा आता था और उनके एक्टिंग की जो शार्पनेस थी दर्शकों ने पर्दे पर देखा और वो उसी चीज से नजर आती है कि दर्शक उन्हें देखकर नफरत में भर जाते थे। तो दोस्तों ये थी फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई। इस जो गीत अभी

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन मैं अमन देव। पहला चुनावी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही हुए नीट प्रीख्या पेपर लीक विच शामिल लोगों विरुद्ध सख्त कार्रवाई यकीनी बनाने देश के नौजवानों के हितों की राखी करने की सरकार की वचनबद्धता दोहराया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरेक मुक्त व्यापार समझौते विच भारतीय किसानों के हितों को सब तो वध तरजीह दी गई है। नीट पेपर लीक मामले समेत वख-वख मुद्दों ते विरोधी धिर के हंगामे कारण संसद के दोहां सदनों की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सिक्किम के नामची जिले में निर्माण अधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित कढ़ने लई बचाव कार्य जारी ने। हुण तक 9 लाशां कढ़ियां गईयां ने ते पी वी सिंधु अज तो शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट में भारत की अगुवाई करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविख दी प्रीख्यावां में पेपर लीक नूं रोकण लई सारे हिस्सेदारां वलों तालमेल वाले यत्नां दा सद्दा दित्ता है। श्री मोदी ने हाल ही हुए नीट प्रीख्या पेपर लीक विच शामिल लोगों विरुद्ध सख्त कार्रवाई यकीनी बनाने ते देश के नौजवानों के हितों की राखी करने लई सरकार की वचनबद्धता दोहराया है। प्रधानमंत्री ने यह गल अज संसद भवन कंपलैक्स विच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठजोड़ एनडीए संसदीय पार्टी की मीटिंग जिस नूं मंगल मिलन भी कहा जांदा नूं संबोधन करदिआं कही। मीडिया नाल गलबात करदिआं संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि नीट पेपर लीक बारे जानकारी मिलने के तुरंत बाद सरकार ने कार्रवाई की है। श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक मामले में शामिल सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्हें विचों 13 मुलजम इस समय जेल में बंद ने। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि दोषी लोगों को सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए है। श्री रिजिजू ने कहा कि मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में अजिहे पेपर लीक रोकने लई सख्त कदम चुके गए ने।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत वालों कई देशों नाल कीते गए मुक्त व्यापार समझौतों बारे भी गल की थी। मीटिंग दौरान श्री मोदी ने कहा कि हरेक मुक्त व्यापार समझौते विच भारतीय किसानों के हितों को सब तो वध तरजीह दी गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अजिहे सारे समझौते किसानों की भलाई और राष्ट्रीय हित नूं सब तो अगे रख के कीते गए ने।
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: संसद के चल रहे मानसून समागम का हवाला देंदे प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए बिलों को पास कराने में एक रचनात्मक ते सकारात्मक भूमिका निभाएगा। श्री रिजिजू ने विरोधी पार्टियों को संसद में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं पर संसद के सारे मैंबर देश की सेवा कर इसके भविख की राखी कर इसके नौजवानों की भलाई लिए काम करने लिए चुने गए। लोकसभा विरोधी धिर के नेता राहुल गांधी ने अज स्पीकर

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा इम्तिहानात में सवालनामे के इफ़्शा होने की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्विस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। पार्लियामेंट में मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा आराई की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रुकावट आ गई। सिक्किम के नामची जिले में सुरंग के गिर जाने के बाद 9 अफराद हलाक हो गए और कई लापता हैं। बचाव का काम जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्किम के वज़ीर आला को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में आज बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है और भारत ने कमर्शियल जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत के मामले पर रूसी एलची को तलब किया है। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है, आज पार्लियामेंट हाउस में जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में मुनाकिद हुई। मीटिंग के दौरान एनडीए की इत्यादी पार्टियों ने वजीर आजम को सबसे तवील मुद्दत तक भारत के एक मंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर मुबारकबाद की तहरीक मंजूर की। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि इस मीटिंग में वजीर आजम ने पूरे मुल्क में मुस्तकबिल में कराए जाने वाले इम्तिहानात के सवालनामे इफ्शा होने से रोकने के लिए सभी मुतल्लिका फरीकों की मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि जनाब मोदी ने सवालनामा इफ्शा होने में मुलव्विस लोगों के खिलाफ और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया। वजीर आजम ने कहा कि जो लोग हाल ही में नीट सवालनामे के केस में मुलव्विस हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें से 13 मुल्ज़िमीन को फिलहाल जेल भेज दिया गया है।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: जनाब रिजिजू ने बताया कि वजीर आजम मोदी ने आजाद तजारती समझौतों के बारे में भी इजहार ख्याल किया, जिस पर कई मुल्कों के साथ साथ भारत ने भी दस्तखत किए हैं। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि हर तजारती समझौते में भारतीय किसानों के मफादात को आला तरीन तरजीह दी गई है।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: एनडीए के अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के जेर क्यादत मरकजी सरकार मुल्क में इम्तिहानात मुनाकिद कराए जाने में शफाफियत और ईमानदारी को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग यानी मंगल मिलन के दौरान वजीर आजम मोदी ने मुकाबला जाति इम्तिहानात में शफाफियत और ईमानदारी को यकीनी बनाने के सरकार के अहद का इदा किया है।

0: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
1: बीजेपी के राज्यसभा के एमपी अशोक मित्तल ने, जिन्होंने पहली मर्तबा एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में शिरकत की, कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि हुकूमत तलबा के साथ है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई, नीट पेपर लीक समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की तरफ से हंगामाराई की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में दोपहर 12 बजे पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब दोबारा शुरू हुई तो ऐवान ने अपोजिशन की हंगामाराई के दौरान पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कमेटियों के इंतखाबात से मुतालिक तहरीक पर बहस शुरू की। प्रिजाइडिंग अफसर सिंधा रे ने सभी अरकान से जोर देकर कहा कि वो अपनी अपनी नशस्तों पर चले जाएं और ऐवान की कार्रवाई खुशउसलूबी से जारी रहने दें। उन्होंने कहा कि वक्फा सिफर अरकान के लिए है और पूरा मुल्क ऐवान की कार्रवाई देख रहा है। उनकी इस अपील के बावजूद अपोजिशन अरकान हाथों में तख्तियां लिए ऐवान के वस्त में आ गए और नीट और तलबा के मुजाहिरों के बारे में नारे लगाने लगे। इसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इससे पहले जब ऐवान की कार्रवाई दिन में 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने वक्फा सवाल शुरू करना चाहा, लेकिन अपोजिशन अरकान ने नीट इम्तिहान के पेपर लीक का मामला उठाया। जनाब बिरला ने अपोजिशन से जोर देकर कहा कि वो ऐवान की कार्रवाई में तआवुन दें, लेकिन अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसी तरह के मनाजिर राज्यसभा में भी देखने में आए। जब राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए पहली बार मुलतवी होने के बाद दोबारा शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो अपनी अपनी नशस्तों पर चले जाएं और ऐवान की कार्रवाई खुशउसलूबी से जारी रहने दें, लेकिन अपोजिशन ने इस अपील को नजरअंदाज कर दिया। शोरगुल के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सिक्किम के नामची जिले में समरदुंग के मकाम पर एनएचपीसी तीस्ता स्टेज 6 पनबिजली प्रोजेक्ट के जेर तामीर टनल के अंदर फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने की गरज से तलाश और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। नामची जिले के सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने कहा है कि बचाव टीमों ने अब तक 9 लाशें निकाली हैं। तकरीबन 25 अफराद के टनल के अंदर फंसे होने का अंदेशा है। बावर किया जाता है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने के सबब टनल को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नामची जिले में जेर तामीर टनल में हादसे के बाद सूरत हाल और बचाव कार्रवाइयों के बारे में मालूमात हासिल करने की गरज से आज सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमंग से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब तमंग ने कहा कि वजीर आजम ने मरकजी सरकार की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। सिक्किम के वजीर आला ने वजीर आजम की मदद, तशवीश और रियासत के साथ यकजहती के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। जनाब तमंग ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसडीएमए, जिला इंतजामिया, मकामी पुलिस, रंगपो पीएचसी की तिब्बी टीमें और मकामी बिरादरी मुतासरा लोगों को हर मुमकिन मदद पहुंचाने की गरज से करीबी इश्तराक के साथ मुसलसल काम कर रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के नामची में एक जेर तामीर टनल के मुनदम होने के सबब जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। महलुकीन के कुनबों से ताजियत का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। उन्होंने महलुकीन के करीबी रिश्तेदारों को वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रूपये की नकद इमदाद दिए जाने का भी ऐलान किया। जख्मियों को 50-50 हजार रूपये दिए जाएंगे। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम के नामची जिले में जेर तामीर टनल में अफसोसनाक वाकये में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधाकृष्णन ने मैलुकीन के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है। उन्होंने मैलुकीन के रिश्तेदारों के लिए इस सदमे को बर्दाश्त करने की ताकत और हिम्मत की दुआ की, साथ ही फंसे हुए लोगों को बहिफाजत बचाए जाने और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की भी दुआ की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सिक्किम के वजीर आला ब्रेन सिंह तमंग से बातचीत की है और नामची जिले में जेर तामीर एक सुरंग में जमीनी तोदे खिसकने के हादसे के बाद सूरत हाल और बचाव कार्रवाई के बारे में जानकारी हासिल की है। वजीर दाखिला ने बचाव कोशिशों और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने आज हिमाचल प्रदेश में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में शदीद से बहुत शदीद और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत ने आज रूसी सिफारतखाने के नाजिमुल उमूर व्लादिमीर लादानूफ को तलब किया है। उन्हें इस महीने की 19 तारीख को एक कमर्शियल बहरी जहाज MV गोल्डन लीव पर हमले के सिलसिले में तलब किया है। इस हमले में 4 भारतीय

0: सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
1: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई, लोग पकड़े गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी, इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
0: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
2: हर एक अपने तरीके से बात करनी है, पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है तो भारत के युवा समझदार युवा, उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
0: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
3: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
0: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
4: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे आर सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
0: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल

0: दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में

0: अदनूफ से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी लागत 175 करोड़ रूपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय msHPC@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 के। प्रोग्राम शुरू करूं उससे पहले सुनते हैं संदेश।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: जो लिख दे तो हर तराना सुकून का अफसाना बन जाता है, जो अपनी कलम से हर जज्बात को बयां कर दे तो भावनाओं का सैलाब आ जाता है। हिंदी सिनेमा में एक ऐसा ही जादूगर आया जिसके शब्दों की जादूगरी सालों साल लोगों के दिलों में बसी रही। यहाँ तक कि आज भी लोगों के दिलों में वही जज्बात भरे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने हिंदी सिनेमा में कई नगमे दिए और उन नगमों को लिखने का श्रेय भी उसी को जाता है। तो आज जो सितारा हम

चुनकर लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके बारे में सुनकर और उनके लिखे गीत सुनकर आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ, लेकिन हाँ उससे पहले आपको बता दूं कि आप भी इस खूबसूरत सफर में मेरे हम सफर बन सकते हैं अपने संदेशों के जरिए। और संदेश भेजने का जो तरीका है वो है मेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com। अब भला ये कैसे भूलूं कि आपको बताना है कि आपके साथ आज कौन है। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप सभी का स्वागत करती हूं आप ही के इस पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही कलाकार।

अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस सितारे को चुनकर लेकर आए हैं। आज हम बात कर रहे हैं आनंद बख्शी की, जिन्होंने कई यादगार गाने लिखे। हिंदी सिनेमा के जिस सितारे की आज हम चर्चा कर रहे हैं, उनका नाम हमने आपको बता ही दिया, जिन्होंने ना जाने कितने अनगिनत गानों को अपनी कलम से लिखा और उन तरानों को अमर कर दिया। आनंद बख्शी एक ऐसे गीतकार रहे जिन्होंने करीब 4000 से ज्यादा गाने लिखे और वो गाने हर तरफ छा गए। आनंद बख्शी का जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी में आज ही के दिन यानी कि 21 जुलाई 1930 को हुआ था और अपने जीवन के 17 साल उन्होंने पाकिस्तान के रावलपिंडी में ही बिताए। हालांकि 1947 के दंगों के दौरान उनका परिवार सब कुछ छोड़कर दिल्ली आ गया। उन्हें बचपन से ही गायक बनने का शौक था, लेकिन किस्मत उन्हें सेना में ले गई। भारत आने के बाद उन्होंने सेना ज्वाइन कर ली। सेना में जाने के बाद वो अपनी कविताएं अपने बैरक में रहने वाले फौजी साथियों को सुनाया करते थे। उनकी ये शानदार कला देखने के बाद लोग उनकी खूब तारीफ करते। धीरे धीरे वो और बड़े प्लेटफॉर्म पर गाने लगे। इसके बाद क्या हुआ बताएंगे, सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। किशोरदा की आवाज में फिल्म कटी पतंग से खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे हैं। और आगे बढ़े उससे पहले एक किस्सा आपको बताती हूँ। सिनेमा में आने से पहले

चाहत जाग गई। यहीं से उन्होंने गीत लिखने शुरू कर दिए। साल था 1950। उन्होंने एक घोषणा पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने बताया कि मैं गाने लिखने का ऐलान करता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि वो सेना में नौकरी करते थे, नौकरी छोड़कर वो मुंबई आ गए। हालांकि मुंबई आकर उनकी जो मुश्किलें थी वो बहुत आसान नहीं थी, बल्कि मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। कहा जाता है कि वो स्टेशन पर रुका करते थे। उन्होंने कई प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटे, जो बचे खुचे पैसे थे वो भी खत्म हो गए। इसके बाद वो दिल्ली आए और यहाँ उन्होंने आकाशवाणी में ऑडिशन दिया, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं हुए, फेल हो गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो कैसे आकाशवाणी के जरिए उनको रिजेक्ट किया जा सकता है। उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें फौज की नौकरी में वापस चले जाना चाहिए। अब उस दौर में फौज में वापस जाने का विकल्प होता था। जो जबलपुर वो गए और उन्होंने फौज की नौकरी रिज्वाइन कर ली। इसके बाद 1953 में उनका प्रमोशन हुआ और फिर उन्हें 1956 में मुंबई दोबारा वापस भेज दिया गया।

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

में जब वो मुंबई पहुंचे तो इस बार उन्होंने ठान लिया था कि वो सिनेमा में काम पाकर ही रहेंगे। उन्होंने स्टेशन के वेटिंग रूम में रातें काटी, मैकेनिक बनकर भी काम किया और आखिरकार मिस्टर भगवान ने उन्हें ब्रेक दिया। 15 दिन में आनंद बख्शी ने उनके लिए 4 गाने लिखे, जिसके लिए उन्हें 150 रुपए का मेहनताना मिला। उनका पहला गाना धरती के लाल का था, ना कर कमाल। इसके बाद

दादा बाबू रोड गिरहिट झारखंड से मोहम्मद यासीन साइना हसन बाबू जी जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार देवानगन दुर्गा प्रसाद पराग जी पलारी छत्तीसगढ़ से हैं। सत्येंद्र कुमार चंसोलिया सार्थक जी जालौन उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अमर रमेश कुमार खत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी सौरभ प्रमोद जी हैं। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरव ज्योति रानी जी हैं। संबलपुर काकेट से फागुन राम ज्योति ओजस्वी जी जुड़े हुए हैं। और गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन बीना आशीष चैतन्य और परिवार के सभी सदस्य हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे प्रशांत संचित और इनके दोस्त हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली जी हैं। चिरमिरी कुरासिया कार्डी से इंद्रभान सिंह जुड़े हुए हैं। और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी का शांति नगर सोनीपत से। फारूक अली खान भी हमारे साथ हैं। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शहनवाज अब्बास और परिवार के सभी सदस्य हमें सुन रहे हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगे नमन अपार डिंगे जी हमें सुन रहे हैं। भोपाल राजस्थान से धर्मेन्द्र छीपा जी हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा जी संदीप मक्कर जी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी नंदा बोखरे जी हमारे साथ हैं। और अगला जो संदेश है वो हमारे पास पहुंचा है नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस मानकर निर्मला विशाल जी का। और पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन उषा मोहन चिलू नायक मधु नायक जी जुड़े हुए हैं। वीरनगांव गुजरात से अजीत भापसर जी का एक और संदेश हम तक पहुंचा है। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी हैं। और कुछ संदेश रिपीट हो रहे हैं इसलिए थोड़ा सा रुकावट आ रही है, उनको भी हम नए संदेशों को ढूंढते हैं। फिलहाल इस गाने को भी एंजॉय कीजिए। हमारे साथ जनकपुरी सहारनपुर से जॉन ट्रिकिस्टो रोजी और पर जुड़े हुए हैं। इसके बाद एक और संदेश हम तक पहुंचा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा पूनम जी का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और चलते चलते आपसे कहेंगे कि आनंद बख्शी जी हिंदी फिल्मों का एक अमर नाम, गाने कविताएं लिखने को अपना धर्म और कर्म कहते थे। सोचने समझने की अवस्था में पहुंचने के बाद से उनका एक ही सपना था कि वो लिखते रहें और उन्होंने ऐसा किया भी। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मों में करीब 3,300 गाने लिखे, लेकिन अपनी बीमारी के समय में उन्होंने गीतकार समीर से कहा था, मुझे मालूम है कि मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे अंदर अभी भी बहुत सारे गाने हैं। काश मैं उन्हें लिखकर अपने परिवार वालों या तुम्हारे जैसे अच्छे गीतकार को दे देता जो उन्हें सहेज कर रखता। अफसोस है कि वो गाने मेरे भीतर से आए और मेरे साथ ही चले जाएंगे। तो ये थे वो महान सितारे जो आज भी हम सभी के दिलों में जिंदा हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब जाना आपको कहीं नहीं है क्योंकि 3 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम मैचनी मेलोडीज।

सभी ने आपको बता दें, फिर कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नष्ट की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। बम्बे 3:30 हम पेश करेंगे मारूफ मौसीकार सज्जाद हुसैन की शख्सियत और खिदमात के हवाले से डॉक्टर इरशाद परवेज की तहरीर का द फीचर फिर तुम्हारी कहानी याद आई ऐ सनम का दूसरा और आखिरी हिस्सा। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने तक मुख्तसर ताल्लुक हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: में भी देखा 71 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा इम्तिहानात में सवालनामे के अफशा होने की रोकथाम के लिए मजबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के हुकूमत के आज़म को दोहराया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहम को बरतानिया के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। सिक्किम के नामची जिले में सुरंग के गिर जाने के बाद 11 अफराद हलाक हो गए और कई फंसे हुए हैं। बचाव का काम जारी है। वज़ीर आज़म ने सिक्किम के वज़ीर आला को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। और भारत में कमर्शियल जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत के मामले पर रूस ने एलची को तलब किया। खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है, आज पार्लियामेंट हाउस में जीएमसी बालायोगी ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई। मीटिंग के दौरान एनडीए की इत्तेहादी पार्टियों ने वज़ीर आज़म को सबसे तवील मुद्दत तक भारत के एक मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर मुबारकबाद की तारीख मंजूर की। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नामानिकारों से बात करते हुए कहा कि इस मीटिंग में वज़ीर आज़म ने पूरे मुल्क में मुस्तकबिल में कराए जाने वाले इम्तहानात के सवालनामे अफशा होने से रोकने के लिए सभी मुतालिका फरीकों की मजबूत कोशिशों के लिए कहा। उन्होंने बताया कि जनाब मोदी ने सवालनामा अफशा होने में मुलव्वस लोगों के खिलाफ और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाए जाने की हुकूमत के अज़्म को दोहराया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो लोग हाल ही में नीट सवालनामे के केस में मुलव्वस हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें से 13 मुलज़मीन को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। जनाब रिजिजू ने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी ने आज़ाद तजारती समझौतों के बारे में भी इजहार ख्याल किया, जिस पर कई मुल्कों के साथ साथ भारत ने भी दस्तखत किए हैं। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि हर तजारती समझौते में भारतीय किसानों के मफादात को आला तरीन तरजीह दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहम को बरतानिया के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और बरतानिया मुश्तरका जमहूरी अकदार से मुंसलिक हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और आवाम से आवाम के राब्तों समेत मुख्तलिफ शोबों में वसी तर इश्तराक हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत बरतानिया जामे कलीदी साझेदारी को मजीद मुस्तकम बनाने की खातिर जनाब बर्नहम के साथ मिलकर काम करने के मुतमन्नी हैं। सिक्किम के नामची जिले में समरडुंग के मकाम पर एनएचपीसी तीसरा स्टेज 6 पनबिजली प्रोजेक्ट के जेर तामीर टनल के अंदर फंसे हुए लोगों को बाहिफाजत निकालने की गरज से तलाश और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। नामची जिले के सीनियर पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने कहा है कि बचाव टीमों ने अब तक 11 लाशें निकाली हैं। तकरीबन 25 अफराद के टनल के अंदर फंसे होने का अंदेशा है। बावर किया जाता है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने के सबब टनल को नुकसान पहुंचा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के नामची में ज़ेर तामीर टनल के मुनहदिम होने के सबब होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। मालूकीन के कुंबों से ताज़ीफ का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की

शुक्रिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के नामची में जरतामी टनल के मुनहदिम होने के सबब होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। मालूकीन के कुंबों से ताजियत का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उन्होंने मालूकीन के करीबी रिश्तेदारों को वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2 लाख रूपये की नकद इमदाद दिए जाने का भी ऐलान किया।

0: पनामा के अपने हमनसब से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने पनामा के साथ भारत के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाए जाने की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि पनामा लातिनी अमरीका और कैरेबियाई खित्ते तक रसाई का एक अहम दरवाजा है। दोनों रहनुमाओं ने तजारत, कारोबार, तरक्की, भारी उमूर, सेहत, ज़राअत, तालीम और डिजिटल तआवुन समेत मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाए जाने पर तफसीली तबादले ख्याल किया। उन्होंने कसीर रुखी बिन अल-अक़वामी फोरम पर बाहमी तआवुन के सिलसिले में भी गुफ्तगू की। पनामा के वजीर खारजा के साथ मीटिंग के आगाज में इजहार ख्याल करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि ये दौरा हालिया अरसे में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले आला सतही रवाबित और तबादलों को मजीद तकवीत देगा। अमरीका ने ईरान के खिलाफ फिर हमले किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमजोर करने के मकसद से किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल वो आबनाए हुरमूज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमले करने के लिए करता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहते हुए ईरान को जबरदस्त इंतकामी कार्रवाई की वार्निंग दी है कि ईरान को कई गुना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीन अमरीकी फौजियों की हालिया हलाकत के तनाजुर में सदर ट्रंप ने तंबीह की है। इनमें से दो अमरीकी फौजी उर्दू में जबकि एक इराक में मारा गया था। इससे पहले ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब ने कहा कि उसके बाहरी फोर्सेज ने ईरान के सूबों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी असासों और ठिकानों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा इम्तहानात में सवालनामे के अफशा होने की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाए जाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहम को बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। सिक्किम के नामची जिले में सुरंग के गिर जाने के बाद 11 अफराद हलाक हो गए और कई फंसे हुए हैं। बचाव का काम जारी है। वजीर आजम ने सिक्किम के वजीराला को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। और भारत में कमर्शियल जहाज पर हमले में चार भारतीय शहरियों की मौत के मामले पर रूस सीएलसी को तलब किया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमी उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज की मेरी पसंद प्रोग्राम के नगमे हमने लिए हैं सज्जाद हुसैन की मौसीकी सजे हुए, जिनके आज यौम वफात है। सज्जाद हुसैन 15 जून 1917 को सीतामऊ मध्य प्रदेश में पैदा हुए और तकरीबन उन्होंने अपनी मौसीकी से, यानी कि अगर उनको उनके बारे में बात की जाए तो मैंडोलियन बजाया करते थे वो। 22,000 गानों में उन्होंने वो मैंडोलियन बजाया और एक ग्रेट आर्टिस्ट थे वो। इस तरह से कहा जाए तो उन्होंने अरबिक, हिंदी और सूफी म्यूजिक को एक साथ हम आहंग किया। कुछ नगमे ऐसे हैं कि वो उनके लिए उनकी एक यादगार बन गई। अगर उनके नगमों की बात की जाए तो यकीनन उनके नगमे आज भी हमारे दिलों में तरोताजा हैं और उनकी मौसीकी से ये नगमे एक खूबसूरत रंग लिए हुए हमारी याददाश्तों में महफूज हैं।

हमने इसके प्रोग्राम की आखिरी पेशकश रुस्तम सोहरा फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी मन्ना डे की आवाजों में। इस नगमे ने भी सज्जाद हुसैन की शोहरत में चार चांद लगा दिए थे।

1952 में जब फिल्म संदिल आई तो इस फिल्म की मौसीकी ने उस वक्त के मौसीकारों को भी चौंका दिया था। अगर हम क्लासिकी एतबार से देखें तो भी इस फिल्म की मौसीकी उस दौर की सबसे ज्यादा मारूफ और आला पाए की मौसीकी करार दी जा सकती है। इस फिल्म में 8 नगमे थे और सब के सब आला तख्लीक का एक अच्छा नमूना थे। धरती से दूर गोरे बादलों के हार, आशा भोसले और गीता दत्त की आवाज में एक ऐसा मलकूती नगमा है जो सुनने वाले को एक और ही जहान में

की नगमे में पियानो और दीगर साजों के अलावा बांसुरी का आवाजों के साथ मिलन हमारे जहन पर एक पुरअसरार और जादुई असर कायम करता है जो गाना खत्म होने के बाद भी

वही में समा गए सनम फूल खिले चमन चमन, तरक महमूद और लता की आवाज में एक निहायत ही दिलकश गाना है। ये दो गाना अपने सुरताल लफ्जों की अदायगी और मानवीयत के लिए एक मिसाली गाना करार दिया जा सकता है।

रोसाना में किशोर कुमार और आशा भोसले का एक दो गाना था, भुला दो जिंदगी के गम। ये शाहकार गाना आज हमें सज्जाद हुसैन के मखसूस अंदाज की याद दिलाता है। सज्जाद हुसैन अपनी मौसीकी में जिन जिन अनासिर और अवामिल का इस्तेमाल करते थे, ये गाना उन सारी चीजों से हमें रोशनास कराता है।

तेलंगाना एक ऐसी अजब दास्तां हो गई है। सुरैया की खूबसूरत आवाज के साथ साथ इस गाने में हमें सासानी और अरबी बल्कि वस्त एशियाई मौसीकी का हसीन और जमील अक्स और इम्तजाज सुनने को मिलता है, जो हर एतबार से लाजवाब।

गीता दत्त इस बात में खुशी महसूस करती थी कि वो सज्जाद हुसैन की धुनों से इंसाफ कर पाती थी और उसे वो अपने लिए एजाज समझती थी। फिल्म खेल का ये गाना गीता के साथ सज्जाद हुसैन के आखिरी गानों में है।

आखिरी गाना सज्जाद हुसैन के उन आखिरी गानों में है जो उन्होंने गीता दत्त के साथ कंपोज किए, क्योंकि उसके बाद के दौर में एक जमाना वो भी आया था जब सज्जाद हुसैन अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखने लगे थे कि वो गानों की धुन तभी बनाएंगे जब आवाज लता मंगेशकर की होगी। उनका कहना था कि लता के अलावा उनके गाने कोई और नहीं गा सकता है। मोहम्मद रफी का गाना इस पार दीवार के जो रहते हैं कोई कह दे उनसे जाके जो हम कहते हैं, एक ऐसा नाजिर और नायाब गाना है जो आज शायद ही किसी को याद होगा।

सुने संदिल का भजन दर्शन प्यासी आए दासी। गीता दत्त की आवाज में एक नादिर भजन है जिसका एक अलग अंदाज है जो मन को मोह लेता है।

आवाज में रम्या आशियाना अपने अंदाज का एक अनोखा गाना है और जिसकी कलाकारी और सदाकारी और नयकारी अपनी मिसाल आप है।

0: हालांकि सज्जाद हुसैन ने नूरजहां के साथ एक इकलौती फिल्म करने के बाद दोबारा कभी काम नहीं किया, लेकिन ये भी हकीकत है कि नूरजहां अपनी पूरी जिंदगी सज्जाद हुसैन की फनकाराना मौसीकी को भुला नहीं पाई थी। आज से तकरीबन 30 साल पहले एक बार लंदन के एक इंटरव्यू में जब उनसे उनके पसंदीदा मौसीकारों के बारे में पूछा गया था, तो वो दो तीन मशहूर नामों के बाद नूरजहां ने मौसीकार सज्जाद हुसैन का नाम बहुत अदब एहतराम से लिया था। उन्होंने कहा था,
1: मौसीकार सज्जाद हुसैन इंतहाई जहीन मौसीकार हैं। नूरजहां के ख्याल में सज्जाद हुसैन अपने आप में मगन रहने के सबब कारोबारी तौर पर कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनकी बनाई हुई धुनें लाजवाल हैं और रहेंगी।
0: इंटरव्यू करने वाले साहब ने जब नूरजहां से कहा कि सज्जाद हुसैन साहब के बारे में

0: सुना है कि वो बड़े खुस्सर थे और किसी को खातिर में न लाते थे। तो कहा जाता है कि ये बात सुनकर नूरजहां भड़क उठी। फिर कदरे तहमुल से उन्होंने समझाने के अंदाज में कहा था,
1: बात गुरूर की या तकब्बुर की नहीं, बल्कि ये इज्जत नफ्स का मसला है। अगर हमें खुद अपनी इज्जत का ख्याल ना हो तो दूसरे हमारी क्या इज्जत करेंगे। सज्जाद हुसैन साहब को अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रहता था और वो खुद अपनी इज्जत करना जानते थे।

आया सावन झूमके, इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। नगानिगार थे आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। और आप सुनिए अनवर की आवाज में अर्पण फिल्म का नगमा। एक मतलब फिर नगमा निगार आनंद बख्शी और मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल।

आप आए बाहर आई इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। प्रोग्राम की अगली पेशकश बालिका वधू फिल्म का नगमा अमित कुमार और आर डी बर्मन की आवाजों में। नगमा निगारान मसी मौसीकार आर डी बर्मन।

Let's go.

makanya kan

आपकी कसम फिल्म का नाम आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, मौसीकार थे आर डी बर्मन। और अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश आमने सामने फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाए कल्याण जी आनंद जी ने।

सुन रहे थे मन्नाडे और साथियों को फिल्म थी अनुरोध, मुसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और सामने सुनिए अमर प्रेम फिल्म का नगमा एस डी बर्मन की आवाज में, मुसीकार है आर डी बर्मन।

0: ने कनाडा से आने वाली कई अशिया और सामान पर 50% इजाफी महसूल नाफिज कर दिया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि कनाडा की जानिब से अमरीकी सामान के मामले में तफीक बरतने के जवाब में ट्रंप इंतजामिया ने यह कदम उठाया है। बयान में कहा गया कि मजकूर अकदाम का मकसद अल्कोहल और डेयरी समेत अहम अमरीकी बरामदात के लिए बराबर का मौका दस्तियाब कराना है। उधर कनाडा ने कहा है कि अमरीका के ये नए महसूलात तीन मुल्कों कनाडा, अमरीका और मैक्सिको के माबेन आजाद तजारत के समझौते के बराह रास्त खिलाफ वर्जी है। तहकीक की भारतीय काउंसिल आईसीएमआर ने आज भारत की सरकर्दा दवा और वैक्सीन साज कंपनियों को मुल्क में ही तैयार की गई तीन बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज का लाइसेंस जारी किया। ये लाइसेंस देरीना कैंसर और मुतअद्दी बीमारी का के इलाज से मुतालिक है। बेंगलुरु जोन का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी 8 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दे रहा है। यह कार्रवाई कौमी तफ्तीशी एजेंसी की जानिब से दायर की गई एफआईआर की बुनियाद पर दर्ज की गई है। इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के सिलसिले में की जा रही है। ईडी के मुताबिक यह मामला इराक और शाम की दाइश आईएसआईएस के लिए लोगों की भर्ती से मुतालिक है, जिसमें बेंगलुरु का एकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और दीगर अफराद मुलविस हैं। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की वजह से फिर मिट्टी के तोदे गिरे हैं, जिसके सबब 270 किलोमीटर तवील जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मोटरगाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल पड़ा है। उधमपुर और रामबन जिलों में शदीद बारिश की वजह से कौमी शाहराह के पहाड़ी रास्ते में कई मकामात पर मिट्टी के तोदे और चट्टानों के टुकड़े गिरे हैं। इस दौरान राजौरी जिले के नगरोटा सलधार इलाके में भी मिट्टी के तोदे गिरने की खबरें मिली हैं। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में शदीद से बहुत शदीद और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और शुमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा इम्तिहानात में सवालनामे के इफ़्शा होने की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने की हुकूमत के आज़म को दोहराया है। सिक्किम के नामची जिले में सुरंग के गिर जाने के बाद 11 अफराद हलाक हो गए और कई फंसे हुए हैं। बचाव का काम जारी है। वज़ीर आज़म ने सिक्किम के वज़ीर आला को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। भारत ने कमर्शियल जहाज पर हमले में चार भारतीय शहरियों की मौत के मामले पर रूसी एलची को तलब किया है। अमरीकी सदर ने कनाडा से आने वाली कई अशिया और सामान पर 50% इजाफी महसूल नाफिज कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडिया में भी 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। शाम के 5 बजे चाहते हैं यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शाम में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी दा ए अमृतसर केंद्र है। नमस्कार, आकाशवाणी वर्ड सर्विस दिंदी ए पंजाबी सेवा है। शाम दे 5 बजे ने हुन साडी दूजी सभा दे प्रोग्राम शुरू हुंदे ने। सामीन, सब तो पहला तुसी समात फरमाओगे सराय की प्रोग्राम झोंक माही दी।
3: ऑल इंडिया रेडियो दा सिरायकी प्रोग्राम है। हरजीत कौर हाजर है तुहाडे कीते अज दा प्रोग्राम घिन के। अज मैं तुहाडे कीते बहुत चंगे चंगे गीत घिन के आई हां, पर

जगन्नाथ रथ यात्रा दा सांस्कृतिक ते धार्मिक महत्व हुए तुसा संजय पहुजा दी ए वार्ता सुनदे पे हवे। भारतीय संस्कृति दी बहुत वधिया जानकारी दित्ती है इन्हा ने। तुहाकू ये वार्ता जरूर पसंद आई होसी। ते आओ हूं सुनेंदे हां हिक सिराई की गीत। कलाकार हिन जीशम खान रोखड़ी।

सुनते हैं जीशम खान रोखड़ी दा गाया गीत बॉम्बे थी गए बीबी नूरा दा गाया हे कलाम ने सुनिया अल्लाह दा आवाज आवे कुल्ली ने फकीर के विचो भाई बहु वधिया गाया है बीबी नूरा ने आओ चस घिनिए।

दोस्तो अज दे देश पंजाब प्रोग्राम दे विच असी गल करांगे अज दी गल जिहड़ी आधारित होएगी रोजाना जिंदगी विच संयम दी वरतों इहदे उत्ते चानना पाया जाएगा प्रोग्राम अज दी गल दे विच।

0: एक बार जब अपने पैर दे घर अलविदा कह मैं शहर तुरन लगा तो पुराने ख्याल की मां ने बड़े मान से अपने आप नूह च लिपटी चीज देंदे हुए कहा
1: आकारा कुत्ता सितारिया जड़िया अपने कमरे च सजा के रखी इस नाल कोई बिलबला नेड़े नहीं फटकदी।
0: उसके मन नूं ठेस ना पहुंचाते हुए मैं वह खडौना ले लिया सोचा महमा भरमा चो कदों निकल गया से। काले कपड़े तो भूत प्रेत दूर भजते ने।

उसने गाना पड़िया खिड़खिड़ा के हंसते कमरे चो बाहर हो गई। उमर को मेरे वाल वेख्या तो मैं भी उस पर देखिया। उसने अखा चो तरदे रेशमी डोरिया पकड़न की कोशिश कर लगा। मैं फिर बच्चे चुक जोर की घुट चुनद्या दौड़ जाती सी। उसकी इस अदा कारण कि चिर नशिया रहा सी। मैं भी इस तरह रोज ही कमरे च आ जाता। कभी कदे काले कुत्ते जो रंग बिरंगे सितारे नाल बढ़िया हुंदा सी चुक के नठ जांदा। फिर तीन दोस्त नूं वापस करना चाहते। एक बहाना बहाने का बहाना एक दिन टूटी लड़ी तुरती रहती सी। तीना अंतर सी उस कमरे च इस कमरे च जिथे पहलू रहा सा। उतों के मालकन ने एक बार ही खड़ोने के हथ फेरिया से सिर्फ एक बार प्यार नाल। इस दे बावजूद इस कुत्ते ने मकान चो कढ़वाया सी। मैंने कढ़वाया सी। एक कुत्ता किवें कारण बन सकता है एतबार ने ना सही। एक कुत्ता मैनू हार्ट करता सी। उदों बेजबान कुत्ता कालियां रातां च बड़े ही भयानक रूप धार लैंदा सी। सच्ची मुची धार लैंदा सी। सोन ते कला कमरा बर्फ वांग यक रैक ते पईयां किताबां तेरा वांग उसरने लगदियां मेरे उत्ते। मैं डब्बी जांदा सा तक लैणा हुंदा औखा। मैनू महसूस हुंदा सी जेकर इकलता इवें ही रही तां हेठ दबह जावांगा मर जावांगा। सा तक लैणा औखा होएगा। दोवें जी औतरे निखत्रे सन। उस मकान दे मालिक शायद चुप नाल ब्याह करवाया सी उन्होंने। उस दिन जदों मैं यही खड़ौना मालकन नूं दिखाया सी पहली बार पता नहीं क्यों

तरती जणे तप अगचन दा दाता जासूर, नहीं त तरती बाज है काहे गवावे नूर। लो जी दोस्तां ने बड़ी प्यारी फरमाइश सानू भेजी है कनेरा मोहल्ला पटियाला तो। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश ये सुनना चाहते ने मोहम्मद रफी होरां दी आवाज दे विच एक देश भगती दा गीत। ते लो फिर असी भी सुनदे हां।

0: विस्तृत जांच की जाएगी। एनएचपीसी ने आज एक बयान में कहा कि सुरंग के अंदर 25 कर्मी फंसे थे, जिसमें से अब तक 11 की मौत हो चुकी है। एनएचपीसी ने बताया कि परियोजना दल जिला प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर चल रहे बचाव कार्यों में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजोनोव्स्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले स्कोपिये में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास विला वोडने में राष्ट्रपति मुर्मू का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कल से फिलीपींस की मनीला की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। वहीं पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युषा नफीस और गुरवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुने फोन इन कार्यक्रम का शेष भाग।
2: तो आपका हमारे फोन इन कार्यक्रम का और हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक है इंडियन पोटाश लिमिटेड।
3: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसले तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद।
4: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें आईपीएल की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
2: आप सुन रहे हैं हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला। इसका विषय है गन्ने की फसल में कीट नियंत्रण।
5: और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, प्रभारी गन्ना उत्कृष्टता केंद्र केवीके बागपत उत्तर प्रदेश से। और दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य कृषि वैज्ञानिक इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से। और गन्ना की फसल में कीट नियंत्रण से विषय संबंधित जो भी आपकी कोई समस्या हो तो आप सीधे विशेषज्ञ से जुड़िए। और जो हमारा फोन नंबर है,
2: हमारे फोन नंबर है 23 42 10 81, हमारा दूसरा नंबर है 23 42 10 83। तो दिल्ली से बाहर के जो भी श्रोता हमें कॉल कर रहे हैं तो आप 011 अवश्य लगाएं।
5: चलते हैं स्टूडियो की तरफ।
6: डॉक्टर तेवतिया, डॉक्टर मलिक जी, आपका पुनः कार्यक्रम में स्वागत।
7: धन्यवाद जी।
6: और आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, एक बार धीरे धीरे फोन नंबर और बता दूं जी, ताकि जो हमारे सुनने वाले बहन भाई या किसान हैं वो आराम से नोट कर लें। अगर कोई समस्या गन्ने की फसल में उनको आ रही है, दिखाई दे रही है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि बातचीत करो फसल से
7: जी,
6: तो बातचीत करते टाइम अगर फसल ने कुछ बता दिया कि ये समस्या है मेरे साथ
7: जी,
6: तो वो हमारे तक जरूर पहुंचाइए। फोन नंबर 23 42 10 81, दूसरा नंबर है 23 42 10 83। स्टूडियो के नंबर है दिल्ली के हैं, तो इससे पहले आप जो दिल्ली का स्टडी कोड है 011 आप

0: आप सीधे ही विशेषज्ञों से बात कर सके। डॉक्टर मलिक जी, हम चर्चा कर रहे थे कीट की, क्योंकि कीट जो है वो बहुत नुकसान पहुंचा देता है फसलों को, खासतौर पर गन्ने की बात हमने करी। मिठास जी, है, मिठास पर सब आकर्षित है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ, तो
1: बिल्कुल,
0: कीट भी होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो और कौन कौन से कीट हैं जो इस समय नुकसान पहुंचा सकते हैं?
1: इसमें जैसे हमने अभी बात कर ली है मिलीबग के बारे में, मैं बताया था और उसमें हमने सजेस्ट भी किया कि आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें तो ज्यादा प्रभावी रहेगा
0: जी।
1: और मैं भी तेवतिया, डॉक्टर तेवतिया जी की ही सलाह आप लोगों से देना चाहूंगा, जब भी आप फोन करें या कहीं भी दवाइयां आप लेने के लिए जाते हैं किसान भाई, मेरा आग्रह है कि आप या तो कृषि विशेषज्ञ से पहले सलाह ले लें उसके बाद दवाइयां लाएं
0: जी,
1: या पौधा लेकर ही जाएं। जब तक डायग्नोस नहीं होगा, क्योंकि मेरे केंद्र पर जो मेरे पास किसान भाई आते हैं या मैं किसी बड़ी गोष्ठी में जाता हूं, मेले में जाता हूं, तो मैं किसान से विशेष आग्रह करता हूं कि कृषि की गोष्ठी है तो गन्ना आपके हाथ में
0: होना चाहिए,
1: और या गन्ने की गोष्ठी है या एग्रीकल्चर की गोष्ठी है तो प्रभावित पौधा, खराब पौधा आपके हाथ में हो, ताकि डायग्नोस करके चीजें वहां बताई जा सके। अदरवाइज ज्योतिष विद्या लगानी पड़ेगी, क्योंकि सिम्टम हमारे किसान भाई वहां पे उस लेवल पे नहीं बता पाते हैं, और तीनों चीजें एक साथ मिक्स हो जाती है। किसान भाई से पूछो किस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं, जी सारा गन्ना पीला पीला हो गया, सारा गन्ना सूख रहा है।
0: तो सब इस पर चर्चा करेंगे। एक फोन ले लेते हैं
1: जी।
0: हेलो,
2: हेलो साहब, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं?
2: सर मैं करतार सिंह बोल रहा हूँ, अलवर हरियाणा से।
0: जी करतार भाई, बताइए क्या सवाल है?
2: हमारा सवाल है जी, मैं गन्ने की खेती।
0: हाँ जी।
2: सर हमारी फसल में ग्रोथ कम है
1: जी।
0: अच्छा
2: जी। जी हमने उसमें गाय का गोबर, देसी खाद डाला गाय के गोबर का।
3: करतार जी आइए बताइए कि आपने अपने मिट्टी की परीक्षण कराए, टेस्ट कराई है मिट्टी?
2: सर मिट्टी की जांच तो नहीं कराई।
3: हाँ देखिए, ये बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें भी जरूरत पड़ती है मनुष्य को टाइम टाइम पे अपना ब्लड की जांच कराने के लिए, इसलिए मिट्टी की जांच कराई और मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की जांच कराई है और माइक्रो न्यूट्रिएंट की जांच कराई है, एनपीके की जांच कराई है, पीएच और ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और पीएच की जांच कराई है। जब तक आप जांच नहीं कराओगे, देखो सही से सलाह देना बड़ा मुश्किल है। हम आपको बिना देखो, बिना देखे मरीज को अगर डॉक्टर दवाई देने लगे और गलत दवाई हो जाए तो आप ये कहेंगे कि भाई इन्होंने गलत सलाह दे दी। तो आप मिट्टी टेस्ट कराइए और मिट्टी टेस्ट करके कृषि विशेषज्ञ से किसी से सलाह लीजिए और उसके बाद में कोई भी उपचार कीजिए। देखिए, जो आपकी अगर ग्रोथ कम है तो वो मिट्टी की ही प्रॉब्लम है फिर, या आपकी बीज, तो आपने, मैं सोचता हूँ कि बीज तो अच्छा ही डाला होगा आपने।
2: वो वैरायटी है 0238।
3: 0238 बहुत बढ़िया वैरायटी है, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी है, तो उसकी तो कम ग्रोथ है नहीं, सबसे सबसे पहले चलती है वो, तो सबसे ऊंची चलती है। तो प्रॉब्लम जमीन में हो सकती है, आप मिट्टी टेस्ट कराइए और हम आपको बिल्कुल बढ़िया समाधान बताएंगे।
2: ठीक है सर।
0: करतार भाई बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
2: हमने एक अंदर घोसले सर्वे किया जी।
0: हाँ,
2: तो रोग तो कोई है नहीं जी, कैसा भी।
3: पत्तियाँ पीली हैं?
2: बिल्कुल हरी पत्तियाँ जी, तोता जैसा कलर है।
3: अरे ग्रोथ कम है?
2: हाँ जी, बस ग्रोथ कम है।
3: कब बोई थी?
2: ये पेड़ी है जी।
3: पेड़ी है, अच्छा अच्छा।
2: इसमें अभी कम ज्यादा ज्यादा चार चार फुट का हुआ है।
3: और मोटाई कैसी है?
2: मोटाई अच्छी है जी, बिल्कुल।
3: और टिलरिंग कैसी है? ब्यात?
2: क्या जी?
3: ब्यात, ब्यात।
2: ब्यात होगा जी करीब 6 इंच की करीब।
3: अच्छा, अभी 6 इंच ही हुआ है ब्यात? ब्यात होता है कल्ले जो निकलते हैं नीचे से।
2: वो कल्ले तो बहुत है जी।
3: अच्छा,
2: अभी कल्ले तो मतलब ये समझो जुड़ गए 28-30 है।
3: अच्छा, तो हो सकता है ये भी कारण हो, ज्यादा कर ले हैं तो वो सारे न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, वो तो एक एक को कम मिल रहे हैं, तो इसलिए भी ग्रोथ कम हो सकती है। दूसरा ये है कि पेड़ी आपकी पौधा गन्ना कटा कब था ये?
2: कटा जी अप्रैल में।
3: अप्रैल में कटा है, अच्छा। तो उसके बाद में आपने खाद पानी अच्छी तरह दिया, उसमें जुताई वगैरह करवाई इसकी?
2: सर मैंने इसमें वो पताई हटा के इसको ट्रैक्टर से जुतवाया जी पहले। हल से, ट्रैक्टर के हल से ही जुतवा के फिर इसमें दो ट्राली देसी खाद डाला गाय के गोबर का, आधा एकड़ जमीन है जी मेरे पास, और वो गाय के गोबर भी जो डाला था मैंने फसलों से डाला था जी कूट कूट पे।
3: अच्छा
2: हाँ जी,
3: तो जो गोबर था वो सड़ा हुआ था या कच्चा था?
2: नहीं बिल्कुल सड़ा हुआ जी।
3: अच्छा, तो आपने तो अब हमारे हिसाब से तो सारे काम सही कर रखे हैं।
2: और फिर उसमें जी आवड़े से 3 खोदी लगाई है पीछे।
1: बहुत बढ़िया
3: बहुत बढ़िया। तो आप एक काम करिए, आप कौन सी शुगर मिल में देते हो?
2: शुगर मिल पलवल है जी, कोऑपरेटिव शुगर मिल।
3: आप वहाँ जो गन्ना विशेषज्ञ होगा कोई
2: जी,
3: उसको एक बार बुला के अपना खेत दिखाइए।
2: ठीक है सर।
3: क्योंकि ये जब ही जब खेत आपको पूरी तरह देखेगा जब विशेषज्ञ, तभी बता सकता है। ठीक है, ओके जी।
0: करतार भाई बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए आपका।
2: धन्यवाद।
0: और डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि भाई जो है आप पौधा जो है गन्ने का, जो इसमें बीमारी हो, कीट लग रहा हो, तो वो लेके आओ
1: जी।
0: ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे मरीज को डॉक्टर के पास पहुंचा दिया आपने।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, ये नहीं कि डॉक्टर के पास गए और बताया कि जी हमारे बच्चे का ये हो रहा है ये
1: जी,
0: ये
1: जी,
0: है।
1: जी।
0: तो डॉक्टर साहब ने भी जो बात कही है यही कही है।
1: बिल्कुल,
0: कि
1: बिल्कुल।
0: आप कम से कम डॉक्टर तक तो पहुंचे।
1: बिल्कुल
0: जी डॉक्टर साहब, बताइए आप
1: जी। नहीं वही चीज
0: जी जी बोलिए।
1: वही चीजें थी कि हम जब डायग्नोस करेंगे तो चीजों को अच्छे से तभी देख पाएंगे जब हमारे पास पौधा होगा। वही मैं सुझाव किसान भाइयों को देता हूँ। और दूसरा, जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय में हमारे कुछ क्षेत्रों में माइट भी देखने को मिल रही है, जिसको हम वेब माइट, रेड माइट या अन्य कई प्रकार की माइट्स होती है, जो हमारे यहां पर देखने को मुख्य रूप से मिल रही है वो वेब माइट है। पत्ती की निचली सतह पर सफेद रंग के डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट से लगाते हुए वो चलती है, और जिसके अंदर वो अपने वहां पर शिशु देती है, बच्चे उसके अंडे बच्चे वहां पर उसके उसमें होते हैं, और वे वहां पर रस चूसने के कारण पत्तियां नीचे की तरफ से, क्योंकि वो क्लोरोफिल का वहां पर चीजें क्लोरोफिल को खा लेते हैं, तो ऊपर फिर रेड कलर का पिगमेंटेशन बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, तो पत्तियां ऊपर से लाल नजर आनी शुरू होती है, नीचे सफेद रंग के, और लाइनर जो मिडरिप होते हैं, जो मध्य सिरा होती है, उसके बराबर एक सीधी लाइन के रूप में डॉट डॉट डॉट से लगते हुए चले जाते हैं, जिसको हम माइट बोलते हैं। पहला तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि यदि इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, तो उन खेतों की सबसे पहले तो मेड़ को साफ करें, खरपतवार को नियंत्रित करें
0: जी।
1: क्योंकि क्या हो रहा है, एक काफी किसान भाइयों के फोन कॉल भी आते हैं, या मैं क्षेत्र भ्रमण करता हूं तो उसमें देखने को यह मिलता है कि किसान भाई स्प्रे करते हैं, उसका कंट्रोल होता है माइट का, लेकिन 10 दिन 15 दिन के बाद पुनः उसका असर आना शुरू हो जाता है। एक बड़ी अच्छी कॉमन सी बात हमारे किसान भाइयों के बीच में है
0: जी,
1: कि दो खेत है, उनके बीच में एक मेड़ है
0: जी।
1: मैं अपने खेत पे स्प्रे करता हूं, पड़ोसी अपने खेत पे स्प्रे करता है, मेड़ पे कोई सा नहीं करता,
0: कोई नहीं करता।
1: तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वो मेड़ पे अल्टरनेट होस्ट के रूप में वहां पर रहती है, और आपने स्प्रे किया, 10 दिन तक आपके खेत में असर है, उसके बाद वो माइग्रेट करके फिर वहां पे आ जाती है। और ऐसे ही पड़ोसी का है कि हमने मेड़ को छोड़ दिया है, मेरा किसान भाइयों से सबसे पहले आग्रह यही है कि या तो उसकी उस मेड़ को, खरपतवार को वहां साफ कर दें, और या दूसरा विकल्प यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी नहीं है, तो आपसे आग्रह है कि जब अपने खेत पे स्प्रे करें तो उस मेड़ के ऊपर भी स्प्रे करें, वो अल्टरनेट होस्ट वहां पर ना छोड़े कि वो उसके ऊपर वो आपकी वो माइट वहां पर रह जाए और उसके बाद वो पुनः आपके खेत पे अटैक कर पाए। तो इसलिए उसके लिए अलग अलग चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला तो यही है। दूसरा, यदि पत्तियों पर ज्यादा प्रभाव आपको नजर आ रहा है और बॉर्डर पे बाहर की तरफ जहां खरपतवार होंगे, चाहे खेत के अंदर हो चाहे बाहर, वहीं पर ज्यादा असर आएगा, उन पत्तियों को यदि हटा पाना संभव हो तो सबसे अच्छा विकल्प तो वही है कि उन पत्तियों को, पौधे की पत्तियों को हटा दें, उन पत्तियों को ऊपर की 4 पत्तियों तक वो माइट ज्यादातर नहीं पहुंचती है, हमेशा जो नीचे कर्व लेना शुरू करती है उन्हीं पर ही वो उसका असर ज्यादा होता है, ऊपर की खड़ी हुई पत्तियों पर कम होता है, इसलिए उन नीचे की पत्तियों को जो प्रभावित है उन्हें हटा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि नहीं हटा पाते हैं तो प्रोपोगाइट करके दवाई आती है एकेरिसाइट की, आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा, एक बार उसका इस्तेमाल करें, दूसरी बार में आप सल्फर और इमीडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको माइट में राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर 2 बार आपको उसमें कंट्रोल करने के लिए प्रयास करना होगा, लेकिन मेरा किसान भाइयों से पुनः यही आग्रह है कि जब भी स्प्रे करें माइट के लिए विशेष तौर पर मेड़ को जरूर कंसीडर करें। यदि मेड़ कंसीडर नहीं की, आप हर 10 दिन पे, हर 1 सप्ताह पे अपने खेत में स्प्रे करेंगे और नो डाउट वो माइट बार बार अटैक करेगी, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। किसान भाइयों को

0: इसमें लगेगा भी कि बारिश हो गई है, वो कुछ डाउन है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन बढ़ाने की, उसकी बच्चे आगे अंडे देने की कैपेसिटी बेहद ज्यादा है, तो इसलिए बहुत जल्दी से अपनी नई जनरेशन को भी लेके आती है। इसलिए हमें उसे कंट्रोल बड़े प्रॉपर तरीके से करना होगा, जब भी कंट्रोल होगी, अन्यथा की दशा में दोनों के लिए नुकसानदायक है, केवल और केवल
1: पड़ोसियों का,
0: पड़ोसियों के लिए भी और हमारे लिए भी, और दूसरा इंडस्ट्री के लिए भी। मुझे प्रोडक्शन जाएगा, मेरा गन्ना वेट नहीं देगा, सुगर इंडस्ट्री का वहां पर रिकवरी नहीं देगा
1: जी।
0: उसको रिकवरी पे इम्प्रेशन, बैड इम्प्रेशन जाएगा, गलत प्रभाव जाएगा, हमारा उत्पादन पे जाएगा, हमारे किसान भाइयों को उसमें वजन मिलने की संभावना। गन्ना फोलियज देखने में हो सकता है अच्छा नजर आए, बट वो गन्ने में सब सॉलिड, वहां पर उसमें वजन उस लेवल का नहीं बनेगा जिस लेवल का बनना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, ये बात अक्सर हम सभी फसलों के लिए करते हैं आज, तो क्योंकि विशेष कार्यक्रम है, गन्ने की बात हम कर रहे हैं और खरपतवार की जो बात करते हैं हम, जो कि भाई आपके खेत जो है खरपतवार से रहित होने चाहिए
0: जी।
1: क्योंकि खरपतवार में कीट पतंगे अपना घर बनाते हैं, बाद में वो फसल पे जाते हैं, जैसे आपने बता ही दिया क्लियर कट,
0: बिल्कुल
1: जो डोड़ है, जो मेड है, उसकी सफाई रखो ना, तो भाई पैसे ज्यादा खर्च करो, दवाई इस पे डालो
0: जी।
1: पैसे बचाने हैं थोड़े से तो पेड़ की सफाई रखो और साफ करके जितना भी खरपतवार है, या जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जो प्रभावित पत्तियां हैं
0: जी,
1: उनको भी ले जाके कहीं गड्ढे में दबाओ या नष्ट करो,
0: नष्ट करो
1: भाई, नहीं के भाई मेड पे डाल दिया और फिर
0: दोबारा से वो उसका अल्टरनेट होस्ट के रूप में फिर वही वहां पे उसको मिल गई,
1: मिल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी सावधानी बरतो, तो आपकी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, वजन अच्छा रहेगा, और जब मिल में ले जाओगे तो बढ़िया पैसे मिलेंगे। डॉक्टर साहब, चर्चा बहुत होगी है, एक मनोरंजन आपका करा देते हैं, एक लोकगीत सुनवाते हैं।
2: हाँ, किसानों को सुनवाइए।
1: जी।

0: और भैया ठंडी हवा चले, मेरे राजा से मिलना ना होए। तो राज रानी वर्मा की आवाज में डॉक्टर साहब ये लोकगीत।
1: तो नरेश जी आपने जो है अभी से सावन डिक्लेयर कर दिया पूरा।
0: अब जो माहौल बन गया डॉक्टर साहब, हमने कहा माहौल बनाओ ताकि सावन तक पहुंचते पहुंचते और
1: किसान भाइयों के दिमाग में आ गया होगा भाई सावन आने वाला है। हाँ,
0: तो सावन थोड़े दिन बच रहे हैं डॉक्टर साहब, सावन भी आ जाएगा। और बरसात में जैसे हवा चलती है ठंडी, तो भाई आनंद तो आ गई है। और उस पर अगर संज्ञा तो मिलना ना हो तो कष्ट होगा ही। तो डॉक्टर साहब अब कष्ट की बात शुरू हो गई है, तो अब कीड़ा का जो कष्ट है, जो गन्ने में आ रहा है, आता है या आने की संभावना है, उससे कैसे हमारे जो किसान है हमारे, उनको कैसे बचाएं, तो और कौन से कीट इस समय दुविधा दे सकते हैं?
2: जी, जो महत्वपूर्ण थे इस समय वर्तमान में, यही सारे कीट हमारे महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ एक और कीट महत्वपूर्ण है, व्हाइट फ्लाई, जिसको हम बोलते हैं सफेद मक्खी।
0: सफेद मक्खी
2: जी, वो भी गन्ने में आती है। और किसान भाई अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाइट फ्लाई में और आप माइट में
0: जी,
2: क्योंकि वे दोनों ही पत्ती की निचली सतह पर अपना एग लेइंग करती है, पत्ती की निचली सतह पर अंडे देती है। लेकिन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि यदि व्हाइट फ्लाई है तो वो एक लाइनर नहीं देगी, एक लाइन में अंडे नहीं
0: देगी। आपने बताया था
2: जी जी जी, जो माइट में एक नेचर होती है उसकी लाइनर, एक लाइन बनाते हुए चलेगी, सफेद उसको कवर करते हुए चलेगी
0: जी।
2: लेकिन जो व्हाइट फ्लाई होगी वो एक तो उसके लाइनर नहीं होगा, लाइन में नहीं देगी, किसान की भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा उसके कलर डिफरेंशिएट होगा, वो व्हाइट कलर से के अंडे होंगे, कहीं ब्लैक होगा कहीं व्हाइट होगा, स्पोर्टी टाइप से वो अंडे देगी, वो व्हाइट फ्लाई के अंडे होते हैं। और दोनों ही सकिंग इंसेक्ट है, रस चूसने वाले कीड़े हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हम इसमें, क्योंकि ये प्योरता इंसेक्ट है व्हाइट फ्लाई, और इसको कंट्रोल करने के लिए किसान भाई आप इमिडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बायफेंथ्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप घोल बनाएं और पत्ते को, पौधे को अच्छे से तर करें। और प्रयास करें इस समय जो बरसात का सीजन होता है, इसमें सरफेस टेंट जरूर इस्तेमाल करें। जैसे अभी तेवतिया जी कह रहे थे कि भाई बरसात का समय होता है, आपने प्रश्न पूछा था, तेवतिया जी ने सुझाव दिया था उसमें कि 4-5 घंटे का समय मिलना चाहिए
0: जी।
2: तो यदि हम सरफेस टेंट मिला देते हैं, स्टीकर उसमें किसान की भाषा में बात करूं तो मिला देते हैं, तो वो जो हमारा लीफ है उसको जल्दी से एब्जॉर्व कर लेती है, वो ड्रोपलेट नहीं बनने देती, वो पौधे की पत्ती में जल्दी से उसके अंदर चली जाती है
0: और देर तक रहती है,
2: और देर तक, क्योंकि शरीर में अच्छे से प्रवेश कर जाएगी, तो इसलिए वो ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। तो निश्चित तौर पर हम उसको आसानी से कंट्रोल कर लेंगे और हमारे किसान भाइयों को उसका नुकसान भी, इन कीटों का उतना नुकसान नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, जांच और पहचान
0: जी
2: दोनों मस्ट है। यदि
0: समय से कर ली, समय से इलाज कर दिया तो
2: जी
0: नुकसान से बचे रहेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: डॉक्टर साहब, अब कीट की बात हो रही है तो रोग की बात भी बता दो, कोई रोग इस समय आ रहा हो तो।
2: हाँ, इसी के पैरेलल अभी हमारे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण रोग चला हुआ है जिसको हम पोका बोइंग के नाम से जानते हैं। और ये पोका बोइंग जो डिजीज है, ये बेसिकली 3 टाइप की स्टेज इसकी आती है। टॉपरोट फेज, क्लोरोटिक फेज आती है, और टॉपरोट फेज आती है, नाइफ कट फेज आती है, जो प्रारंभिक अवस्था है, किसान आसानी से पहचान सकता है उसको, कि जहां पर आपका गोला शुरू होता है वहां पर पत्ती एक तो श्रिंक करेगी, सुकड़ेगी,
0: सुकड़ जाएगी,
2: और वहीं पर येलो कलर का स्पॉट बनाएगी, सफेद और
0: पीला,
2: पीले रंग का धब्बा सा बनाएगी, और वो बाद में फिर वहां पर ब्राउनिश कलर, रेडिश कलर में परिवर्तित होना शुरू होगी। तो इस प्रकार के स्पॉट वहां पे पोका बोइंग में नजर आने शुरू होते हैं। और उसके लिए किसान भाइयों से आग्रह है कि वो उसके लिए बहुत अच्छा केमिकल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से। लेकिन सावधानी ये बरतें, उसके साथ अन्य केमिकल का इस्तेमाल न करें तो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा।
0: डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, डॉक्टर US तेवतिया जी कार्यक्रम में आए, किसानों की समस्याओं का समाधान किया, धन्यवाद आपका।
2: धन्यवाद।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद।
1: IPL की पॉलीहेलाइट।
2: इसी के साथ हमारा कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक है शिव नंदन लाल। तो सभी भाइयों बहनों हमारा राम राम, राम।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, गजलों के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत में आगाज करते हैं हम चंदन दास साहब की आवाज में इस गजल के साथ।

जी हाँ जी, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए जिस तरह कार्यक्रम का हमने किया है आगाज, उसी को बढ़ाते हैं थोड़ा सा और आगे चंदन दास साहब की आवाज में ये गजल आपके लिए।

श्रोताओं, इसी गजल के साथ मैं यानी दीप्ति पाठक आपसे इजाजत चाहूंगी इस कार्यक्रम से। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए पात्र लोगों को जल्द स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए 275 अभ्यर्थियों को 12 अस्पतालों में इंटर्नशिप सीटें आवंटित की। केंद्र ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और जनता के लिए आसान बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन किया और दक्षिणी दिल्ली के एक रिहायशी इमारत में आग लगने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी।
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: श्री रिजिजू ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि देश के युवाओं को एक निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली मिलनी चाहिए। श्री सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि पेपर लीक रोकना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता और देश के हर परिवार से जुड़े इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उधर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों का गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा की लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्कालीन स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि श्री वांगचुक को मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार जल्द ही पात्र लोगों के लिए स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करेगी। इसकी घोषणा आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजस्व विभाग द्वारा आयोजित स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत व्यापक सर्वेक्षण, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने का कार्य किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि योजना के अंतर्गत अब दिल्ली सरकार आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित कर रही है, जिससे भविष्य में रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्ड पर संपत्ति का संपत्ति पहचान संख्या, जारी करने की तिथि, गांव, उपमंडल, जिला, कब्जाधारी का नाम जैसे महत्वपूर्ण जानकारियां अंकित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक कार्ड पर QR कोड भी होंगे। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव का हवाई सर्वे भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 48 गांव को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ हुए समझौते के तहत योजना में शामिल किया गया है। इनमें से 30 गांवों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और उनके अंतिम प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अब तक 12,000 से अधिक संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इसके अलावा दक्षिण और उत्तर पश्चिम जिले में सर्वे की गई सभी संपत्तियां विवाद मुक्त हैं, जबकि अन्य जिलों में भी विवाद के समाधान के साथ आगे की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार तकनीक आधारित सुशासन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और स्वामित्व योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद 275 अभ्यर्थियों को 12 अस्पतालों में इंटर्नशिप सीटें आवंटित की है। अधिक ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: इनमें ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा अन्य कॉलेज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 207 सीटें 5 नॉन टीचिंग अस्पतालों में आवंटित की गई हैं। इनमें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, जयपुर गोल्डन अस्पताल, BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और सेंट स्टीफंस अस्पताल शामिल हैं। इस पहल से उन फॉरेन मेडिकल स्नातकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार युवा चिकित्सा पेशेवरों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रादेशिक के लिए आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यू डेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये देश में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसका इस्तेमाल 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए किया जा सकता है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश की पहली डेंगू वैक्सीन की मंजूरी मिलना डेंगू के खिलाफ भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने आज कैंसर और संक्रामक रोगों के उपचार संबंधी समाधान विकसित करने के लिए 3 स्वदेशी जैव चिकित्सा तकनीकों को अग्रणी भारतीय दवा और वैक्सीन निर्माताओं को लाइसेंस दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि तकनीक अगली पीढ़ी के स्वदेशी उपचारों, टीकों और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देगी। इस अवसर पर ICMR के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा कि संस्थान ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सार्वजनिक धन से होने वाला अनुसंधान ऐसे उत्पादों में परिवर्तित हो जो स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में सुधार करे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने आज सराय कालिखा नमो भारत स्टेशन पर निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य नेत्र स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता बढ़ाना, इससे जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द पता लगाना और नमो भारत यात्रियों के साथ साथ अन्य लोगों को निशुल्क नेत्र जांच की सुविधा प्रदान करना था। इस शिविर में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों की दृष्टि जांच की और उन्हें इसका विशेष ख्याल रखने संबंधी सलाह दी। हरजीत सिंह ग्रेवाल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना इस महीने की 16 तारीख को जारी की थी। पदभार संभालने के बाद श्री ग्रेवाल ने मीडिया से कहा कि आयोग सभी अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए काम करेगा और स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। उन्होंने कहा कि आयोग वास्तविक शिकायतों के समाधान और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर उचित ध्यान देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री ग्रेवाल ने देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में फैलाई जा रही गलत धारणाओं को भी खारिज किया।
5: कुछ लोग देश में बहुत गलत फहमी डाल रहे हैं कि यहाँ मिनोरिटीज के ऊपर जुलम हो रहा है। यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है सभी कम्युनिटीज की, अगर जुलम होता हो या उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती या डिस्क्रिमिनेशन होती हो तो यहाँ पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। यहाँ तो सबका साथ सबका विकास, उसके हिसाब से हम काम करते हैं अपने अपने फील्ड में। सभी हम मिलकर कोशिश करेंगे, अगर कहीं कोई ऐसी बात होगी भी तो उसको भी एड्रेस करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और जनता के लिए आसान बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद दिल्ली नगर निगम के जोनों के नाम अब दिल्ली के राजस्व जिलों के नामों जैसे कर दिए गए हैं। संशोधित 14वीं अनुसूची में दिल्ली नगर निगम के सभी 250 वार्डों के नाम और उनके 12 जोनों की पूरी जानकारी दी गई है। 12 जोन के लिए हम बाहरी उत्तर, उत्तर, उत्तर पश्चिम, मध्य उत्तर, पुरानी दिल्ली, मध्य पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये संशोधन दिल्ली के राजस्व प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक होगा। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि कैलाश नगर के महावीर स्वामी पार्क में पानी की मुख्य पाइपलाइन पर कुछ बड़े सुधार कार्य के कारण सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से साउथ दिल्ली मेन लाइन में जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने बताया कि कल सुबह 10 बजे से अगले शाम 6 बजे तक दक्षिण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने जानकारी दी है कि राजघाट के पास समता स्थल पर स्थित वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली मौजूदा पाइपलाइन की मरम्मत के कारण कल माटिया महल, बलीमारान और चांदनी चौक एसी 20, 21 और 22 के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने बताया कि जलापूर्ति कल सुबह 11 बजे से 18 घंटे तक बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है। आपातकाल स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। राजधानी के दक्षिण दिल्ली के लोधी रोड स्थित बीके दत्त कॉलोनी में एक रिहायशी इमारत में सुबह आग लग गई। स्थानीय पुलिस के अनुसार आग इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी और इस हादसे में एक महिला और उसकी दो बेटियों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि सुबह करीब 10:20 पर सूचना मिलते ही आग बुझाने के लिए 3 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिनमें स्थलीय साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु साहसिक कार्य और आजीवन उपलब्धि पुरस्कार शामिल है। इस पुरस्कार का उद्देश्य युवा भारतीयों को साहसिक गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। नामांकन आज से 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। आवेदक संबंधित राज्य सरकार के खेल विभाग या मान्यता प्राप्त साहसिक संस्थानों से अनुशंसा प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सेना, नौसेना और वायुसेना के सेवारत कर्मियों के लिए अनुशंसा अनिवार्य है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक दिन के विराम के बाद आज फिर से शुरू हो गई है। लगातार बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका को देखते हुए कल यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की गई थी। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय कई क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल भी बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए पात्र लोगों को जल्द स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए 275 अभ्यर्थियों को 12 अस्पतालों में इंटर्नशिप सीटें आवंटित की। केंद्र ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और जनता के लिए आसान बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। हाजिर हूँ मैं लेकर आपका अपना फिल्म संगीत का प्रोग्राम गीत मालिका। और आज की गीत मालिका की इस रोलर कोस्टर राइड में मैं हूँ आपकी कैप्टन, आपकी साथी, आपकी मित्वा, आपकी अपनी दीप्ति। तो क्या खास है आज इस रोलर कोस्टर राइड में आपके लिए, करेंगे इस बारे में बात। लेकिन करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत इस खुशनुमा गीत के साथ।

ये खूबसूरत शाम और आज 21 जुलाई हिंदी सिनेमा के उस महान गीतकार का जन्मदिन जिन्होंने शब्दों को सिर्फ लिखा नहीं उन्हें धड़कनों में बसाया। जी हाँ श्रोता, हम बात कर रहे हैं आनंद बख्शी साहब की, जिनके गीत आज भी हर दौर हर उम्र और हर दिल की जुबान बने हुए हैं। आज का ये पूरा सफर हम समर्पित करेंगे हिंदी फिल्म संगीत के उस जादूगर को जिन्होंने शब्द नहीं जज्बात लिखे। उन्होंने 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक हजारों गीत लिखे और कमाल की बात ये रही कि उनके शब्द हमेशा सीधे दिल तक पहुंचे। उनकी कलम की सबसे बड़ी खूबी थी सादगी। मुश्किल एहसासों को भी इतने आसान से अल्फाजों में पिरो देते थे कि हर शख्स को लगता था अरे ये तो मेरे दिल की बात कह दी। तो आइए आज उनके लिखे उन सदाबहार नगमों के साथ याद करते हैं उस महान गीतकार को जिनके गीत वक्त के साथ पुराने नहीं बल्कि और भी अपने और भी दिल के करीब लगने लगते हैं।

पहली मुलाकात जिंदगी का शायद सबसे खूबसूरत लम्हा। उस एक मुलाकात में ना जाने कितने सवाल होते हैं, कितनी धड़कनें होती हैं और कितनी अनकही बातें होती हैं। श्रोताओ, आनंद बख्शी साहब की यही तो खासियत थी कि वो उन एहसासों को भी शब्द दे देते थे जिन्हें लोग अक्सर सिर्फ महसूस कर पाते हैं। पहले नजरें मिलती हैं, फिर मुस्कुराहट अपना काम करती है और उसके बाद दिल बिना किसी इजाजत के अपनी अलग ही कहानी लिखना शुरू कर देता है। और फिर एक ऐसा मकाम भी आता है जहां अल्फाज की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब सच्चे एहसास हों तो खामोशी भी बातें करने लगती है। आइए आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी साहब का लिखा एक ऐसा ही सदाबहार नगमा, जिसमें दो दिल मिल तो रहे हैं लेकिन अपनी कहानी दुनिया से छुपाकर।

श्रोताओं, दो दिल जब एक दूसरे से मिल जाते हैं ना, तो मुलाकातें हमेशा जरूरी नहीं रह जाती हैं, क्योंकि उसके बाद यादें जो होती हैं वही सबसे ज्यादा खूबसूरत साथी बन जाती हैं। और यही आनंद बख्शी साहब की लेखनी का जादू था। उन्होंने मोहब्बत को सिर्फ मिलने की तड़प तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इंतजार, याद, तड़प, मुस्कुराहट, हर एहसास को बेहद सादगी से गीतों में पिरो दिया। उनके लिखे हुए गीत इसलिए भी खास लगते हैं क्योंकि उनमें जिंदगी बनावटी नहीं बल्कि बिल्कुल सच्ची नजर आती है। उनके गीतों में हर श्रोता को कहीं ना कहीं अपना ही किस्सा सुनाई देता है। और जब कोई दिल के इतना करीब आ जाए कि उसका नाम होठों पर आए ना आए, दिल उसे हर धड़कन में याद करता है, तो इसी खूबसूरत एहसास को शब्द देता है आनंद बख्शी साहब का ये अगला सदाबहार नगमा।

अरे हाँ, तो नाम याद रखना भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। लेकिन जब मोहब्बत हो जाए ना, तो ये सारा हिसाब किताब थोड़ा गड़बड़ हो ही जाता है। देखिए ना, अभी तक तो बात थी कि तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, लेकिन अब ये कहानी थोड़ी सी हमने बढ़ा दी है आगे, और अब हालात ये हैं कि अपना नाम याद रहे या ना रहे, उनका ख्याल हमेशा साथ रहता है। दोस्तों, आनंद बख्शी साहब प्यार की ऐसी ही शरारतों को बड़े मजेदार अंदाज में गीतों में पिरो देते थे। उनके शब्द मुस्कुराने पर मजबूर भी करते थे और गुनगुनाने पर भी मजबूर कर देते थे। तो चलिए जरा सा मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, उसका मुझे लगता है कि गुनगुनाना शायद प्यार की किसी मेमोरी को छोटा सा सिस्टम अपडेट दे ही देगा। चलिए सुनते हैं ये गीत।

आनंद बख्शी साहब की कलम से निकले इस नगमे को आप सुन रहे हैं शंकर महादेवन साहब की आवाज में फिल्म जोर के लिए।

दोस्तों, जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है, ट्यून इन किया है आपने, हम आपको बताते चले आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल को। प्रोग्राम चल रहा है गीत मालिका। बात कर रहे हैं आज हम लोग आनंद बख्शी साहब के लिखे सदाबहार नगमों की, और आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी दीप्ति। और अब जो गीत मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, ये निकला है आनंद बख्शी साहब की कलम से, और गीत ऐसा है कि इस गीत के बगैर ये कार्यक्रम तो पूरा हो ही नहीं सकता था।

दोस्तों, आनंद बख्शी साहब की कलम सिर्फ प्यार और मोहब्बत की दास्तानें ही नहीं लिखती थी, उन्होंने दोस्ती को भी यादगार बनाया, रिश्तों को भी आवाज दी और जब जब मस्ती का मौका आया तो ऐसे चुलबुले गीत लिखे कि आज भी सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हमने अभी आपको सुनवाया ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, एक ऐसा गीत जिसने दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए एक नई पहचान दे दी। लेकिन जिंदगी सिर्फ वादों और जज्बातों से तो नहीं चलती ना, इसमें चाहिए थोड़ी सी शरारत, थोड़ा सा कंफ्यूजन और कभी कभी छोटी मोटी गड़बड़ी भी। और सच कहिए, अगर जिंदगी में कभी कुछ गड़बड़ हो ही ना तो जिंदगी तो बड़ी स्मूथ सी चलेगी ना, मजा ही कहाँ आएगा। तो चलिए, मोहब्बत के बाद दोस्ती और दोस्ती से निकलकर चलते हैं मस्ती की उसी दुनिया में जहाँ चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है और पैर खुद बखुद थिरकने लगते हैं। सुनिए आनंद बख्शी साहब की कलम से निकला ये बेहद चुलबुला और मस्ती भरा नगमा।

0: जान बचाओ
1: लो पी जाओ।
0: इसमें क्या है
1: तुम्हें पता है?
0: पी के मरूं क्या
1: ये
0: और करूं क्या?

श्रोताओं, हर मुलाकात की एक खूबसूरत बात होती है कि वो अगली मुलाकात की उम्मीद भी साथ छोड़ जाती है। आज आनंद बख्शी साहब के गीतों के साथ हमने प्यार के रंग देखे, दोस्ती की गर्माहट महसूस की, शरारतों पर मुस्कुराए और यादों के कुछ बेहद खूबसूरत पल अपने साथ समेट लिए। यही तो था उनकी कलम का जादू। हर गीत जिंदगी का नया एहसास बन जाता था। अब स्टूडियो की घड़ी हमें बता रही है कि विदा लेने का वक्त हो गया है। रोलर कोस्टर राइड को हमें यहीं एंड करना होगा, लेकिन ये विदाई अलविदा नहीं है, ये एक छोटे से विराम की तरह है। तो चलते चलते आनंद बख्शी साहब के ही लिखे इस प्यारे से गीत के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी।

और इसी गीत के साथ आज की इस रोलर कोस्टर राइड को यहीं पर समाप्त करने की मुझे यानी दीप्ति पाठक को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी यूं ही किसी संगीतमय सुरीले मोड़ पर। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
4: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
3: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने

0: कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
3: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रूपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
4: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
5: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार

0: को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बसाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच एनडीआरएफ की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बसाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय एग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के हॉर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित

क्लबर्स, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। अब हमारी आज की तीसरी मजलिस की नशियात का आगाज होता है। पेश है इस मजलिस में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों का खुलासा।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है और पेश खिदमत है प्रोग्राम एक फनकार। इसमें चित्रा सिंह की गाई गैर फिल्मी गजलें पेश की जाएंगी। सलामत फरमाइए प्रोग्राम एक फनकार।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं एक फनकार प्रोग्राम और इसमें आज के फनकार हैं चित्र सिंह। इन्हीं की आवाज में अभी आपने सुना शहीद कबीर का कलाम और इन्हीं की आवाज में सुनिए आप मुराद लखनवी का कलाम।

0: इसके साथ ही एक फनकार प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, अब खबरें नष्ट की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल हबीब। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। भारत और शुमाली मकदूनिया ने इस पॉक जी में सदारती सतह की बातचीत के बाद तजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इतफाक किया है। मध्य प्रदेश असेंबली ने यकसां सिविल कोड बिल मंजूर कर लिया है। अब नए हुरमुज में बढ़ती कशीदगी के पेश नजर अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले किए हैं। और हॉकी में आइंदा माह शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। आज हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी पर हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद नीट से मुतालिक मामलात पर बहस की अपने पहले की मांग से एतराफ करने का इल्जाम लगाया। इससे कबल दिन में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दीगर पार्टी अरकान के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने लोक कल्याण मार्ग पर एहतजाज के मुकाम पर कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात की। जनाब गांधी ने उन्हें बताया कि अगर हुकूमत नीट और दीगर मामलों पर पार्लियामेंट में बहस के लिए रजामंद है तो वो फौरी तौर पर अपना एहतजाज खत्म कर देंगे। कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने मुतला किया कि हुकूमत ने मामले पर बहस की मांग कबूल कर ली है। ताहम मरकजी वजीर ने कहा कि जब हुकूमत के मौकफ से कांग्रेस लीडर को आगाह किया गया तो जनाब गांधी अपने पहले की मांग से पीछे हट गए और वो मजीद मुतालबात करने लगे। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई आज नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन अरकान की जानिब से बार बार रखना अंदाजी के पेश नजर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हालिया नीट इम्तिहान पेपर लीक मामले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज का अहद किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इकदामात कर रही है। जनाब मोदी ने आज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से भी जाना जाता है, इससे खिताब करते हुए ये बात कही। मीडिया से बातचीत करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में आइंदा होने वाले इम्तिहानात में पेपर लीक की रोकथाम के सिलसिले में सभी मुतालिका फरीकों से मरबूत कोशिशों पर जोर दिया। सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा आज नई दिल्ली के डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए और अस्पताल में डॉक्टरों के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने कल कौमी राजधानी में नीट UG 2026 के मुबैना पेपर लीक मामले पर एहतजाज के दौरान जख्मी हुए लोगों की सूरत हाल का भी जायजा लिया। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी गए और वहां दाखिल जख्मी मुजाहिरीन से मुलाकात की। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को कौमी राजधानी के सफदरजंग अस्पताल से फौरी तौर पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि आंगमो की दाखिल करदा दरखास्त पर समाअत के दौरान यह हुक्म दिया। मरकज के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल किए जाने पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और शुमाली मकदूनिया

0: अगर लूज मोशंस हैं तो उसके लिए एक हब जहीर आती है, वो इस्तेमाल कर लें। और अगर पेट में कोई तकलीफ है तो बहुत सारी हमारी जवारिश हैं, जैसे जवारिश कमोनी है, जवारिश शाही है, इस किस्म की दवाएं हम मरीजों को देते हैं।
1: तो ये दवाई फर्स्ट एड के तौर पर ली जा सकती
0: है? हाँ, फर्स्ट एड के तौर पर बिल्कुल रखनी चाहिए लोगों को इस तरह की चीजें तो आजकल। और अच्छी बात यह है कि यूनानी तरीका इलाज में कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, एक जो प्लस पॉइंट है, जो हॉस्पिटल में हमारे मरीज आते हैं तो वो ज्यादातर यही सोचकर आते हैं कि इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
1: ऐसा मौसम कोई भी हो सबसे ज्यादा मुतासिर होती है हमारी स्किन।
0: सूरज जो डायरेक्ट स्किन पर पड़ता है ना तो वो बहुत मुजिर साबित होता है, खासतौर से गर्मी का सूरज, जो गर्मी में बहुत तपिश होती है, तो उसके लिए ऐसा क्या चेहरा छुपा लें।
1: अच्छा,
0: हाँ, जितने भी पेशेंट्स आते हैं मैं सबको ये कहता हूँ कि बेटा जब भी आप धूप में निकले ना सन क्रीम की जरूरत ही नहीं पेश आएगी, और घर में जाके अर्क गुलाब से आप चेहरा साफ कीजिए अपना, वो ज्यादा बेहतर।
1: अर्क गुलाब डायरेक्ट या पानी में मिला के?
0: नहीं, अर्क गुलाब ऐसे आप मसाज कीजिए, उसके बाद आप वॉश कर दीजिए, आपकी जिल्द हमेशा तरोताजा रहेगी, अच्छी रहेगी, अगर आप मशरूम गजाएं इस्तेमाल कर रहे हैं गर्मी के मौसम में तो वो बहुत जरूरी है।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, अब मार्केट मंत्रा नष्ट किया जाएगा।
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. I'm Sarabjit Kaur with my co-anchor Amit Goel.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया। विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद अमित जी।
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ सरबजीत।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,188। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स लगभग 250 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,188 के स्तर पर बंद। प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में मजबूती का रुझान और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी।

0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our listeners, views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर
0: जी।
1: घरेलू शेयर सूचकांक आज भी मंदी के दबाव में रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 238 अंक गिरकर 77,470 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.2% की गिरावट से 51 अंक गिरकर 24,188 के स्तर पर दर्ज हुआ। वैश्विक परिस्थितियों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण कारोबार की शुरुआत में ही निवेशक सतर्क बने रहे। पूरे सत्र में दोनों सूचकांक गिरावट के दायरे में ही कारोबार करते नजर आए। हालांकि ऐसी एनएसई मिड कैप सूचकांक में 0.3% और एनएसई स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन नेगेटिव जोन टुडे। द सेंसेक्स डिक्लाइंड 238 पॉइंट्स और 0.3% टू क्लोज एट 77,470। Nifty lost 51 points or 0.2% to settle at 24,188. Earlier, markets opened on a flat note as investors remained cautious amid geopolitical uncertainties and elevated crude oil prices. Both the indices traded with a negative bias for most of the range-bound session.

0: Out of 25 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, PSU banks dropped 0.8%, focused IT as well as IT slipped almost 0.7%, and top 10 bank index lost over 0.5%. In contrast, mid-small private banks quality tilt jumped more than 2.9%, Realty rose 1.1%, and commodities added 1%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,188 advanced, 2,021 companies declined, and 190 remained unchanged. Vishal, the Indian stock market closed lower for the second consecutive session today. What were the reasons behind today's decline?
1: Well, largely, I would say that, you know, they're staying range-bound, both the Nifty and the Sensex as well. But yes, there is a marginal decline now. There's not much positive sentiment to go on. As I've been saying time and again, that the markets do operate on sentiments, and those sentiments create momentums in the market, in the both negative and the positive, you know, category as well. But over the past, you know, 3-4 days, there has not been any huge sentiment which has been created. Although, and there is this one is a big although, because the foreign currency figures which have come in, those are really positive, and that impact is seen on the status of the Indian rupee as well. So that is there, and that is going to build the momentum in the next few sessions. But nothing much more stronger to come by as of now. I think we should wait and watch, as the market looks like is waiting and watching for the results of the June quarter as well. They've started trickling in, so far so good, but nothing extraordinary, I would say, to give that push to the market. That's one. Apart from that, the West Asia conflict, that is Iran versus US, that is something which is again flared up, and that flare up, although the crude oil prices are rising, but they're a bit steady, you know, the rise is not very sharp, and the overall sentiment in terms of, you know, both sides again confronting each other in the battleground is something which doesn't augur well for the energy sector. So there is some palpable, sentiment which is there in the market, but the market is yet to, try and understand whether it goes towards the negative end or it goes towards the positive end. Perhaps more positive results coming in from the June quarter. That's one. And two, as we move forward, we might see the impact of the money which has come in, the foreign currency which has been accumulated. Once that starts circulating in the system, we'll get to see a little bit more positive impact there.
2: विशाल, आपने चर्चा करी रुपए के बारे में, तो पहले मैं रुपए की जानकारी दे दूं अपने श्रोताओं को भी और आपको भी। अंतर्बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए आज 21 पैसे की बढ़त से 96.24 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। अब अगर हम वापस से घरेलू शेयर बाजार की बात करते हैं, आपने कहा बाजार रेंज बाउंड बना हुआ है, ट्रिगर की आपने बात करी, क्या बाजार में, देखिए अगर हम ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स की बात करते हैं, तकरीबन 2200 कंपनियों के शेयर आज पॉजिटिव में रहे, लेकिन तकरीबन 2021 कंपनियों लगभग लगभग बराबर से ही रहे, और मोटे तौर पे अगर सेंसेक्स पैक की बात करते हैं तो 30 में से 21 कंपनियां पॉजिटिव में रही। हालांकि अगर आंकड़ों को देखें तो शायद जो सेंसेक्स के आंकड़े हैं वो वेटेज की वजह से हमको नेगेटिव में नजर आ रहे हैं। क्या बाजार को अभी जो चलने के लिए जो आप ट्रिगर की बात कर रहे हैं, वो ट्रिगर कहां छुपा हुआ है, कहां दबा हुआ है, या क्यों नहीं आ पा रहा?
1: देखिए, बाजार हमेशा दो तरह के ट्रिगर्स पे काम करता है। पहला ट्रिगर आंकड़ों का ट्रिगर है, जहां कुछ बेहतरीन आंकड़े आ रहे हैं। जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन के आंकड़े हों, ग्रोथ के आंकड़े हों, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स के आंकड़े हों, इन्वेस्टमेंट के आंकड़े हों, और ये वो समय नहीं है जब कुछ आंकड़े आ रहे हों, या फिर आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी में कोई फैसला लिया गया हो, या किसी और सेंट्रल बैंक ने कोई फैसला लिया हो। दूसरा ट्रिगर जिसपे मार्केट काम करता है वो है इमीडिएट बिग इवेंट्स, मतलब क्या हलचल हो रही है देश में, विदेशों में, आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात करते रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगभग पिछले तीन चार दिन से, बल्कि उससे ज्यादा समय से ये मान सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास नहीं है। लेकिन आपने अलग अलग सेक्टर्स की बात की, आपने अलग अलग सेक्टर

0: पॉइंट्स की बात की, अगर उस लिहाज से थोड़ी सी फौरी तौर पर नजर डाल के देखें तो समझ आएगा कि आज का जो सेशन था उसमें आईटी और मेटल्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमजोर रही, जिस वजह से मार्केट पर असर दिखाई दिया। उसके अलावा बैंकिंग की अगर बात करें तो आज निफ्टी बैंकिंग इंट्राडे ट्रेडिंग में लगभग मेरे पिछले कुछ दिनों के मुकाबले देखा जाए तो सबसे ऊंचे स्तर पर गया था। लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस की तरफ नजर डालें तो जो बैंकिंग सेक्टर के जो कई बड़े प्लेयर हैं उनमें से एक दो की परफॉर्मेंस कोई इतनी खास अच्छी नहीं थी। लेकिन वहीं फिर अगर उसके बनिस्बत थोड़ा सा अगर जून जो क्वार्टर है उसके आंकड़ों की नजर उसकी तरफ देखें तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है। तो वो एक जिसे एक स्पार्क जिसे कहा जाए, चिंगारी जिसे कहा जाए, वो चिंगारी अभी शायद दिख नहीं रही है, कहीं दबी हुई है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और दो चार दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई कोई ज्यादा वॉलिटिलिटी मार्केट में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट चार दिन पहले 5000 अंक ऊपर गया था और आज जो है 2000 अंक नीचे चला गया है। लगभग 100-200 अंक इधर से उधर हो रहा है और वो भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में नहीं हो रहा है, कभी कहीं कभी ऊपर कभी नीचे।
1: तो क्या ये माना जाए कि बाजार में मतलब भरोसा तो है लेकिन वो भरोसा अभी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं जगा पा रहा?
0: जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जो बाजार के मुझे हुए खिलाड़ी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सब इंतजार कर रहे हैं, शायद टटोल रहे हैं, देख रहे हैं, आंकड़ों को पढ़ रहे हैं। जून क्वार्टर के आंकड़े जो आ रहे हैं उनकी तरफ नजर है, सरकार की जो पॉलिसीज नीतियां जो है उनके क्या फ्यूचर इम्पैक्ट हो सकता है उस पर नजर है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें किस तरह का मोड़ आ सकता है उस पर एक नजर है।
1: इसकी आपने बात करी सरकार के जो नतीजे हैं, देखिए सरकार ने दबे तौर पर ही या सीधे सीधे ना सही मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के आंकड़ों को देखते हुए उन्होंने एमएसएमई के लिए ईसीएलजीएस स्कीम वापस से लागू करी जो कोरोना के समय पर लागू की गई थी। क्या इस तरह की चीजें, ब्याज दरें लगभग लगभग अपने जगह पर स्थिर है या उसमें कहीं ना कहीं और गिरावट ही है? बैंकों ने भी अपने ब्याज दरों में एक आध बैंक ने कुछ 5-10 पैसे का जरूर इजाफा किया है, अदरवाइज नहीं है। क्या ये सारी चीजें उद्योग जगत के लिए या जो हमारे मझोले स्तर है एमएसएमई सेक्टर है जहां से बड़ी मात्रा में हमको रोजगार भी मिलता है और उत्पादन भी मिलता है, उनको रिवाइव करने की एक सदी हुई का प्रयास है जिसका असर देखने को मिलेगा? आपने बात करी कि पहली तिमाही के बहुत सकारात्मक या बहुत उम्मीद वाले नतीजे नहीं आ पाए, ऐसी स्थिति में ये नतीजे कुछ या ये कदम जो है वो कुछ स्पार्क पैदा करने में सक्षम होंगे?
0: जी बिल्कुल, और ये एक इसे मैं टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी कहूंगा, क्योंकि केवल और नतीजे सकारात्मक जरूर है लेकिन वही आपने कहा कि वो चिंगारी नहीं पैदा कर पा रहे हैं। लेकिन ये एक टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर बाजार की नजर जरूर है और एमएसएमई सेक्टर को इस तरह का और बढ़ावा देना, इस तरह की स्कीम्स लेके आना, उसको न केवल डोमेस्टिक लिहाज से बल्कि हमको इंटरनेशनल नजरिए से भी इसको देखना पड़ेगा। हमने हाल फिलहाल में कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं अलग अलग देशों के साथ, यानी कि हम अपना सामान बाहर भेज पाए, हमारे सामान की वैल्यू बाहर ज्यादा हो, और उसके लिए एमएसएमई सेक्टर एक बैकबोन की तरह काम करता है, ना केवल इंटरनल सप्लाई के लिए बल्कि हम जब एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो उसके लिए भी, तो उसको बढ़ावा देना लाजमी है और इसीलिए सरकार की तरफ से बार बार इस तरह का इंटरवेंशन होता है खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो उसके नतीजे भी बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं, बहुत जल्द से मेरा मतलब 3 से 6 महीने का समय हमें लेकर चलना चाहिए।
1: एक चीज और संक्षेप में यहां आपसे मैं जानना चाहूंगा, एमएसएमई सेक्टर के लिए इतनी बात करी, ब्याज दरें लगभग लगभग अपनी जगह पर स्थिर हैं और अब वो कहां मानसून भी शुरुआती लड़खड़ाते कदम के बाद कहीं ना कहीं सधा हुआ नजर आना शुरू हो गया है, उसके सेक्टर में थोड़ी सी शुरुआती कमी नजर आई थी, ये सारे सेक्टर अभी मिलकर वो स्पार्क जगाने में क्यों नहीं सक्षम हो पा रहे?
0: देखिए क्यों का जवाब तो हमें थोड़ा मुश्किल नहीं है मैं कहूंगा, लेकिन क्यों का जवाब बहुत स्पेकुलेटिव हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हालांकि आपने मानसून का जिक्र किया, मुझे लगता है कि थोड़ी सी जैसा कि आपने कहा कि शुरुआती दौर में मानसून लड़खड़ाई जरूर है, अब थोड़ा सा जरूर जैसे कहा जाए पटरी पर मामला है, लेकिन डेफिसिट जो है उसको भी कवर करना जरूरी रहेगा और मानसून हमारे देश में खासतौर पर कृषि क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है और कृषि क्षेत्र की ग्रोथ से और भी कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा और इसीलिए मैंने कहा कि सरकार की जो पॉलिसी होंगी, सरकार के जो फैसले होंगे उन पर जरूर इन्वेस्टर्स की नजर पैनी बनी रहेगी, क्योंकि कदम दर कदम जो पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा सा डायनेमिक जिस तरह से रखा गया है उसी डायनेमिज्म की जो उम्मीद है वो शायद बाजार को, वो शायद इन्वेस्टर्स को हमेशा हर सेक्टर में बनी रहती है, क्योंकि बाजार की उम्मीद हमेशा रहती है कि अच्छा कहां मिलेगा।
1: चलिए उम्मीद करते हैं कि जो मानसून सत्र जो आम तौर पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं धीमा माना जाता है, उसके बाद दूसरी तिमाही के बाद नतीजे बाजार से भी और कंपनी जगत से भी अच्छे नजर आएंगे। नजर डाल रहे हैं एशिया शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज मजबूती का दौर रहा। ताइवान का ताइएक्स 4.2%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.5%, जापान का निक्केई 3.3%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.8% और सिंगापुर स्ट्रेट टाइम सूचकांक 8% की बढ़त से बंद हुए। हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 0.5% की गिरावट भी नजर आई। विशाल, अगर पूरे तौर पर देखें एशिया और अमेरिका और अपने घरेलू बाजार को, शेयर बाजार की अगर हम बात करें, हमारे बाजार में कहीं ना कहीं मोटे तौर पर, चाहे अंकों के तौर पर, आंकड़ों के तौर पर गिरावट नजर आई, एशियाई बाजारों में लेकिन वहीं वो एक ठीक ठाक मजबूती नजर आ रही है। क्या जो मिडिल ईस्ट एशिया पे जो क्राइसिस है, क्या हम मान चुके हैं या सारी अर्थव्यवस्थाएं मान चुकी हैं कि ये तो अभी थमने वाला नहीं है, लंबे समय तक चलेगा, उसको हमने एडजस्ट कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया और अब उसके साथ आगे बढ़ने के लिए सब तत्पर है, या अभी भी बाजार इसके प्रति सेंसिटिव तो है लेकिन ओवर सेंसिटिव नहीं है?
0: देखिए, मैं यहां थोड़ा सा डिफर करता हूं, क्योंकि इस मसले पर बाजार सेंसिटिव भी रहेगा और ओवर सेंसिटिव भी रहेगा। अगर आपको 2-4-5 दिन या हफ्ता, एक हफ्ते की ट्रेडिंग नंबर्स में अगर उस तरह का इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब भूल गए हैं या सबने मान लिया है कि इसके साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि वो संभव नहीं है। एनर्जी सेक्टर में ऐसा संभव नहीं है कि आपके जो मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग जो बास्केट है, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहां इस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे। ऐसा नहीं है कि वहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, वहां कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलते रहे हैं और लगभग हर कुछ साल बाद कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, लेकिन इस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट और इतना लंबा उसे चलना और खासतौर पे ऐसी स्थिति पे पहुंच जाना जहां पे कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा हो, यहां केवल ऑयल प्रोडक्शन की बात नहीं है, यहां पे सप्लाई चेन की भी बात है, इसका सीधा असर सप्लाई चेन पे दिख रहा है। तो वो जो सप्लाई चेन है उसका असर हर इकोनॉमी को, दुनिया की हर जो अर्थव्यवस्था है उसको, हर देश जो है, हर बाजार जो है उसको झेलना पड़ेगा। हां, यहां मैं आपसे सहमत हूं कि कुछ जिन्हें कहा जाए कि समझदार देश या समझदार अर्थव्यवस्था, जिनमें से हम भारत को एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, उन्होंने रास्ते जरूर ढूंढे हैं और एक तरीका जरूर ढूंढा है कि हम किस तरह से माफ कीजिएगा, किस तरह से शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में इस तरह की जो मुसीबत है उसको उससे निपट सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसका समाधान निकालना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी निकाला जा सके उतना बेहतर है।
2: Alright, moving on to the next big story of the day. US President Donald Trump has announced a 50% tariff on a range of Canadian imports, accusing the country of continuing to discriminate against American products. The White House said the new duties will take effect in 30 days. US President Trump's latest move has led to fears of a deepening trade war between the two close allies, as the relationship between Trump and Canada's Prime Minister Mark Carney continues to deteriorate. Vishal, what could be the impact of such an announcement on stock markets worldwide?
0: Well, the tariff war unleashed by President Trump has a lot of impact on markets across the world, economies across the world as well. And, these are fresh salvos in that conflict, the trade tariff conflict. But looks like, Canada has also made it very clear earlier that they're not going to bow down to any unrealistic demands or any undue pressure as well. But both sides largely understand one aspect also, that they will require each other. They are neighbors and they've been close trading partners over decades and centuries as well, so something which they can't wish away. There is always a meeting ground, and hopefully both sides will reach that meeting ground. But in terms of impact, I'm pretty sure that there will be some negative impact on the market, specifically in US, in Canada, and in European markets as well. But it's unlikely to have too much of a bearing on Asian markets, and specifically us out here in India.
1: Never do लेते हैं कुछ और खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मकदूनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोडाना के साथ बातचीत में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। साथ ही आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, बायोटेक्नोलॉजी, पर्यटन, हॉस्पिटलिटी और फिल्म निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर भी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि भारत और उत्तरी मकदूनिया बिजनेस फोरम आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक अहम मंच भी प्रदान करेगा।
2: बैंक्स हैव मोबिलाइज्ड ओवर 20.7 बिलियन यूएस डॉलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज स्पेशल स्वैप स्कीम टिल फ्राइडे लास्ट वीक। The scheme was operationalized on 8th of June. According to RBI's data issued yesterday, of the total deposits, banks received 17.4 billion US dollars through foreign currency non-resident FCNR bank deposits. Nearly 2 billion USD were raised through overseas foreign currency borrowings or OFCBs and over 1.3 USD through external commercial borrowings. RBI had announced this conceptual swap facility with a view to strengthen India's balance of payments and incentivize capital inflows. The swap facility for FCNRB deposits will remain available until 30th of September 2026. Vishal, can this rise in FCNR deposits be seen as a sign of growing global confidence in India's economic stability?
0: That is one way of looking at it. The other way of looking at it is that the RBI has given the opportunity or the option to non-resident Indians, NRIs or OCI card holders and all these people, those who have gone abroad to various countries, made their mark, have been earning a significant amount of money, to go ahead and park their money, or rather invest their money within the country, that is India, with very, very significant options provided in the FCNRB. Because largely, if you look at FCNRB, it's more of a fixed deposit for the NRIs. Now, that's a very interesting aspect. It's like this, that say, for example, I'm settled in United States or some other country. I have earned, say, $1 lakh. That is my earning. Now, there are currency fluctuations as well. So what RBI says is, it gives me an option through this particular scheme that I can go ahead and invest or park my money in Indian banks for a specific tenure, maybe 1 year, maybe 2 years, and the maximum is 5 years. Now, what do I get out of it? My money will be parked in US dollars if I have earned it in US dollars. If I have earned it in, pound sterling, it'll be parked in pound sterling. So there's no change of currency. So basically, I then save money on exchange rates as well. That is one. Two, when I want to, get my money back, I'll get the principal and the interest as well to my overseas account, get back the entire 100% of that money. There is no tax as well on this. That is one. There is one condition though, which RBI has imposed, and that condition is really insignificant and important from both point of view. That is that you cannot withdraw before 1 year. There is a period, holding period, that is minimum is one year. Now, what do we get out of it? What do RBI gets out of it? We get foreign currency. Then there is a swap facility which banks can utilize. The other banks can utilize. They can, park their dollars with the RBI, get rupee in that. So RBI is Reserve Bank of India gets a lot of maneuvering and elbow room as far as currency fluctuations are concerned. Our foreign currency target is achieved. The coffers are much more bigger, and as far as investors are concerned, it's a win-win situation for them, so that their money is safe in their country of their origin. That's one, and they can get it back as and when they want it without any tax.
2: All right, perfect. Global crude oil prices gained today. Brent crude was trading over 1.7% up at $90.76 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading nearly 1.7% up at $83.87 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion

0: market, 24 karat gold was trading 0.9% up at 1,43,280 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.3% up at 2,23,620 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 0.9% की बढ़त से 1,42,608 रूपये प्रति ग्राम के स्तर पर रहा. चांदी भी 2.1% की मजबूती से 2,23,100 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती नजर आई. विशाल, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें जो कि शायद बहुत हॉट टॉपिक है, वापस से वही $90 के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये अभी आपके हिसाब से ठीक है, स्पेकुलेशन की बात नहीं, लेकिन एक विशेषज्ञ के तौर पे आप कहां देखते हैं ये कितना अभी हमारे दर्द का कारण बन सकता है? दूसरा, इसी के साथ साथ आमतौर पर ऐसे देखा था डॉलर मजबूत होता है सोना गिरता है, उधर डॉलर भी मजबूत है लेकिन सोने ने भी धीरे धीरे अपनी चाल बढ़ानी शुरू करी है. पहले तेल फिर सोना.
2: जी बिल्कुल, तो पहले तेल की बात करते हैं. तेल पे नजर रखनी बहुत जरूरी है और मेरा मानना है कि जिस हिसाब से कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं, जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स चल रही हैं मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में ईरान और अमेरिका के बीच, मुझे लगता है कि ये जो चाल अब क्रूड ऑयल के ऊपर की तरफ चली है वो थोड़े दिनों तक बरकरार रह सकती है और वो दर्द का कारण जरूर बन सकता है.
1: $100 के ऊपर तो नहीं जाएगा.
2: मैं ये नहीं कह सकता नहीं जाएगा, लेकिन उम्मीद तो हम सब करेंगे कि 95 से भी ऊपर ना जाए. और रही बात सोने की, तो आपने सही कहा, ऐसा आमतौर पर देखा जाता है, लेकिन इस वक्त वो जो दोनों हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स पे दोनों चीजें काम कर रही हैं, डॉलर और सोना. लेकिन सोने को लेकर मैं जरूर कहूंगा कि मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि सोने में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल सकता है और उस पर जरूर.
1: लगभग सभी धातुएं जो है काफी मजबूत स्थिति में हैं, ये कुछ क्या ये स्वाभाविक है या कुछ और भी वजह आपको नजर आती है?
2: अभी हमारे पास समय कम है, हालांकि ये बहुत बड़ा और बहुत वृद्ध टॉपिक है, इस पर चर्चा जरूर की जा सकती है, लेकिन हाँ मैं जरूर कहूंगा कि इस वक्त सभी धातुएं एक मजबूत स्थिति पे खड़ी है और उनका रिएक्शन अब मजबूती के ग्राउंड से ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ मुझे जाता नहीं दिख रहा.
1: चलिए विशाल कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा हमारे श्रोताओं को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,188. मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज. एंड दैट्स ऑल इन टुडेज एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा. सी यू टुमारो, अंटिल देन गुड बाय.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
1: अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे मार्केट मंत्रा, आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर। अब पेश खिदमत है प्रोग्राम तामिल इरशाद। इसमें सामीन के मेल्स की बुनियाद पर हम फिल्मी नकमे पेश किए जाएंगे। समाप्त फरमाइए प्रोग्राम तामिल इरशाद। ताहिर हसन का आपकी खिदमत में पुरखलूस आदाब।

गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। अनूपगढ़ राजस्थान से मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल। कृष्णा करोनी हांसी से सुभाष योगी, राजू मिगलानी। खाजीपीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान, मंजू अशरफ। और ये मेल आया है राजनगर कांति निकेतन से कांति गुप्ता, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता का।

ममता से अगला गीत है जो गाया है लता मंगेशकर ने। फरमाइश आप सबकी है, गांव श्रीनगर गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास रोशनी और शगुन, कड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पक चौहान, तेलंगाना निजामाबाद से शेख राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, बिलासपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार प्रियाश ओमी, उत्तर नगर दिल्ली से कमला रानी, गीतिका खोरवाल, बोधराज खोरवाल, महेश्वर नगर नवेल महाराष्ट्र से पीएस नौ वकार निर्मला विशाल, सानगर आर्य महाराष्ट्र से नरेंद्र मिर्गे, प्रदर्शनी मिर्गे, प्रियंका पांडे, सिद्धेश्वर नगर यावतमाल से पंजाब रामटे के यशोधरा शर्वा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और नर्मदा पार्क मौला वेदा से मुस्ता अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल।

जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण चंद्र किरण छाया। कृष्ण निवास नागपुर से हर्षवाल वैष्णवी। बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत। अर्जुन भारती पहली भुवनेश्वर देवी। कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज बिट्टा बजाज। खंडवा मध्य प्रदेश से अरुण जोशी तनुजा जोशी ध्रुवी जोशी फाल्गुनी जोशी। अनिल खुसरो रोड डोडवारा से डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम शबनम अनवर भुवन प्रकाश गौतम।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तामिल इरशाद। ओपन एयर ने जो अगला गीत है उसकी मौसिकी तैयार की है और लिखा है एस एच बिहारी ने, गाए है मोहम्मद रफी और अशरफ भोसले ने और फिल्म है कश्मीर की कली। पसंद आप सबकी है। बाड़ीला बस्तर छत्तीसगढ़ से शिव प्रसाद, देव प्रसाद, मोहित कुमार, देवदास, उमीन और कुमारी युवती देवदास। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन, आशा देवी, भानु प्रिया। आकोट से विनायक, मंगला और शुभम। गजानंद गेले, नवदीप खेले, मधुकर येले, ये हैं सिद्धार्थ नगर दरियापुर भाबली से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेचा, पूरम गगनेचा, दिनाश और दिशानी और निमित आहूजा। ऑक्सीजन पार मोहन नगर अमरावती से सिद्धार्थ, अर्चना, हिरामन प्रणय। रघुवीर नगर से दिलावर खां, हसीना बानो, एमिसा नायब।

भी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और एसके पप्पी।

0: तेजी और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है या वो तबाह हो गए हैं, जिससे काफी माली नुकसान भी हुआ है। पाकिस्तान में जारी मानसून सीजन के बारिश से मुतालिक हादसात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। मुकामी मीडिया के मुताबिक लांडी कोटल में 2 नौजवानों की लाशें बरामद की गई हैं, जबकि जमरूद के मुख्तलिफ इलाकों में एक खातून और एक बच्चा समेत 4 अफराद की लाशें मिली हैं। वहीं मर्दान में मूसलाधार बारिश के दरमियान एक घर की छत गिर जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि बाजौड़ में एक शख्स हलाक हो गया। इस तरह मरने वालों की तादाद 9 हो गई है। भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात खित्ते, मशरकी राजस्थान और वस्ती महाराष्ट्र में अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, बिहार, गंगाई मगरबी बंगाल, उत्तराखंड, विदर्भ और मगरबी राजस्थान में भी अगले 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इस दौरान ताजा बारिश ने आज दिल्ली के लोगों को कुछ राहत दी। महकमा मौसमियात ने दिल्ली में मुतल अब्र आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया है। ईरान और अमरीका ने लगातार 10वें दिन भी एक दूसरे पर हमले जारी रखे, जिससे स्ट्रेटजिक एतबार से अहम अबनाए हुरमुस पर कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। इस दौरान एक ईरानी अफसर ने पाकिस्तान में सालिसकारों के साथ आज मुलाकातें की, जहां सफारतकार अमरीका और ईरान के दरमियान टूट चुके आर्जी समझौते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले अमरीका ने जुनूब मगरबी ईरान के शहर खोरमोज को निशाना बनाया, जबकि उर्दून, कुवैत और बहरीन से ताजा ईरानी हमलों की खबरें मिली हैं। ये हमले अमरीका ईरान तनाजे पर बढ़ती इलाकाई तकसीम की निशानदेही करते हैं। 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले FIH आलमी कप के लिए भारतीय हॉकी ने मर्दों के 20 मेंबरों का ऐलान किया है। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी हरमनप्रीत भारतीय टीम की सरबराही करेंगे। मिडफील्डर खिलाड़ी मनप्रीत सिंह अपने नए तजर्बे की बुनियाद पर खेल में दिलचस्प मुजाहरा करेंगे। भारत इंग्लैंड के साथ पोल डी में रहेगा। पाकिस्तान और वेल्स अपने सभी पोल स्टेजेस के मैच नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन में खेलेंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में आलमी स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले राउंड में पहुंच गए हैं। चैंपियनशिप में भारतीय खातून खिलाड़ी अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की लिली विल्सन के खिलाफ आज 11-2, 11-1 और 11-3 से जीत हासिल करके अगले राउंड में दाखिला हासिल कर लिया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। भारत और शुमाली मकदूनिया ने स्कोपजी में सदारती सतह की बातचीत के बाद तजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इतफाक किया है। अफगानिस्तान के नूरिस्तान सूबे के पारून शहर में तबाहकुन सैलाब से कम अज कम 20 अफराद हलाक और दीगर 80 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। अबनाए हुरमुज में बढ़ती कशीदगी के पेश नजर अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले किए हैं। और हॉकी में आइंदा माह शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मुझे पेश है तंग का बाकी हिस्सा।

फिल्म चौधरी के चांद से ये नगमा आपने अभी सुना, जिसे गाया था मोहम्मद रफी ने और लिखा था शकील बताइन ने और मौसीकी से सवारा था रवि ने। और अगला नगमा आपको जो सुनेंगे आप, फिल्म है गंगा जमुना और गाया है लता मंगेशकर ने, शकील बताइन ने लिखा है और नौशाद का म्यूजिक है यानी कि मौसीकी है। सुनने वाले आप सब हैं किशोर नगर अमरावती से हीरा मिन शिंदे, शीला देवी शिंदे, सिद्धार्थ शिंदे, रेलवे रोड गंज डोंडवारा से नजमा बेगम, मोहम्मद कलीम, बीवी फातिमा और अगला मेल हमारे पास आया है मोहरा दरवाजा एटा से नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद सुहेल हसन अब्बासी, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, राजधानी रायपुर से नीलू बेग, नीलम, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, मजनू गठीला से कमल बालूजी बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, नागपुर महाराष्ट्र से लिखते हैं कमल सहानी, पिंकी सहानी।

राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी से शाहजहांपुर से मनमोहन राजावत मधु राजावत राशिद और मेरे पास एक महिला आया हुआ है आदर्श नगर मालौट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा निवान शर्मा शामनगर यावतमाल से राहुल मुनव्वर सरला मुनव्वर देवी प्रियांशी और खरगोन ने बढ़वा जिला खरगोन से प्रवीण श्रीमती मीना श्रीमती रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद बल्लू निषाद बंडा सागर से कुलदीप सिंह राठौर हरविंद सिंह राठौर और जसवंत सिंह राठौर रोहतास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे सुनीता शिंदे यशराज शिंदे का आप सबने फरमाइश की है। शंकर जयकिशन का सजाया हुआ मोहम्मद रफी गया फिल्म सूरज से ये

नगमा है फिल्म मेरा साया का और गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने, मौजाही से सवारा है मदन मोहन ने और पसंद आप सबकी है। यवतमाल से अनिल उषा अनुश्री धनुश्री, सांगशहर राजस्थान से रामकुमार चंद्रकला, माला हरियाणा से राजेंद्र कुमार मलकीत कौर आरती रानी, राम गोविंद मुझा वाली कानपुर राजस्थान से राजू टुटेजा उर्मिला शिव सेठी और मकरानिया सागर से नासिर सिद्दीकी सिद्दीकी और शहरी सिद्दीकी।

आप समाप्त फरमा रहे थे प्रोग्राम तामिल रिशाद और मैं था आपके साथ ताहिर हसन। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में, समाप्त फरमाइए।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों के नए अध्याय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही है सोनू सूद।
1: माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वी यूरोप के तीन देशों मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कल मोल्डोवा की यात्रा के बाद आज श्रीमती मुर्मू नॉर्थ मैसेडोनिया पहुंची। दोनों ही देशों में किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये अब तक की पहली आधिकारिक यात्रा है। इसके बाद वे रोमानिया जाएंगी, जो 30 वर्षों के अंतराल के बाद भारतीय राष्ट्रपति की यात्रा होगी। इन यूरोपीय देशों से हमारे द्विपक्षीय संबंधों और समूचे यूरोप के साथ हमारे संबंधों के लिए इस यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, पूरी आकाशवाणी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: जी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: एम्बेसडर सज्जनहार, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने जो तीन राष्ट्रों की यात्रा है उसके दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया गई और उन्होंने आज मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों ने प्रेस ब्रीफिंग भी एड्रेस की, वहां के जो पार्लियामेंट को एड्रेस किया द्रौपदी मुर्मू जी ने। सो आप हमें बताएं कि इस पूरी विजिट को आप कैसे देखते हैं और वर्तमान परिदृश्य में इसका महत्व क्या है?
2: मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया है, ये दोनों देश आजाद हुए थे जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, उसके बाद इनको स्वतंत्रता मिली और तब से भारत हमेशा इनके प्रगति के लिए, इनके विकास के लिए इनके साथ काम करता रहा है। परंतु कोई ऐसी उच्च स्तरीय यात्रा दोनों तरफ से कहीं नहीं हुई है। परंतु दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो रोमानिया तो यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य है, 2007 से वो सदस्यता उसको मिली हुई है, और ये जो दोनों देश है, मोल्डोवा है और नॉर्थ मैसेडोनिया है, ये दोनों जिनको कहा जाता है कैंडिडेट कंट्री, मतलब ये यूरोपियन यूनियन का जो एक बड़ा गुट है उसमें 27 देश शामिल है और बहुत तरीके से ये साथ में मिलकर काम करते हैं, और उसमें कैंडिडेट कंट्रीज ये है मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया, मतलब इनकी बातचीत शुरू हो गई है और ये कुछ सालों में ये सदस्यता भी उनको प्राप्त हो जाएगी। और ये सभी को ज्ञात है, जो इस साल के शुरू में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार समझौता हुआ है, ट्रेड डील हुई है, जिसको जब वहां की यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट भारत में आई थी तो उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर देखा जाए यूरोपियन यूनियन की करीब 21-22 ट्रिलियन डॉलर की उसकी अर्थव्यवस्था है, भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर अर्थव्यवस्था है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया के लिए तो है ही, क्योंकि रोमानिया तो अब पहले ही ये इसका सदस्य हो चुका है।
1: जी।
2: जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है 2014 में, हमने एक जो इतना महत्व यूरोप को नहीं दिया जाता था पहले जितना की दिया जाना चाहिए था, और अब हम देख रहे हैं जो उसको महत्व दिया जा रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या विकास का क्षेत्र हो या आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उनके साथ हम काम कर रहे हैं, और देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो या इतना ज्यादा बड़ा नहीं हो, सभी के साथ हम अपने संबंधों को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं।
1: और वहां की जो प्रेसिडेंट है गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा, उन्होंने अपना जो एड्रेस था, प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि भारत हेरिटेज और एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर का बहुत ही अच्छा संगम है, और उन्होंने भारत को 21st सेंचुरी की सक्सेस स्टोरी बताया। ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है और कितना आपको स्कोप दिखाई देता है आपसी सहयोग का, जैसा आप कह रहे थे ट्रेड में या इन्वेस्टमेंट में, जो भी इकोनॉमिक का कोऑपरेशन है उसमें कितना आपको स्कोप दिखाई देता है?
2: जी, मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे आपने कहा नॉर्थ मैसेडोनिया की जो राष्ट्रपति जिन्होंने इसके बारे में कहा, तो हमारा तो अब पिछले 10-12 साल से हमारा जो फोकस रहा है सोनू जी, वो ये रहा है जो 3 T's जिसे कहा जाता है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म। टूरिज्म हो गया, मतलब उसमें पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी हो गए, लोग एक दूसरे के देश में जाएंगे, उनकी मुलाकात होगी, उनके संबंध और अच्छे होंगे, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी बनेगी, और इससे व्यापार को भी सहारा मिलेगा, व्यापार को भी नई ऊर्जा और नई शक्ति मिलेगी। भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व में अगर हम देखें तो कहा जाता है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, और

0: अगर 5-6 साल में देखा जाए सोनू जी, पूरे विश्व में बहुत आपदाएं आई हैं, बहुत विपदा आई है। अगर आप कोविड-19 पेंडेमिक से देखें तो पूरे विश्व में बहुत त्राही त्राही मच गई थी, बहुत असंतुलन हो गया था, असमानता आ गई थी, बहुत आर्थिक तरीके से बहुत देशों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। परंतु फिर भी भारत ने, चाहे वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो, चाहे वेपनाइजेशन सप्लाई चेन का रहा हो, सबके साथ जूझते हुए भारत की अर्थव्यवस्था आगे अच्छी तरीके से बढ़ती रही। उसके बाद हमने देखा है रूस यूक्रेन का युद्ध आया, हम एनर्जी पर कितना बाहर से ऊर्जा लाने में, तेल गैस लाने में हम कितना डिपेंडेंट हैं, क्योंकि 85-90% तेल हमारा बाहर से आता है, फिर भी हमने अपनी सारी जो हमारी जरूरतें थी उसे पूरा किया और अपनी आर्थिक व्यवस्था को कहीं चरमराने नहीं दिया। और यह बात अभी भी हुई जब ईरान और अमेरिका और इसराइल का युद्ध चल रहा है, तो इसमें अगर देखा जाए चाहे कितना उथल पुथल रहा हो पूरे विश्व में और भारत के लिए भी ये जो हालात थे कुछ इतने सामान्य, कुछ इतने अच्छे नहीं थे, परंतु फिर भी भारत बहुत ही तेजी से आगे अग्रसर करता रहा। और भारत ने ये कहा है कि जब हमारा विकास होगा तो हम सभी विकासशील देशों को अपने साथ लेकर चलेंगे
1: जी।
0: तो इसीलिए उनको ये एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, जो भारत के साथ अगर वो काम करेंगे, भारत के साथ अगर अपने संबंधों को आगे ले जाएंगे, तो ये बिल्कुल ही विन विन सोल्यूशन होगा जिसमें उन देशों का फायदा बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाला है।
2: इनफैक्ट उन्होंने कहा कि अभी बायलैटरल ट्रेड 133 मिलियन डॉलर्स है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अपने संबोधन में कहा, और इसको दोगुना करना है और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बहुत सारे जो फोकस एरियाज जो डिस्कस हुए, क्या लगता है आपको कौन से सबसे ज्यादा प्रमुख ऐसे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जहां पर आपको लगता है कि आपसी जो कोऑपरेशन है और ट्रेड है वो बढ़ सकता है?
0: देखिए, 2-3 चीजें मैं इसमें आइडेंटिफाई करना चाहूंगा। एक तो मैं समझता हूँ जो फार्मास्यूटिकल्स का एक एरिया है, क्योंकि हर देश को दवाइयां चाहिए। भारत, चाहे मैंने कोविड-19 का जिक्र किया तो उसमें हम पूरे विश्व की फार्मेसी तो बने हुए थे, पूरे विश्व की हम वैक्सीन कैपिटल भी बनकर उभरे उस समय। तो इसीलिए अब हमारे यहाँ से चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो या कोई भी देश हो, अलग दवाइयां बहुत तो मात्रा में जाती हैं, जेनेरिक मेडिसिन, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना ब्रांड वैल्यू लेकर इन दवाइयों के दाम बढ़ा देते हैं, जिससे कि दवाइयां वो जो आम मर्रा के जो लोग होते हैं उनके पहुंच से वो बाहर हो जाती हैं। तो भारत ने बहुत ही हाई क्वालिटी रीजनेबली प्राइज्ड जेनेरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करने शुरू किए हैं और बहुत ही मात्रा में हम बहुत देशों में इसका निर्यात कर रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स को मैं एक समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। दूसरा एग्रीकल्चर। हालांकि देखिए, नॉर्थ मैसिडोनिया एक पहाड़ी देश है, ज्यादा वहां पर जिसे कहा जाए एरेबल या कल्टिवेटेबल लैंड नहीं है, परंतु फिर भी वहां पर एक जो एग्रीकल्चर है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और तीसरा मैं समझता हूँ हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज का जो हुआ, आजकल जो चल रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स का, इसमें भारत नए कदम उठा रहा है, नई ऊंचाइयां पा रहा है। और जो ये देश है जहां पर कि ज्यादा एग्रीकल्चर को नहीं किया जा सकता और टेक्नोलॉजी में ये देश आना चाहते हैं, तो मेरे विचार से उस क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण भारत योगदान कर पाएगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा था टूरिज्म का, क्योंकि टूरिज्म एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंटरप्राइज है, इंडस्ट्री है, क्योंकि और यहाँ पर मैं इसके आसपास के देशों में सोनू जी गया हूँ, मैं मोंटेनेग्रो में गया हूँ, क्रोएशिया में गया हूँ, और वहाँ का जो टूरिज्म है बहुत ही अच्छा उन्होंने डेवलप किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से भारत के जो लोग हैं वो भिन्न भिन्न देशों में जाते हैं टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए, तो यहाँ भी बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता है।
2: एक सस्टेनेबिलिटी पर भी काफी बल दिया गया और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत का है, या हमारा जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, डिजास्टर रेजिस्टेंट क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसको ज्वाइन करने की बात हमारी राष्ट्रपति ने कही और उन्होंने कहा कि हम ज्वाइन करेंगे। ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है? आपको लगता है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबिलिटी में भी एक ग्लोबल लीडरशिप का रोल अपनाता नजर आ रहा है?
0: जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए दो चीजें मैं इसमें कहूंगा, एक तो क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट

0: सस्टेनेबिलिटी और पूरे पर्यावरण की संरक्षण करना, ये तो एक पूरे विश्व के लिए जिसे कहा जाए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनकर उभरा है
1: जी, जी।
0: जो सभी देशों को ये करना पड़ेगा, नहीं तो जो हमको ये पूरा विश्व रोहर में मिला है
1: जी।
0: ये फिर हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं छोड़ पाएंगे, तो इसीलिए इसके बारे में तो मिलकर बात करना, सहयोग करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है
1: जी।
0: दूसरा है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो भारत एक लीडर के रूप में, नेता के रूप में उभरा है, क्योंकि अगर आप देखते हैं जो COP21 जो पेरिस अकॉर्ड हुआ था 2015 में, जब भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया था, और अब उसमें करीब 100 से ज्यादा देश जुड़ गए हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा जो नॉर्थ मैसेडोनिया या मोल्डोवा या रोमानिया इसी प्रकार से डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, जैसे कि देश आपको अफ्रीका में या एशिया में मिलते हैं, परंतु फिर भी ये वाली जो तकनीक है, ये वाली बहुत नई नई तकनीकें बनकर उभर रही हैं, और इसमें भारत ने अपने जो कमिटमेंट्स हैं पेरिस अकॉर्ड में, 2015 के पेरिस अकॉर्ड में, हमने अपने समय आने से पहले ही हमने उनको पूरा कर लिया। हमारे जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स थे जो हमें 2030 तक प्राप्त करने थे, उसको हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है, और ये ISA हुआ या फिर CDRI कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये करने में दोनों देशों का बहुत फायदा होगा, और अगर नॉर्थ मैसेडोनिया मोल्डोवा इसमें ज्वाइन करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा।
2: जो उन्होंने पीस की बात करी, मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा देने की बात करी, और यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उनमें रिफॉर्म्स की बात की, ये कितना आपको इम्पोर्टेंट पहलू लगता है?
0: जी सोनू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, क्योंकि हमने देखा है एक तो यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पूरे विश्व में योगदान है वो एकदम बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि कोई संयुक्त राष्ट्र संघ की बात नहीं सुनता है, क्योंकि देशों के पास वीटो पावर है, वहां पर रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो रूस के पास वीटो पावर है, यहां पर अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है तो अमेरिका के पास वीटो पावर है, तो कोई भी नहीं सुनता है, और आजकल हम देख रहे हैं यूनिलैटरलिज्म का जमाना आ गया है, माइट इज राइट का जमाना आ गया है, और मल्टीलैटरलिज्म के बारे में कोई ध्यान नहीं करता है, तो उसके बारे में बातचीत करना, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, और इससे जैसे भारत ने हमेशा कहा है, जब तक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलरली UN सिक्योरिटी काउंसिल का, संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी काउंसिल में जब तक उसका सुधार नहीं होता, उसको आज की रियलिटी में नहीं लाती, क्योंकि वो 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था तो तभी के जो हालात थे उसी के ऊपर वो निर्धारित है, परंतु आज के हालात बहुत बदल चुके हैं, तो उसको जिसे कहते हैं मूविंग द टाइम्स, उसे करना चाहिए, वो अभी उसने नहीं किया है, और इसी के लिए अगर ये दोनों देश और उसके साथ साथ और भी देश साथ मिलकर आते हैं तो उससे पूरे दुनिया का इसमें कल्याण होने वाला है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका एम्बेसडर सज्जन हार, आप हमारे साथ जुड़े, और पूर्वी यूरोपीय यात्रा जो हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं, उसके अहम पहलुओं पर हमें जानकारी दी।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों के नए अध्याय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: आप समाप्त फरमा रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, और पेश खिदमत है प्रोग्राम बस मौसिकी। इसमें उस्ताद यूनुस हुसैन खां की आवाज में राग मोहा केदार के ख्याल पेश किया जाएगा। समाप्त फरमाइए प्रोग्राम बस में मौसिकी।

कहानी आप सुन रहे थे फिल्म 16 साल से एक गीत जिसे गाया था हेमंत कुमार ने, और प्रोग्राम के आखिर में सुनिए कैल साइकिल का क्या हुआ जिंदगी फिल्म का ये गीत।

0: उसके साथ ही ये आखिरी शब्द प्रोग्राम अब खत्म होता है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, आलमी खबरों के साथ मैं शाहिद हबीब। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और शुमाली मकदूनिया ने स्कोप ए में सदारती सतह की बातचीत के बाद तिजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। आमनाए हुरमुज में बढ़ती कशीदगी के पेश नजर अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले किये। अफगानिस्तान के नूरिस्तान सूबे के पारून शहर में तबाहकुन सैलाब से कम अज कम 20 अफराद हलाक और दीगर 80 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर पीओजे के में रजाकाराना बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। और हॉकी में आइंदा माह शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और शुमाली मकदूनिया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी, सियाहत, जियाफत और फिल्म साजी जैसे अहम शोबों में इश्तराक को उसत देने समेत तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने पर राजी हो गए हैं। सदर जमहूरिया स्कोपिये में शुमाली मकदूनिया की अपनी हम मनसब गोरदाना सिलीजानोस का दाओका से बातचीत के बाद मीडिया से खिताब कर रही थी। सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों मुल्कों ने अपनी मुश्तरका जमहूरी अकदार और बाहमी एहतराम पर मबनी गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात की तौसीक की है। सदर जमहूरिया ने कुदरती आफात से निमटने के बुनियादी ढांचे, आलमी हयाती ईंधन इत्तेहाद और बैन अक्वामी शमसी इत्तेहाद जैसी भारत की क्यादत वाली आलमी पहल में शामिल होने के शुमाली मकदूनिया के इरादे का खैर मकदम किया है। सदर जमहूरिया ने शुमाली मकदूनिया के अजीम तरीन कौमी हीरो गोत्से दिलशेफ को भी खिराज अकीदत पेश किया। शुमाली मकदूनिया का दौरा खत्म करने के बाद सदर जमहूरिया रोमानिया का सफर करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हालिया नीट इम्तिहान पेपर लीक मामले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज का अहद किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इकदामात कर रही है। जनाब मोदी ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से भी जाना जाता है, से खिताब करते हुए ये बात कही। मीडिया से बातचीत करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने मुल्क भर में आइंदा होने वाले इम्तिहानात में पेपर लीक की रोकथाम के सिलसिले में सभी मुतालिका फरीकों से मजबूत कोशिशों पर जोर दिया। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई कल नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन अरकान की जानिब से बार बार रखना अंदाजी के पेश नजर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान की कार्रवाई मानसून इजलास के दूसरे दिन बार बार शोरगुल की वजह से मुलतवी करनी पड़ी। अपोजिशन के शोर शराबे के पेश नजर दोनों ऐवानों की कार्रवाई 3 मरतबा मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन पार्टियां नीट पेपर लीक मामले और दीगर मामलात पर नारेबाजी कर रही थीं। रखना अंदाजी के सबब दोनों ऐवानों में वक्फे सवालात और वक्फे सिफर नहीं हो सका। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और इसके बाद प्रिजाइडिंग अफसरों ने एहतजाज कर रहे अरकान से बार बार ऐवान में नज्म व नस्क बरकरार रखने की अपील की, लेकिन शोरगुल जारी रहा तो ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। गुज़श्ता शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी पर हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद नीट से मुतालिक मामलात पर बहस की अपनी पहले की मांग से पलटने का इल्जाम लगाया। इससे कबल दिन में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दीगर पार्टी अरकान के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने लोक कल्याण मार्ग पर एहतजाज के मकाम पर कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात की। جناب گاندھی نے انہیں بتایا کہ اگر حکومت نیٹ اور دیگر معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے رضامند ہے تو وہ فوری طور پر نا احتجاج ختم کر دیں گے۔ کانگریس رہنماؤں سے ملاقات کے بعد ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے مطلع کیا کہ حکومت نے معاملے پر بحث کی مانگ قبول کر لی ہے، تاہم مرکزی وزیر نے کہا کہ جب حکومت کے موقف سے کانگریس لیڈر کو آگاہ کیا گیا تو جناب گاندھی اپنی پہلے کی مانگ سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ مزید مطالبات کرنے لگے۔ ایران اور امریکہ نے لگاتار دسویں دن بھی ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے، جس سے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم آبرائے ہرمز پر کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس دوران ایک ایرانی افسر نے پاکستان میں سالسکاروں کے ساتھ ملاقاتیں کی، جہاں سفارتکار امریکہ اور ایران کے درمیان ٹوٹ چکے عارضی سمجھوتے کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے جنوب مغربی ایران کے شہر ہرمز کو نشانہ بنایا، جبکہ اردن، کویت اور بحرین سے تازہ ایرانی حملوں کی خبر ملی ہے۔ یہ حملے امریکہ ایران تنازع پر بڑھتی علاقائی تقسیم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بھارت نے کل روسی سفارت خانے کے ناظم الامور ولادیمیر لادونوف کو طلب کیا ہے، انہیں اس مہینے کی 19 تاریخ کو ایک کمرشل بحری جہاز ایم وی گولڈن لیو پر حملے کے سلسلے میں طلب کیا گیا ہے۔ اس حملے پر 4 بھارتی افراد کی جانیں ضائع ہو گئی تھیں۔ وزارت خارجہ نے حملے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اور اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے حملوں سے بین الاقوامی بحری تجارت کی حفاظت، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچتا ہے۔ افغانستان کے نورستان صوبے کے پارون شہر میں تباہ کن سیلاب سے کم از کم 20 افراد ہلاک اور دیگر 80 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ طالبان حکام کی جانب سے ایک بیان کے مطابق پارون اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سیلاب کے پانی میں بہنے کے پیش نظر 100 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں۔ قدرتی آفات کے بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی نے کہا ہے کہ نقصان کا جائزہ لینے، لاپتہ افراد کو تلاش کرنے اور بچاؤ اقدامات میں مدد کی خاطر خصوصی بچاؤ ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ حکومت نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے، کیونکہ متاثرہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ سیلاب سے رہائشی مکانات، زرعی اراضی اور دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے یا وہ تباہ ہو گئے ہیں، جس سے کافی مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ ادھر پاکستان میں جاری مانسون سیزن کے بارش سے متعلق حادثات میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 9 ہو گئی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق لانڈی کوٹل میں 2 نوجوانوں کی لاشیں برامد کی گئی ہیں، جبکہ جمرود کے مختلف علاقوں میں ایک خاتون اور ایک بچہ سمیت 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ وہیں مردان میں موسلادھار بارش کے درمیان ایک گھر کی چھت گر جانے سے 2 بچوں کی موت ہو گئی، جبکہ باجوڑ میں 1 شخص ہلاک ہو گیا۔ اس طرح مرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر پی او جے کے میں رضاکارانہ بند اور چکا جام ہڑتال جاری ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے سی نے پی او جے کے عوام سے 23 جولائی کو ہونے والے مظاہروں میں پوری قوت کے ساتھ شامل ہونے کی اپیل کی ہے، تاکہ ان کے مطالبات کی یکسوئی کا مطالبہ کیا جا سکے اور تحریک کے دوران پاکستانی حکام کی جانب سے ہلاک کیے گئے افراد کے حق میں دعا کی جا سکے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جے اے سی نے 23 جولائی کو انتہائی اہمیت کا حامل دن قرار دیا ہے۔ جے اے سی کے رہنماؤں نے حکمرانوں کو معصوم لوگوں کے قاتل قرار دیتے ہوئے پاکستانی حکام پر تنقید کی ہے۔ مظاہرین کے مطابق احتجاج کرنے والوں کو اپنی مانگوں کا مطالبہ کرنے کے بدلے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کانگریس سے 30 اگست تک بیلجیم اور نیدرلینڈ میں ہونے والے ایف آئی ایچ عالمی کپ کے لیے بھارتی ہاکی نے مردوں کے 20 ممبروں کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے سرکردہ کھلاڑی ہرمن پریت بھارتی ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ مڈ فیلڈر کھلاڑی من پریت سنگھ اپنے نئے تجربے کی بنیاد پر کھیل میں دلچسپ مظاہرہ کریں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور شمالی مقدونیا نے اسکوپیے میں صدارتی سطح کی بات چیت کے بعد تجارت میں اضافے اور اہم شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ آبرائے ہرمز میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ اور ایران نے مسلسل 10ویں روز ایک دوسرے پر حملے کیے۔ افغانستان کے نورستان صوبے کے پارون شہر میں تباہ کن سیلاب سے کم از کم 20 افراد ہلاک اور 80 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر پی او جے کے میں رضاکارانہ بند اور چکا جام ہڑتال جاری ہے۔ اور ہاکی میں آئندہ ماہ شروع ہونے والے مردوں کے عالمی کپ کے لیے ہرمن پریت سنگھ کی کپتانی میں 20 رکنی بھارتی دستے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔
0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इसके साथ ही हमारी आज की तीसरी मजलिस की नशरियात अपने खुदाम को पहुंचती है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:30 पहली मजलिस की नशरियात के साथ फिर आज आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुप्पुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर के अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चीर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युशा नफीस और गुरुवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम गीत सुनहरे में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। इस कार्यक्रम में सुनते हैं सुनहरे दौर के वो सुनहरे गीत जब जिंदगी में ना इतनी भाग दौड़ थी और ना ही सब अपने में इतने व्यस्त थे कि किसी के सुख दुख में शामिल भी ना हो सके। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं इस बेहद प्यारे से नगमे के साथ।

दोस्तों यूं तो कुदरत ने हम इंसानों को हजारों हजारों हजार ऐसे तोहफे दिए हैं जिनके लिए हम उनका चाहे जितनी बार शुक्रिया अदा करें वो कम ही है। उन्हीं तोहफों में से एक प्यारा सा तोहफा है याद। मोबाइल चार्ज ना हो, नेटवर्क ना हो, लेकिन फिर भी हम किसी इंसान से मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, तो बस अपनी आंखें बंद करनी है और तसव्वुर में बिताए उन लम्हों में आप दोबारा जी सकते हैं, जा सकते हैं बिना किसी नेट के, बिना किसी रिचार्ज के। है ना ये कुदरत की बेमिसाल ताकत।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

दोस्तों, मोहब्बत दो दिलों को जोड़ने का एक ऐसा जज्बा है जिसमें जब मोहब्बत दोनों तरफ बराबर हो तभी वो उसे अपने मकाम तक पहुंचाने के काबिल हो पाते हैं। अगर मोहब्बत की तासीर किसी भी तरफ जर्रा बराबर कम हुई तो ऐसी मोहब्बत को मंजिल हासिल ही नहीं हो सकती। ऐसे में किसी एक का दिल टूटना लाजमी है।

जिंदगी जैसी खूबसूरत शय इस पूरी दुनिया में दूसरी है ही नहीं, और अगर वो जिंदगी इंसान की हो तो फिर बात में और खूबसूरती आ ही जाती है। एक छोटे से बच्चे का बड़ा होना, पढ़ाई, रोजगार, शादी और जिंदगी की तमाम उलझनों से लड़ते हुए, कभी हंसते हुए कभी रोते हुए, जिंदगी को यूं सिलसिलेवार तरीके से जीते चले जाना और इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी तारीफ है कभी कभी भी हार ना मानना और अपने से जुड़े हर शख्स के दिल में अपनी कुछ ऐसी यादें छोड़ते जाना जो उनके दिल में हमेशा हमेशा आपको जिंदा रखें।

दोस्तों, ये जो जिंदगी है ना, ये हमें बताती है कि हमें चलते ही चले जाना है, और अगर जिंदगी की राह में जो लोग मिले उनसे मुस्कुरा के उनका दिल अपने साथ दिल से मिलाकर चलते चले जाना है। और दोस्तों, वक्त चाहे कितना ही क्यों ना बदल जाए, लोग चाहे कितना ही क्यों ना बदल जाए, लेकिन हम लाख कोशिश कर लें लेकिन कुछ चीज़ें हम बदल ही नहीं सकते। जैसे पहली मोहब्बत का वो एहसास जिसे कोई इंसान चाह कर भी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो जिंदगी का पहला ऐसा अनोखा तजुर्बा होता है जो बस यूं ही अचानक हो जाता है, कभी कभी इत्तेफाक से।

और दोस्तों, किसी की यादों में बने रहने के लिए बस थोड़ी सी कोशिश ये करनी पड़ती है कि आप हमेशा अपनी वो बात कहें जो आपके दिल से निकलती है। और दोस्तों, इस दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं, लेकिन हम ना तो हर किसी से मिल सकते हैं, ना ही हर किसी को जान सकते हैं, लेकिन कुदरत भी हमारा राबता सिर्फ उन्हीं लोगों से करवाती है जिनसे मिलना या जिनसे बिछड़ना, और बिछड़ने से ही तय होता है, और ये बिछड़ना पहले से ही तय होता है।

दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी जिंदगी में गाने नहीं होते तो जिंदगी कैसी फीकी सी होती है ना? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, शादी हो, ब्याह हो, सालगिरह हो, तो और कोई दिल मिल गया हो या दिल टूट गया हो, फिल्मी गाने किसी राह में हमें अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा हमेशा हमारे साथ चलते रहते हैं, हर रूप में, बचपन से लेकर जिंदगी की हर सांस तक, आखिरी सांस तक।

दोस्तों, किसी भी रिश्ते को अगर आप बचा के रखना चाहते हैं तो उसके लिए जानते हैं सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। सबसे ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन, यानी वार्तालाप। आपकी बातें आपके साथी को और आपके साथी की बातें आपको पता होंगी तो ना तो कभी गलत फहमियां होंगी और ना ही आपके रिश्ते कभी उनसे खराब होंगे।

दोस्तों वो तो ये कह रहा है कि गीत सुनहरे से अब हमें जाना होगा क्योंकि आगे के सफर पर जो चलना है। उम्मीद है आपका ये वक्त बेहद खूबसूरत रहा होगा गीत सुनहरे के साथ। कल हम फिर आएंगे कुछ और नगमात के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल के साथ।

0: दोस्तों, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। आपसे कुछ ही देर में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा।

0: विधानसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल खरीफ की बुआई की प्रगति, मानसून की स्थिति, उर्वरक और बीज की उपलब्धता तथा अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री चौहान ने अधिकारियों को कम वर्षा वाले जिलों की निगरानी करने और राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीके एनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुपुर के अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चीर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर जनता को परेशान किया और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि सरकार नीट मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने लोकतांत्रिक चर्चा के बजाय प्रदर्शन का रास्ता चुना। श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों की हर वास्तविक चिंता पर चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे।

0: जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you are saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the Parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day yesterday following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case yesterday. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, now also known as Mangal Milan, at Parliament House complex yesterday. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Delhi police released all opposition leaders, including senior Congress leaders Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, after they were detained from the protest site near Lok Kalyan Marg. They were protesting over the NEET paper leak issue. BJP yesterday criticised Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi for staging a protest at Lok Kalyan Marg, saying that the conduct displayed by him is entirely unbecoming and contemptible. Talking to the media in New Delhi, BJP President Nitin Naveen.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, समय हुआ है 3:10 और 20 सेकंड। ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, गीत और गजल। तो आज सबसे पहले एक बेहतरीन लाजवाब गीत गजल सुनवाना चाहेंगे। आज मैं हूँ आपके साथ इस कार्यक्रम में, आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत गजल कार्यक्रम के अंतर्गत एक बहुत ही शानदार बेहतरीन गजल।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे। साथियों, एक और बेहतरीन गजल आ रही है हवा के झोंकों में। बहुत ही शानदार बेहतरीन एल्बम है रेड रिबन्स द्वारा, हवा के झोंकों में, गजल उस्ताद सुजात हुसैन खान। जी हाँ, उस्ताद सुजात हुसैन खान साहब लिरिसिस्ट हैं, कमलेश सोनावाला, और संगीत से सजाया है उस्ताद सुजात हुसैन खान साहब ने। तो आइए एक और बेहतरीन खूबसूरत गजल

आकाशवाणी का हिंदी प्रेस चैनल है, माफ कीजिएगा, ये आकाशवाणी का AIR लाइव 24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत और गजल। तो साथियों, एक और बेहतरीन रचना आ रही है आपके पास, तो आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत रचना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIRLive न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गजल। इसी के अंतर्गत एक बहुत ही शानदार खूबसूरत गजल और आ रही है, तो आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन खूबसूरत गजल। गजल यानी कि किसको कातिल मैं कहूं, एक बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत गजल है। और किसको कातिल मैं कहूं, सजदा एक एल्बम है, बहुत ही सुंदर जगजीत सिंह साहब की आवाज में शानदार बेहतरीन गजल है। और गीत अहमद नदीम कासमी के हैं और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गजल को जगजीत सिंह जी ने। तो आइए सुनते हैं ये बेहतरीन लाजवाब गजल।

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब की आवाज में। एक और खूबसूरत गजल आ रही है, तो कुछ तो दुनिया की इनायत ने बहुत ही खूबसूरत लाजवाब गजल है, मल्लिकाए गजल बेगम अख्तर, लिरिक्स सुदर्शन फाकिर के। तो ये सुनते हैं एक और आज के कार्यक्रम गीत गजल की अंतिम।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गजल। जी हाँ, गीत गजल कार्यक्रम, गीत गजल कार्यक्रम अब संपन्न हुआ और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्चना।

त्रिशिव पुरेश सुप्रभातम सुनिए। रचना ज्ञानानंद सरस्वती की है। स्वर दिया है पारसाला पुन्नमल ने।

0: इसी के साथ अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्म।
0: प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 जुलाई 2026 सुबह के 4:53 और 5 सेकंड हुए हैं। इन मीटरों पर हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 5 बजने को हैं और अब कुछ आने वाले प्रोग्राम के बारे में कुछ रूपरेखाएं बता रहे हैं, विवरण दे रहे हैं और 5 बजने को हैं। अभी 5 बजने को हैं और 5 बजने से पहले कुछ जानकारियां। सुबह 5 बजे हिंदी में समाचार होंगे और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, जिसमें आप सुनेंगे योग, उज्जयी, प्राणायाम और वृक्षासन। 5:20 में देशभक्ति गीत फिल्मों से। 5:30 कार्यक्रम होगा स्वर रंजनी। सुबह के 6 बजे होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। का समय रहेगा वंदना कार्यक्रम का। 6:40 पर होगा कार्यक्रम चिंतन। 6:45 पर कार्यक्रम रामचरितमानस बालकांड 124। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 5 बजने को हैं, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।